आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी

0: हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजे आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरल में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आरंभ मातृवंदना से। कतरा कतरा मेरे लहू का, कतरा कतरा मेरे लहू का, इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर हमेशा मुस्कुराएगा।

समुसरों में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। अविनाश त्रिपाठी की आवाज में आइए सुने माँ अम्बे की भजन। तू ही अम्बे, तू ही जगदम्बे, तू ही काली है माता, तेरे चरणों में आने के बाद संकट सब कट जाते हैं।

लाल चुनरिया ओढ़े अम्बे सिंह पे बैठ आई है, भक्तों को शक्ति और शांति प्रदान करती है। माँ शेरा वाली संकट हरने वाली और दुखों को दूर करने वाली है, जिनका दरबार दिव्य और मनोहर होता है। शर्मा बंधुओं की आवाज में आइए अब सुनते हैं माँ अम्बे की एक और भजन।

0: ये थी आज की वंदना। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रकाश किरण।
1: संसार में दो पदार्थ हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन। चेतन तो आत्मा है और अचेतन समस्त भौतिक पदार्थ। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। वह जब भौतिक पदार्थों के संपर्क में आता है तो उन्हें जानने समझने का यत्न करता है, उनके बारे में अच्छी बुरी धारणाएं बनाता है, साथ ही अपने अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करने का यत्न करता है और प्रतिकूल पदार्थों से दूर रहने का। अपने अभीष्ट की प्राप्ति में जो सहायक होते हैं उनसे वह प्रेम करता है और जो विरोधी होते हैं उनसे द्वेष। राग और द्वेष से व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है वे कर्म अपने पीछे कुछ सूक्ष्म संस्कार छोड़ जाते हैं। ये संस्कार ही बाद में भाग्य का रूप धारण कर व्यक्ति के अच्छे बुरे भावी जीवन का निर्माण करते हैं। इतना ही नहीं, कर्मों के बंधन में बंधा प्राणी संसार के दुख चक्र में निरंतर घूमता रहता है और जब तक वह राग द्वेष को छोड़कर निर्विकारता की ओर अग्रसर नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त करता। यही कारण है कि शास्त्रों में प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करने का निर्देश दिया गया है। कर्म की महत्ता के बारे में आचार्य शुक्र कहते हैं, कर्मैव कारणम चात्र सुगतिम दुर्गतिम प्रति, कर्मैव प्राक्तनम अपि क्षणम किम कोऽस्ति चाक्रियः। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता और उसके अच्छे बुरे कर्म ही उसकी सदगति या दुर्गति में कारण होते हैं। वे कर्म इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के, व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही श्रेष्ठ या हीन होता है। इस संबंध में आचार्य शुक्र कहते हैं, न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव च, न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुण कर्मभिः। अर्थात जाति से या किसी कुल विशेष में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो जाता, उसके गुण या कर्म ही उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की श्रेणी में लाते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेकर भी यदि व्यक्ति विषय भोगों में प्रवृत्ति रखता है तो वह सांसारिक दुखों से कभी छूट नहीं सकता। महाभारत में कहा गया है, निहारे नहि संवीतः शिष्णो दरपरायणः जात्यन्ध इव पन्थानम् आवृतात्मान बुध्यते। अर्थात अज्ञान के कुहासे में फंसा तथा विषय भोग में आसक्त व्यक्ति एक जन्मांध व्यक्ति की तरह मुक्ति के मार्ग को सही सही नहीं देख पाता। इस संबंध में संसारी जीव को आचार्य शुक्र का यह परामर्श है, भवतीष्टम सत्क्रियया अनिष्टम विपरीतया, शास्त्रतः सदसज ज्ञात्वा त्यक्त्वा सत्सत्समाचरेत। अर्थात सत्कर्मों से ही व्यक्ति सबका प्रिय होता है और असत कर्मों से अप्रिय। इसलिए कर्मों की अच्छाई या बुराई का अंतर समझना और असत कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों का आचरण करना, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। महाभारत में भी कहा गया है, सर्वाणि कर्माणि पुराकृतानि शुभा शुभान्यात्मनो यन्ति जन्तो, उपस्थितं कर्म फलं विदित्वा बुद्धिं तथा चोदयते अंतरात्मा। जीव द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म उसके साथ साथ रहते हुए अच्छे बुरे फल प्रदान करते हैं, किंतु मुक्ति का साधक व्यक्ति कर्मों के स्वभावादि से परिचित होता हुआ कर्मों के बंधन से छूटने का प्रयास करता है और वह इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखता को धारण करता है और मन या बुद्धि को परमात्मा की ओर मोड़ देता है। योग साधना से कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसका निरूपण महाभारत में इस प्रकार किया गया है, मनः प्रणयते इत्मानं सैनम अभियुञ्जति युक्तो यदा स भवति तदातम पश्यते परम। अर्थात साधक का जब मन आत्मा की ओर अंतर्मुख हो जाता है तो क्रमशः योग साधना पथ पर बढ़ते बढ़ते उसे परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है और इस प्रकार समस्त दुखों से छूट भी जाता है। किंतु मन की अंतर्मुखता तब तक संभव नहीं जब तक व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं देता। इस संबंध में महान नीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार परामर्श दिया है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। अर्थात हे प्राणी, दुर्जनों का साथ छोड़कर सत्पुरुषों की संगति कर, दिन रात पुण्य कर्म कर, साथ ही हमेशा अपनी नश्वरता अनित्यता को याद रख।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रकाश किरण, आलेख और प्रस्तुति थी दामोदर शास्त्री की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन।

काकभुशुंडी को श्री राम के मुख में प्रविष्ट होने के बाद उनके उदर में अनगिनत ब्रह्मांडों के दर्शन प्राप्त हुए। काकभुशुंडी ने 100 कल्प उन ब्रह्मांडों में बिताए। जब अयोध्यापुरी में श्री राम अवतार का समाचार सुना तो हर्षित हो वहां जा पहुंचे, श्री राम जन्म महोत्सव देखा, किंतु फिर भी मोह नहीं मिटा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर ए हरिहरन का था, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकूट।
1: दादा दीदी मन असन तो आम्ही साग भाजी चो कमानी करूं से, अरण फसल चो भले कमानी करूं से, अंतर गोटोक फायदा बीती और कमानी आए होन कमानी आए फूल चो कमानी। आजी मैं तुमके गुलाब फूल ने बल बपू बीती

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धर्मो और साथी का बजाया रानाहा का सनपाड़। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी आप सुन सकेंगे आज सुबह 7:10 पर। शाम 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:30 पर सुना जा सकेगा हल्बी समाचार बुलेटिन। फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 7:45 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी आप सुनेंगे सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम गुलशन में सुनिएगा नए तराने सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति गायत्री आचार्य की होगी। हल्बी लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर। इसमें आप सुनेंगे भारत और साथी का गाया हल्बी लोकगीत। दोपहर 12:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रुस रुसा। इसमें सुनिएगा लोकगाथा मैनामती रानी। गायिका होंगी कचराबाई और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर बेड़ाखाड़ चकोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर सुना जा सकेगा कला और कलाकार। देशभक्ति गीत सुनेगा शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। गोंडी समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। कार्यक्रम आमचोगांव होगा शाम 7:21 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम बाली फूल। इसमें आज आप सुनेंगे दयमनी नाग और साथी का गाया हल्बी लोकगीत पिलामन काजे गोट। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:30 पर। विषय होगा पंचतंत्र की कहानी। प्रस्तुति उर्वशी पानीग्राही की होगी। रात 9:15 पर होगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। गोंडी लोकगीतों का कार्यक्रम दौना आप सुनेंगे रात 10:00। इसमें आप सुनेंगे बुत्सन और साथी का गाया गोंडी लोकगीत। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम्, एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400.9 लाख कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67 राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भाग परक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्य समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्ड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्र रक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्कैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
3: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
4: पवन के ठंडे झोंके के साथ
3: हिलोरे लेगी
4: आकाश की वाणी।
3: आकाशवाणी
5: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
3: या फोन करें 222-150 या 222-400,
4: 222-150 या 222-400।
6: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
7: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
9: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
10: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
9: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिए। आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर से की गई बातचीत, प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: आवाज का ये सफर 9 दशकों का साथी है, परिवर्तन का साक्षी है। आवाज का ये सफर कामयाबियों का गवाह है, फनकारों का हमनवा है। आवाज का ये सफर कल से आज तक निरंतर जारी है, आकाशवाणी को समर्पित अनेक सृजनकर्ताओं के संग, जिन्होंने रेडियो के कैनवास में भरे हैं कई खूबसूरत रंग। इन्हीं रंगों को अपने साथ लिए जन जन तक पहुंच रही है आकाशवाणी की ध्वनि तरंग। तो देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम बांटने जा रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री विश्वास केलकर के अनुभव उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में
1: दीपक जी। आपको और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन।
0: विश्वास केलकर जी, ये जो नाम है ये आकाशवाणी के किसी एक केंद्र से नहीं बल्कि अनेक केंद्रों से इस नाम को हमारे श्रोताओं ने सुना है। ये नाम किसी जमाने में आकाशवाणी रायपुर से भी सुनाई देता था। तो विश्वास जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपकी ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है?
1: ये यात्रा शुरुआत कहाँ से हुई, उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं इस यात्रा पर आया कैसे। देखिए, आकाशवाणी में आने से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक के तौर पर कार्य करता था
0: जी।
1: मेरी माताजी श्रीमती कमल केलकर, जो कि रायपुर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग उनको अच्छे से जानते हैं, एक सुप्रसिद्ध गायिका थी
0: जी।
1: तो मेरी माताजी की एक शिष्या थी रमा दीदी। रमा दीदी से मेरी माताजी ने कहा कि मेरे बेटे के लिए कभी कोई अच्छी नौकरी की पोस्ट निकले तो बताना। उन्होंने ये बात उनकी बड़ी बहन रेखा दीदी से कही
0: जी।
1: और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जब यूपीएससी से पोस्ट निकली तो फॉर्म रमा दीदी के माध्यम से मेरी माताजी तक पहुंचा दिया।
0: क्या बात।
1: आप जानते हैं कि रेखा दीदी उस समय आकाशवाणी रायपुर में ही कार्यरत थी। उसके बाद 24 जून 1991 को आकाशवाणी बीकानेर में मैंने कार्यक्रम अधिकारी का पदभार ग्रहण किया और 30 ग्यारह 2023 को आकाशवाणी भोपाल से सहायक निदेशक कार्यक्रम के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच मैंने नागौर, रीवा, रायपुर, अयोध्या, इंदौर, कोटा और भोपाल जैसे आकाशवाणी केंद्रों पर अपनी सेवाएं दी
0: जी। केलकर साहब, आपने चंद मिनटों में इतनी लंबी यात्रा का वृत्तांत हमारे श्रोताओं को सुनवाया। अब अगर हम आकाशवाणी के प्रति आपकी अपनी रुचि की बात करें तो ये जो रुचि है इसका सबसे बड़ा आधार क्या रहा है?
1: देखिए, बचपन से ही आकाशवाणी हमारे घर में सुना जाता था। 5-55 से हमारा रेडियो जो है 5-55 से लग जाता था, बल्कि संकेत ध्वनि से हमारा रेडियो हमारे घर शुरू हो जाता था
0: जी।
1: उसमें जो भजन आते थे वो इतने अच्छे आते थे कि मेरे ख्याल से हमारे घर के जितने सदस्य थे सभी उसको सुना करते थे। और उस समय आकाशवाणी रायपुर से, चिंतन रायपुर से नहीं आता था, आकाशवाणी भोपाल से उसका प्रसारण होता था
0: जी।
1: और वो चिंतन हम लोग सुना करते थे, रामचरित मानस होता था उसको भी हम लोग सुना करते थे, और आकाशवाणी रायपुर से शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसको भी हम लोग सुना करते थे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे आकाशवाणी के प्रति मेरी जो है रुचि बढ़ती चली गई। हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि मैंने ये विचार नहीं किया था कि मैं कभी आकाशवाणी में नौकरी भी करूंगा
0: जी।
1: क्योंकि उस समय ऐसे बचपन में ऐसा मालूम ही नहीं था कि आकाशवाणी में नौकरी कैसे करते हैं, क्या कैसे की जाएगी, या मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। मैं तो क्योंकि मेरे माता पिता ये दोनों गाने वाले थे, मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ करूं।
0: आपने संगीत में क्या क्या सीखा है?
1: संगीत में देखिए, वैसे तो मैंने डिग्री के तौर पर आप बोलेंगे तो एमए की शिक्षा डिग्री मैंने प्राप्त की है ख्याल गायन में। एमए मैंने किया प्रागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से, बीम्यूज भी मैंने किया था, उसके बाद मैंने एमए किया वहां से
0: जी।
1: लेकिन ये तो खैर डिग्री की बात अलग है, लेकिन बचपन से जब मेरी आंख खुलती थी तब मेरी माताजी उस समय 5:30-5:15 बजे से गाना शुरू कर देती थी और मैं उसको सुना करता था। 5 बजे से मेरी माताजी का गायन शुरू होता था, 5:45 तक मेरी माताजी का गायन समाप्त हो जाया करता था
0: जी।
1: तो बचपन से ही संगीत के स्वर मेरे कानों में, तानपुरी के स्वर मेरे कानों में पड़ते थे, तो स्वाभाविक रूप से मेरे में संगीत की रुचि उत्पन्न हुई। और आप जानते हैं कि मेरे नाना जी पद्म भूषण पंडित विनायक राव पटवर्धन
0: जी,
1: ये मेरे नाना जी।
0: क्या बात।
1: संगीत को कह सकता हूँ कि मतलब विरासत में ही मुझको संगीत एक तरह से प्राप्त हुआ।
0: चूंकि आपने बताया कि संगीत आपको विरासत में मिला और आकाशवाणी के प्रसारण का एक बहुत बड़ा हिस्सा संगीत है, उसमें शास्त्रीय संगीत का खास मुकाम है, और आप चूंकि शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहे हैं, बचपन से ही संगीत का वातावरण आपको मिला है और आपने संगीत सीखा भी है। आकाशवाणी की अगर आपकी संपूर्ण यात्रा की बात की जाए तो क्या इसमें संगीत के ही क्षेत्र में आपका दखल रहा है या उसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आप जुड़े रहे?
1: देखिए, मूलतः तो मैं ये भाग्यशाली रहा मैं कि मैं मेरा जो सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी से कार्यक्रम अधिकारी संगीत के तौर पर हुआ था
0: जी,
1: और लगभग सभी आकाशवाणी केंद्रों में मेरे पास संगीत का कार्यक्रम रहा। ये अलग बात है कि कुछ केंद्रों पर मुझे और दूसरे कार्यक्रम भी मिले और मैंने अपने बुद्धि के अनुसार जैसा भी मैं कर सकता था वैसे वो काम मैंने पूर्ण किया। जैसे कि आकाशवाणी फैजाबाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4.5 वर्षों तक मैंने खेल खिलाड़ी एक कार्यक्रम होता था वहां पर जो रात को रविवार को 8 से 8:20 तक हुआ करता था
0: जी।
1: तो मैं उस कार्यक्रम को सजीव प्रसारित करने के लिए रात को 8 बजे आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद जो कि आप अयोध्या के नाम से जाना जाता है
0: जी,
1: उस समय जाता था और वहां एक उद्घोषक होते थे, कोई ना कोई उद्घोषक कार्यरत होते थे, उनके साथ मिलकर मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया करता था। तो इस कार्यक्रम की मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के लोगों को अपने समय के प्रति कितना प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। आप तो खैर बहुत अच्छे से उस बात को जानते हैं
0: जी।
1: एक बार क्या हुआ कि मुझको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पे पंचकोसी परिक्रमा होती है। पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है मुझको जानकारी थी, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि आकाशवाणी अयोध्या का जो रास्ता है उस रास्ते से ही वो पंचकोसी परिक्रमा का रास्ता भी जाता है
0: जी।
1: मेरी एक आदत थी कि 8 बजे का कार्यक्रम है तो मैं 15-20 मिनट पहले वहां आकाशवाणी में पहुंच जाया करता था। उस दिन भी मैं वहां पहुंचा और जैसे ही आकाशवाणी के पास में पहुंचा तो इतनी भीड़ ज्यादा थी तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने स्कूटर एक जगह खड़ी की और आप विश्वास नहीं करेंगे 500 मीटर का रास्ता मुझको पैदल जाने में करीब 15-17 मिनट लग गए। लेकिन चूंकि मैं 15-20 मिनट अपने हाथ में लेके चलता था तो 8 बजने को जब 1 या 2 मिनट कम थे मैं स्टूडियो में पहुंच गया और वो कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया।
0: क्या बात, क्या बात। केलकर साहब, इस तरह की रोमांचक घटनाएं रेडियो से जुड़े लोगों के जीवन में अक्सर घटी हैं। आपका चूंकि बचपन रायपुर से जुड़ा रहा है और रायपुर से ही आपका परिवार भी जुड़ा रहा है, आकाशवाणी रायपुर में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, अगर हम रायपुर की स्मृतियों को आपके मानस पटल में जो अंकित हैं उन पन्नों को पलटना चाहें तो वो कौन कौन सी यादें हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी की तो रायपुर की तो इतनी यादें हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, और आप लोगों का इतना स्नेह मुझको मिला है कि मैं उसको अपने जीवन भर कभी नहीं भूल सकता, इसमें कोई दो मत नहीं। तो देखिए, आकाशवाणी रायपुर में जब मैं रीवा से स्थानांतरित होकर आकाशवाणी रायपुर पहुंचा
0: जी,
1: तो वहां पर माननीय ममता चंद्राकर मैडम उस समय सहायक निदेशक थी
0: जी,
1: और वहां पे जितने लोग थे वो लगभग सभी लोग उसको जानते थे कि ये संगीत परिवार से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझको कहा कि आप संगीत रचनाएं की जब आवश्यकता हो तो आप इस मास का गीत एक कार्यक्रम होता था, आपको याद होगा
0: बिल्कुल जी जी,
1: है ना, उस इस बात का गीत को जो कार्यक्रम होता था उसमें आपने भी अपने आवाज दी है मेरे एक गीत में
0: जी जी,
1: पहले उसको अपन पठन करते थे उसके बाद वो गीत होता था प्रसारित होता था
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें से मैंने इस मास का गीत के लिए संगीत दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथी भी वहां पर थे, मेरे परम मित्र थे संजय पांडे
0: जी,
1: एक और मेरे बचपन के मित्र थे राजेश फाई और मेरे गुरुदेव के लड़के समीर शुक्ला
0: जी,
1: और वहां पर जो उस समय मेरे साथ तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत थे आदरणीय रामाने जी, आदरणीय वरखड़े जी। तो विज्ञापन जब काम होता था तो उसमें गीत बनाए जाते थे विज्ञापन के, जैसे विज्ञापन के कोई उनको एक वो सीरियल मिला इसके आपको 12-7 एपिसोड करने तैयार करने हैं
0: जी, प्रायोजित कार्यक्रम के,
1: प्रायोजित कार्यक्रम जी, हाँ जी, हाँ
0: जी जी।
1: तो उसका एक आपको मालूम है कि उसका एक शीर्षक गीत हुआ करता था जिसको अपने को आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से उसको तैयार किया जाता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना, कई सारे गीत मैंने तैयार किए लेकिन एक गीत का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा
0: जी।
1: वो गीत था आओ आशा दीप जलाएं, कुष्ठ रोग पे एक कार्यक्रम,
0: बिल्कुल
1: 13 एपिसोड का कार्यक्रम वो करना था, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर बनाया जाना था, आकाशवाणी रायपुर के द्वारा इसकी निर्मित की जानी चाहिए थी। तो समीर शुक्ला ने मुझको बताई, ये बात बताई थी कि वहां के जो एक IAS अधिकारी थे उन्होंने समीर जैसे कहा कि ये जो कुष्ठ रोग का कार्यक्रम है
0: जी,
1: इसके लिए जो शीर्षक गीत होगा उसको आप लोग ऐसा कीजिए कि मुंबई से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आकाशवाणी रायपुर को मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी अच्छे लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग की सुविधा यहाँ पर है कि आप उस गीत को बना सकें। तो समीर ने कहा कि सर हम प्रयास करते हैं और आपको यदि लगा कि हम ठीक हैं तो आप उनको आगे मौका दीजिएगा, नहीं तो फिर आप जैसा बोलते हैं वैसा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये बात आके समीर ने मुझको आके बताई। अब भगवत कृपा से मैंने कहा यार समीर, ये तो अपने लिए आकाशवाणी रायपुर के लिए भी एक खुला चैलेंज है, मतलब एक पर इसको अपने को किसी भी तरह से पूर्ण करना है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात उस समय ये थी कि मैं आकर रायपुर में पोस्टेड था, मेरे माता पिताजी बुढ़ापारा में ही रहते थे, आपको मालूम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो समीर ने जब मुझको एक गीत दिया तो मैंने गीत की जब संगीत रचना अपने घर में बैठ कर की, उसके बाद माता पिता को लाकर सुनाई, तो उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कहा कि ऐसे ऐसे परिवर्तन करो। और आपको यदि याद होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने किसी और राग में इस गीत की रचना की थी
0: जी,
1: उस समय आप भी बैठे थे वहां पर और रमानी साहब भी वहां पर थे, उनको मैं सुना रहा था ये गीत
0: जी जी।
1: तो आपने एक पॉइंट आउट किया था जिसको मैंने मान लिया, आपने कहा था कि इस गाने की धुन तो जो है सांझ ढले गगन तले से कुछ उसकी साम्यता हो रही है।
0: जी जी।
1: मैंने कहा ठीक है, मैं इसका एक स्वर जो है वो एक स्वर अलग कर देता हूँ, और उसके बाद अगले दिन लाके मैंने दूसरे तरीके से इसकी स्वर रचना की
0: जी।
1: और फिर उसके बाद मेरे माता पिता को सुनाया, उन्होंने पास किया। फिर रमानी जी कान के बहुत अच्छे हैं, वो उसको पहले मैं सुनाया करता था, तो वो बोलते थे हाँ खेलकर ये ठीक है, अपन इसको अपन कर सकते हैं। और उसके बाद आप भी वहां पर, दूसरी बात भी आप वहां पर थे, तो मैंने कहा और दीपक जी बताइए आप कैसा लग रहा है, तो बोले नहीं सर अब तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है
0: जी जी।
1: तो मैं वो गीत थोड़ा सा आपको यहाँ पर गा के गुनगुना कर
0: बिल्कुल चाहता। स्वागत है सर, स्वागत है बिल्कुल।
1: मैं गायक नहीं हूँ,
0: प्लीज प्लीज सर,
1: लेकिन जैसा भी मुझको बन पड़े मैं सुनाना चाहता हूँ।
0: स्वागत है सर, स्वागत।

0: ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो समीर जी ने क्या किया, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की
1: जी।
0: उन अधिकारी का फोन आया कि क्या हुआ इस गीत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये गीत जो है सर तैयार हो गया है। बोला अच्छा आपने तैयार कर लिया, चलिए अच्छी बात है, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आपको इसको मुंबई में तैयार करवाना चाहिए करके, आपने करवा लिया अच्छी बात है
1: जी।
0: वो आए और समीर ने क्या किया उनको स्टूडियो में बैठाया और स्पीकर पे उनको बड़े स्पीकर पे अपने जो होते हैं ना स्पीकर होते हैं ना बड़े स्पीकर
1: जी जी जी जी
0: उस पे उनको सुनाया। तो सुनाने के बाद उनको ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि समीर जी देखो मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये आपके बस की बात नहीं है, आपने अच्छा किया कि उसको आकाशवाणी मुंबई से इसको तैयार करवा लिया
1: जी।
0: तो सुनने के बाद समीर उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और उनको बताया कि नहीं सर ये गाना मैं आपको बताऊं कि ये गाना हमारे केंद्र पर ही रिकॉर्ड किया गया है।
1: अच्छा
0: तो ये सुन के वो बोले कि ये गाना आपके केंद्र पर रिकॉर्ड किया
1: जी,
0: गया
1: जी, जी, जी।
0: तो बोले जब आपने एक शीर्षक गीत के लिए इतनी मेहनत की है
1: जी।
0: और ये पूरा 13 एपिसोड का जो ये जो है ये आप ही बनाएंगे।
1: क्या बात क्या बात।
0: मुझे बहुत खुशी की मेरे जो अपने गुरुओं से मैंने जो संगीत सीखा उसका कुछ उपयोग मैं आकाशवाणी रायपुर के लिए कर सका और आकाशवाणी रायपुर को विज्ञापन में अपना कुछ योगदान में दे सका।
1: क्या बात। इसके अलावा अगर आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों की आपकी संपूर्ण यात्रा की बात करें तो उपलब्धि पूर्ण आपके कार्यों में किन किन कार्यों को आप और याद करना चाहेंगे?
0: तो आकाशवाणी इंदौर का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा
1: जी।
0: आकाशवाणी इंदौर में मेरे लिए सबसे बड़ा जो यादगार का पल था वो था जनवरी 2018 में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन
1: जी।
0: आप दीपक जी आप जानते हैं कि इसमें देश भर के 22 भाषाओं के अलग अलग कवि और उनके अनुवाद करने वाले 22 लोग भी आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और आकाशवाणी महानिदेशालय से भी इसमें हमारे अधिकारी जो है वो आते हैं देखने के लिए कि कार्यक्रम कैसे किया जा रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत बड़ा आयोजन था, ये कार्यक्रम इतना सफल रहा था दीपक जी कि इसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको उसी कार्यक्रम के माध्यम से इसको सम्मिलित किया गया।
1: क्या बात।
0: और आकाशवाणी को एक सर्टिफिकेट दिया गया और ये संस्था जो है लंदन की संस्था है दीपक जी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: उन्होंने चलते कार्यक्रम में एक गुवाहाटी के रिटायर्ड जज थे वो आए हुए थे, उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट आकाशवाणी इंदौर में राजशेखर जी को सौंपा।
1: क्या बात।
0: वो उन्होंने ले जाके दूसरे दिन डीजी को सौंपा। मैं चूंकि संगीत से जुड़ा रहा हूँ इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर मैं आकाशवाणी इंदौर में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर कार्य करने गया तो वहां पे कुछ वरिष्ठ कलाकार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोग ए ग्रेड में रहते हैं, हम लोग को करीब करीब किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 15 साल हो गए थे
1: जी।
0: लेकिन अभी भी अखिल भारतीय संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं शनिवार और रविवार को अपने कार्यक्रम होते थे आपको मालूम है
1: जी जी जी,
0: उसमें हमारा प्रसारण नहीं हुआ है। तो फिर मैंने ऐसे सभी कलाकारों की लिस्ट बनाई और आकाशवाणी महानिदेशालय में पत्र लिखा कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, यदि उनका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होता है तो ये न सिर्फ आकाशवाणी इंदौर के लिए बल्कि आकाशवाणी दिल्ली के लिए भी गर्व की बात होगी जिनका प्रसारण सभी लोग देश भर में सुन सके।
1: बिल्कुल जी जी।
0: और दीपक जी मेरे को बताने में बहुत खुशी होती है कि मेरी चिट्ठी गई और मैंने जितने कलाकारों के नाम लिखे थे
1: जी
0: तो उस वर्ष हमने 10 कलाकारों की इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग की और उसके बाद जो सिलसिला चला तो फिर आकाशवाणी इंदौर इस मामले में शायद मेरे ख्याल से जब तक मैं था कभी पीछे पलट के नहीं देखा, प्रत्येक वर्ष 4 या 5 या 3 या 4 कलाकारों के नाम आते थे और उनका प्रसारण वहां से होता था।
1: आप कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर सहायक निदेशक के तौर पर आकाशवाणी भोपाल में रहे हैं और वहीं से आपने आकाशवाणी को अलविदा कहा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब कोई व्यक्ति कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाते हैं, तो आपको कैसा लग रहा था भोपाल में?
0: जी हाँ आपने बिल्कुल सही बात कही कि कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाना वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है
1: जी।
0: और सबसे ज्यादा कार्य मैंने आकाशवाणी भोपाल में किया ये भी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: सौभाग्य से उस समय ऐसा था कि मेरे ऊपर 19 केंद्रों का भार भी था, उस समय दिया गया था मुझको प्रभार दिया गया था छत्तीसगढ़ और आकाशवाणी के मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों का
1: जी
0: प्रभार मुझको सौंपा गया था, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन वहां का जो स्टाफ था इतने अच्छे लोग वहां पर थे कि उनके सहयोग से मुझको ये पता ही नहीं चला कि मैंने वहां पर अपने 5 साल 7-8 महीने जो भी मेरा कार्यकाल था वो कैसे वहां मैंने बिताया और किस तरह से वो संपन्न हुआ। एसपी सिंह साहब थे वहां पर, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, अत्यंत अनुभवी कार्यक्रम निष्पादक थे और जब कभी महानिदेशालय से कभी इस तरह की परिस्थिति आती थी तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और एक इनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, राकेश ढोंडियाल कार्यक्रम निष्पादक के पद पर थे वो, लेकिन वो इतने होशियार कार्यक्रम निष्पादक थे कि उनका रूपक जो उनको बनाए जाते थे और द्वितीय होते थे, उनको इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार भी मिले थे, आप जानते होंगे इस बात को, और आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के कई पुरस्कार श्री राकेश ढोंडियाल जी को प्राप्त हुए थे। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि ऐसे लोगों के साथ उसको आकाशवाणी भोपाल में कार्य करने का मौका मिला।
1: केलकर साहब, मन तो कर रहा है कि आपसे और भी बहुत सारी बातें करें, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की सीमा हमसे यही कह रही है कि अंत में आपके जीवन में आकाशवाणी का जो योगदान रहा है उसे आप किन शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे?
0: देखिए, आकाशवाणी जैसी संस्था में अपनी सेवाएं देना ये अत्यंत गरिमामय और गर्व की बात होती है दीपक जी, और मुझे अहोभाग्य ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं अपने सद्गुरु जो मेरे लिए साक्षात परम पिता परमेश्वर ही हैं, श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की परम कृपा, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे शुभ चिंतक मित्रगण और मेरे सभी कार्यालयीन सहयोगियों के सहयोग से मैं ये अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर सका, इसका मुझे संतोष है और मैं इसके लिए अपने ईश्वर सहित सबका आभारी हूँ।
1: सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में केलकर जी का समय किस तरह से बीत रहा है?
0: देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है घर के जो काम होते हैं वो करना होता है, और संगीत तो मेरे खून में है, तो आजकल यूट्यूब और इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं अपने पास कि आराम से आप उन सबको सुन सकते हैं। हाँ, दिनचर्या के बारे में आपको मैं क्या कहूँ, जैसे सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा बाहर पैदल टहल कर आ जाता हूँ, आने के बाद थोड़ा प्राणायाम कर लेना, और कभी कभी मैं आकाशवाणी भोपाल का एक कार्यक्रम होता है नमस्कार भोपाल
1: जी,
0: तो टहल कर आने में यदि 7:20-7:30 हो जाते हैं तो कभी कभी उस कार्यक्रम को भी मैं लगा लिया करता हूँ, और या किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में कभी कोई कार्यक्रम अच्छा चल रहा हो तो उस कार्यक्रम को भी सुन लेता हूँ, और फिर घर के कुछ काम है, जैसे नवी मुंबई में खारघर करके एक स्थान है, वहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं
1: जी। तो केलकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि यूं ही आपका जीवन मनोरंजन के साथ बीते, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना है। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी जगदलपुरा हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं महेंद्र सिंह ठाकुर पहल सुना आजी छो मूर खबर मन के। केंद्रीय मंत्रिमंडल बाटले राष्ट्र गीत वंदे मातरम के इदाएं राष्ट्रगान चो असन संवैधानिक संरक्षण देतो काजे संशोधन प्रस्ताव के स्वीकृति दिला। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हिसाब ने राज नेहलो सामूहिक विवाह उदिम ने 2300 ले आगर जोड़ी मंचो बिहारू सुन।

चो सजा जुर्माना नहाले दूनो चो प्रावधान आसे। छत्तीसगढ़ चो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ए फासला चो स्वागत करते एक देश चो रुसुम रीति चो चेतानी स्वतंत्रता संग्राम चो मान पावतो बीती पुरखती चीना और राष्ट्रभक्ति चो भावना के मान देतो बीती ढाका आए बल्ला। मुख्यमंत्री राज्य सपाए रयत चो लोगमनले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय चीना मन काजे आपलो मन ने मान धरतो काजे गुहार करला। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया गेलो 7 मई के नुआ श्रम संहिता चो हिसाब ने 40 बरख और हुंचोले आगर उमर चो कामगार भूतियार मन के राष्ट्रव्यापी आर्थिक जांच बीती वाट के मूर करला। नई दिल्ली चो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चो मूर करतो बेरा डॉक्टर मांडविया बल्ला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो दखालो बाट हिसाब ने गेलो 12 बरख ने देश चो काम करतो ताकत और जुआन मन चो सकत के मान देतो काम ने नंगत बाढ़ती होली से। ए वाट चो मूर गोट असन बीमारी मन जे छूत चो बीमारी नोहाय बल्लो ने गैर संचारी रोग एमन की चिंतोर और भूतियार कामगार मंचो देह पाए के नंगत दखा रखा काजे चेता तो राय। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हिसाब ने 8 मई के राज्य सपाए जिला मन ने सामूहिक विवाह समारोह बल्लो ने सपाए जोड़ी मंचो गोट की संगे बिहा टीका चो रुसुम करतो होली। ये राजभर चो होतो उदिम ने 2300 ले आगर जोड़ी मंचो बिहा होली। सपाए जोड़ी मंचो आपलो आपलो धर्म और रुसुम रीति हिसाब ने बिया होली। एमन ने हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजाति चो जोड़ी मन आसोत। योजना हिसाब ने सपाए नुआ जोड़ी मन के बिया होलो पाछे 35,000 रुपया चो सहायता मिरू आए। जगदलपुर चो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ने 4 और 5 मई के इनोवेशन महाकुंभ चो पहल हार चो कार्यक्रम होली। ये कार्यक्रम के राज्यपाल रमेन डे का मूर करला हुताए ए चो सरासरी चो कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले एउन रला। ए मोहका ने मुख्यमंत्री इनोवेशन महाकुंभ ने आपने एउन समर्पण करलो माओवादी मंचो पीला मंचो भाग धरतो गोट के दखुन खूबे हरी खून बल्ला कि बस्तर ठान ने हुनर और मोहका चो काई कमी नहीं आए सोजे नंगत माचा नंगत मोहका और नंगत बाट दखातोर मुराए। हुन बल्ला कि ये कार्यक्रम ले जुआन मन के नुआचारी वाट और रोजगार व्यापार काजे गोटक नुआ ठान मिले से। इनोवेशन महाकुंभ ने नंगत वाट और नंगत नुआचारी वाट चो जीत तो लोगमन के पुरस्कार देऊन मान करला। यही मंजी इनोवेशन महाकुंभ ने मुख्यमंत्री बाटले दंतेवाड़ा जिला चो बचेली ने रतुबिता जुआन विशाल हालदार चो नुआचारी वाट के मान करला। हुनके छीन चो बीजाले हर्बल कॉफी तैयार करतो काजे पहल ठान मिरली से। उताए न्यू इनोवेशन पुरस्कार काजे गोटोक जुआन हर्षवर्धन वाजपेयी के 3rd पुरस्कार मिरली। हर्षवर्धन बस्तर इंडिजीनियस नेक्टर एग्रीकल्चर बाटले बस्तर चो प्यूतो बानी बलोने सल्फी के नुआ वैधानिक विचार और प्रयोग मनले लाभकारी प्यूतो बानी चो हिसाब ने बरसक बनातो काजे काम करसोत। वन मंत्री केदार कश्यप 8 मई के नुआ रायपुर ने छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS संघ चो सूचना और संवाद तंत्र के मूर करला। इनुआचारी उवाट राज चो 13 लाख ले आगर रान बंचो उपजन के जुहातो लोग मंचो कुटुम चो जीवना के नंगत वर्षक बनातो काम करे दे। जुहातो लोग मन के जानकारी धरतो काजे टोल फ्री नंबर 9811125813 ने गोटोक मिस्ड कॉल करुक पड़े दे। हुंचो पाछे 911 ले मूर होतो बीती नंबर ले हुंचो लगे तुरते फोन आए दे। फोन के उठाते खन जुहातो लोग मन आपलो देहात चो बोली भाषा ने जसन की हल्बी नहाले गोंडी ने खास जानकारी सुनुक सक दे। जानकारी मन के सुनतो संगे ची हुन आपलो सलाह जानकारी गोट मन के रिकॉर्ड बले करुक सक दे। बाजार भाव और मूल्य संवर्धन चो नंगत जानकारी मिरलो ने कोचनिया मंचो भरसा रहुक नी पड़े दे और जुहातो लोग मंचो कमानी बले बाड़े दे। राज्यपाल रमेंडे का 5 मई के कोंडागांव ने जिला और विकासखंड अधिकारी मंचो बसका धरला। बसका ने हुन पानी और लेहरा पानी रानबन रुकराई चो दखा रखा उपरे आगर जोर दिला। संगे ची अधिकारी मन के रैयत चो लोग मंचो छिपा डंड बीती गुहार के नंगत ध्यान देउन सुनुक हुनके गुचा तो काजे काम करुक बल्ला। बसका ने राज्यपाल प्रधानमंत्री आवास योजना हिसाब ने बना तो बीती घर मन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाट के बले मिसाउकलाय बल्ला। हुन बल्ला कि जिला चो विशेष पिछड़ी जनजाति मन लगे प्रधानमंत्री जनमन योजना ले सरकार चो योजना मंचो आगर ल्यागर लाभ अमरातोर हो। आपलो इलोबेरा राज्यपाल कोंडागांव ने होलो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम हिसाब ने 5 जन बीमार धरलो लोग मन के फूड बास्केट दिला बल्लो ने पाक फर दिला। ए मौका बेरा हुन ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी किवई बालेंगा और मालाकोट के टीबी मुक्त चो घोषणा होतो के गांव चो सरपंच मन के प्रमाण पत्र बले दिला।

0: राज्य सफाई ग्राम पंचायत मन ने 7 मई के चाउर उदिम रोजगार दिवस और आवास दिवस चो कार्यक्रम होली। रोजगार दिवस बेरा ग्राम पंचायत मन ने मनरेगा चो काम बुताचो गोट बात करतो संगे रोजगार चो नुआ मौका चो काम करतो उवाट बनातो होली। हुताए प्रधानमंत्री आवास योजना हिसाब ने बाचलो ठेबलो मामला मंचो मूर हिसाब ने निराकरण होली। एची संगे पानी बचातो काजे मोर गांव मोर पानी मोर तरिया अभियान हिसाब ने नुआ तरिया आय के जरिया गोट उपरे खास गोट बात होली। राज्य सरकार बाटले मेहरार मंचो नाव ले होतो बीती भूई चो रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क ने 50% चो छूट देतो फासला धरला से। एचो अधिसूचना राजपत्र ने बोले प्रकाशित करलो रासे। ए प्रावधान के तत्काल प्रभाव हिसाब ले लागू मानतर होई दे। एची संगे सरकार बाटले काम करतो सैनिक आगे ले काम करलो सैनिक और हुन मंचो रांडी होलो मेहरार मन के लाभ देतो हिसाब ने 25 लाख रूपया तक चो भूई बाड़ी चो रजिस्ट्री ने स्टाम्प शुल्क ने लागतो खर्चा ने 25% चो छूट देतो फासला धरला से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बाटले ताड़मेटला माओवादी हमला गरहा ने राज्य सरकार चो अपील के खारिज करून भाती जिला कोर्ट चो फासला के जसन चो उसने संगाला से। अदालत बाटले बल्ला से कि सोजे शक करून भाती काकई सजा देउक नहीं होए। जानू कहो कि बरक 2010 ने ताड़मेटला ने होलो माओवादी हमला ने 76 जन जवान मन शहीद होन रला। हुन हमला चो पाछे कोनी कोनी गांवकारी मन के गिरफ्तार करलो रली। जांच एजेंसी मन बाटले गांवकारी मन उपरे काई बले सबूत पेश नहीं करून सकतो के जिला कोर्ट बाटले हुन मन के छांट तोड़ फासला होन रली। देश भर संगे छत्तीसगढ़ ने शनिवार दिने 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम होली। ए मौका ने न्यायालय ने खूबे समय आले पड़लो मामला मंचो आपसी सलाह सुतूर ले निपटारा करतोर होली। हुताए 21 ले 23 अगस्त मंजी सर्वोच्च न्यायालय परिसर ने खास लोक अदालत करून भाती बोले ठेबलो मामला मंचो सुनवाई होई दे। पक्षकार मन के आपलो ठेबलो मामला मन के विशेष लोक अदालत ने शामिल करतो काजे जानकारी सर्वोच्च न्यायालय चो वेबसाइट ने 31 मई तक ले गूगल फार्म ने देखलाय पड़े दे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी गेलो 6 मई के बीजापुर जिला चो तर्रेम गांव ने बैंक ऑफ बड़ौदा चो नुआ शाखा चो वर्चुअल उवाट ले मूर करला। ए मौका ने वित्त मंत्री बोला कि बैंक शाखा खुल्लो ने देहात चो लोग मन के एदाय आपलो ठान मन ने ची सरल हिसाब ले बैंक चो सपाय खास सहायता मिरुक सके दे। श्री चौधरी बोला कि एदाय बस्तर बदल तो बाटने झपके पूरे बाटते जाए से जेथा आगे बैंक चो कई सहायता नहीं रली हुता आजी गांव गांव ने बैंक सहायता अमरे से। रैयत चो लोग मंचो चीपाडंड के तुरते गुचा तो काजे बस्तर संगे गुलाय राज ने आजिकाली सुशासन तिहार कार्यक्रम मन होय से। ए धाड़ी ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी गेलो 6 मई के कांकेर जिला चो माकड़ी खुना गांव ने होलो कार्यक्रम ने अमरला। ए मौका ने हुन सपाय गांवकारी मन संगे गोट बात करून भाती हुन मंचो चीपाडंड चो गुहार के सुनला। संगे ची कैक हितग्राही मन के मृतो बीती योजना चो हिसाब ने 30 समान बले बाटला। सुशासन तिहार हिसाब ने वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर जिला अमरला। ए मौका ने गांवकारी मन मोबाइल नेटवर्क नंगत पीऊ तो पानी चो सहायता और खेल भाटा चो काम पड़तु गोट मन उपरे आपलो विचार सांगला। एच उपरे श्री कश्यप गांवकारी मन के खूबे झपके एचो लाभ अमरा तो विश्वास देउन भाती अधिकारी मन के बल्ला कि कोनी बले आवेदन बाचुन नी रहो। हुताए कोंडागांव जिला चो प्रभारी सचिव भीम सिंह 6 मई के धनोरा गांव चो पीएम श्री स्कूल ने सुशासन तिहार के लागून सपाय जिला अधिकारी मंचो बस का धरला। इस समय ने प्रभारी सचिव बल्ला कि सुशासन तिहार हिसाब ने मृतो आवेदन मन के सपाय विभाग चो लोग मन नंगत ध्यान देओत और एमंचो सहायता काजे नंगत बरसक वाट करोत। ए बाटे बीजापुर जिला चो ग्राम पंचायत ईटपाल ने सुशासन तिहार चो हिसाब ने जन समस्या निवारण शिविर बस का होली। शिविर ने ईटपाल संगे लगे लगे चो कय गांव चो गांवकारी मन अमरून रला। शिविर ने मिरलो 120 टन आवेदन मंचो तुरते निराकरण सुनवाई होली। सुशासन तिहार हिसाब ने सुकमा कलेक्टर अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक किरण चौहान फटफटी ने बसुन भाती गोंडेरास और नीलावाया गांव अमरला। उदलनाए गांवकारी मन सोलर प्लेट मंचो नस्त गोट के सांगला। जो चुपरे कलेक्टर बाटले क्रेडा विभाग के सपाए घरे घरे सुधरा तो जतना तो काजे ध्यान देउक बल्ला। ए मौका ने गोंडेरास गांव ने आंगनबाड़ी और पंचायत भवन काजे 70 लाख रूपया चो स्वीकृति दिला। हुताए नीलवाया गांव ने कलेक्टर बाटले ढोड़ा उपरे पुलिया बना तो काजे बोले स्वीकृति दिला से। वन मंत्री केदार कश्यप गेलो दिने नारायणपुर जिला ने 10वीं और 12वीं चो बोर्ड परीक्षा ने सबले आगर नंबर पाओ तो बिता 11 जन पढ़तो पीला मन के मान करला। ए मौका ने श्री कश्यप सपाय पीला मन के पुस्तक देउन भाती हुन मंचो ए तो नंगत समय काजे गुहार करला। संगे ची वन मंत्री बाटले नारायणपुर ने प्रतियोगी परीक्षा मंचो तैयारी काजे कोचिंग सेंटर खोलतो काजे बोले घोषणा करला। कांकेर जिला ने एबे गेलो दिने स्कूल शिक्षा विभाग बाटले कांकेर चो गौरव कार्यक्रम होली। जिला पंचायत सभा कक्ष बाखरा ने होलो ये कार्यक्रम ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्राचार्य मन और पीला मन के मान करला। ए मौका ने श्री चौधरी बल्ला कि आजी चौसन हारा जीता चो जीवना ने नुआचारी उवाट और हिम्मत देतो शिक्षा खूबे खास आए। कोंडागांव जिला चो फरसगांव और माकड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिरली से। केंद्र सरकार बाटले नियुक्त होलो राष्ट्रीय मूल्यांकन करता मंचो दल बाटले दोनों स्वास्थ्य केंद्र मंचो जांचा परखा करतो रहली। ए समयाने स्वास्थ्य सेवा चो नंगत सहायता भर्ती होलो बीमार लोग मन के देतो सहायता लाभ साफ सफाई और पक्की करलो प्रोटोकॉल चो पालन संगे ची कई गोट मन के ध्यान देतो रहली। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान हिसाब ने कोंडागांव जिला ने चलतो बीती घर घर स्वास्थ्य जांच अभियान चो प्रभारी सचिव भीम सिंह बदवर गांव अमरला और जांच करला। उदलनाए हुन गांवकारी मंचो स्वास्थ्य जांच उवाट के दखला। प्रभारी सचिव बाटले जिला ने एनीमिया चो मामला के नगद ध्यान देउन भाती जांच करून बीमार धरलो लोग मन के समय समय ने नगद उपचार चो सहायता देउक बल्ला। ए अभियान हिसाब ने एवतले जिला चो सपाए जनसंख्या चो 45% ले आगर लोग मन चो जांच करलो रासे। हुताए बड़े बीमारी होलो बीता 1200 ले आगर बीमार लोग मन के बड़े अस्पताल मन ने उपचार काजे पठालो राशि। छत्तीसगढ़ ने किसान मन काजे अनुदान ने कृषि औजार मशीन मन और सिंचाई समान काजे ऑनलाइन आवेदन चो काम 7 महीले मुरहोली से। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम चो हिसाब ने चैंपस पोर्टल ने किसान मन आवेदन करुक सकदे। हुताए शाकंभरी योजना हिसाब ने 11 महीले और ट्रैक्टर हार्वेस्टर रोटावेटर संगे दूसर कृषि मशीन समान काजे आवेदन 15 महीले धरतोर हो दे। आवेदन काजे आधार कार्ड बैंक पासबुक और पट्टा पर्चा लागे दे। जगदलपुर चो क्रांतिकारी डेबरीधुर उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र चो वैज्ञानिक मंचो 9 बरख चो मसागत कामिली और बस्तर ने पहिल हार लीची चो बूटा ने पहिल हार फरधरुक मुरियाली। उद्यानिकी महाविद्यालय परिक्षेत्र ने इंद्रा लीची 2 अंबिका लीची 1 चाइना शाही और रोज सेंटेड जसन 5 ठन मूर किस्म चो 40 ठन महा बूटा रोपरो रली। उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय चो प्रोफेसर रवि रतन सक्सेना सपाए वैज्ञानिक मंचो सहरानी करते बल्ला कि बस्तर ने लीची चो नंगत फर धरतोर सोजे गोटो खोजाकारी सफलता नो आए। पहारले क्षेत्रीय कृषि विकास चो बाट ने खूबे खास सफल चीना आए। कांकेर जिला चो ग्राम पंचायत मूला चो पिच्चे कट्टा तरई के नुआ वाटर एडवेंचर बनातो उवाट होय से। सांसद भोजराज नाग मावली हिल्स चो नावले बनलो बीती नुआ वाटर एडवेंचर के मूर करला। ए मौका ने हुन बल्ला कि आगे बस्तर चो जाना चीना गोला बारूद ले होते रली एदाए एके पर्यटन केंद्र हिसाब ने जानतोर होए दे। सरासरी मूर खबर मन के फिर सुनाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल बाटले राष्ट्र गीत वंदे मातरम के एदाए राष्ट्रगान चो असन संवैधानिक संरक्षण देतो काजे संशोधन प्रस्ताव के स्वीकृति दिला। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने राज्य ने होलो सामूहिक विवाह उदिम ने 2300 ले आगर जोड़ी मंचो बिहार उसुम होली। वन मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS आधारित सूचना और संवाद तंत्र के मूर करला और सुशासन तिहारी साहब ने आजिकाली राजभर ने होय से जन समस्या निवारण शिविर। इसी संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंकित है सरे से जुहा।
1: अभी आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं।
2: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
5: 8700001424।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अरब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, रचना मजरू की है, संगीत बासु मनोहरी का है। फिल्म है सबसे बड़ा रुपया।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने

0: के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री N रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: N रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
10: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता

0: से कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the

अभी आप सुन रहे थे जलधर और साथियों के स्वर में भत्री लोकगीत। आइए अब सुनते हैं हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार है चंदन कश्यप और साथी

पिताजी जेकर नाम अर्जुन हवे तो उन्हें जिसके इस राजा द्रुपद है हाथ जोड़ करके कहते धन्य हो अर्जुन के धन्य हो मोर दल्ला दे जिसके ले आए द्रुपद कथे मैं तो लगाते अर्जुन ये जन्मो कन्या हवे तो लगे तो सुपुर्द करता हूँ ये मुला समझी बना ले और ये तीन राजा दुर्योधन।

0: पता लग गया, बस पे पता लग गया
1: है।
0: अब पांडव के कर्तव्य हवे छोड़ करके वो 12 साल फिर बनवा जाही
1: है।
0: तब बोला राधा राज में ही
1: है।
0: एक जाना दूसरे से दया लागे भैया, धर्म के पासे तू मतलब है। जिस धर्मराज के पास आई चिट्ठी पढ़ के राजा सुशीला चिंता हो गए, हे भगवान मैं 12 साल वनवास गये, एक साल अज्ञातवास गयो,
1: फिर
0: कर्तव्य हम हो निभावा, मांगे 5 गांव नहीं पावा, 5 गांव नहीं दो कहा थे, का उपाय करना चाहिए। अर्जुन कथे भैया हमार प्रति कन्या मिल गए, पुत्र अभिमन्यु के शादी कर
1: दे।
0: चिट्ठी अर्जुन लिख करके दूत लग भेजते, अरे
1: तो
0: नाम है।

0: अर्जुन लिखते से फिल भेजते भैया
1: हाँ।
0: मैं सदा तो चरण के दास हो
1: हाँ।
0: तुमरो कृपा कुशल बने आवा
1: हाँ।
0: तोरे कृपा से मैं कुशल राजा विराट के घर में निवास करूँ
1: हाँ।
0: अब वो अभिमन्यु के शादी करना हमें
1: हाँ।
0: हालत

मैं भैया बलराम के सहित मैं अभिमन्यु के शादी के निमंत्रण देता हूँ। यदवंशी जब खावे करते हैं राजा, दूध पत्र लेकर के भगवान

आंदोलन मिले खातिर बन भगवान लाला लाइब्रेरी सबे गजब दिन हो गए। अरे पांडव केरी तरह से नहीं पावा जब ते बन पांडव चले जावा गजब दिन हो गए।

0: विधान पांडव मन पूजा करके दोनों हाथ जोड़ करके कथे द्वार का नाम है ते आके हमला जब सुन लिए है ब्राह्मण ला बुलवा करके राजा विराज हम लगन ला धरवाई
1: है।
0: अरे पानी ग्रहण कर मुहूर्त धरावा और निज मुलरी तपे ब्याह करावा और दहेज कथित दी दाढ़ी तीन दहेज कुबेर लजावा अतिक दहेज दी पांडव के पांडव मल्ला के कुबेर झलाल
1: है।
0: ये कर बाद में भगवान कृष्ण राजा द्रुपद
1: है
0: श्रीखंडी धृष्णु
1: है
0: काशी नरेश
1: है
0: राजा द्रुप विराज
1: है
0: महावीर उत्तरा कुमार
1: है
0: शंख पांडव भाई पांडव अभिमन्यु के सहित भगवान कृष्ण हमनन करी
1: है।
0: भैया अरे निज कर्तव्य पांडव निभावा आधा राजा गुरु नाथ बतावा। अरे सुन करके राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कथे प्रभु
1: है।
0: अरे तीन बंधु तुम नाम धरा भाई सकल जगत।

0: गदा मस्तक में या सुपुर्ण चंदन खांदे देखो पवित्र पैर में चंदन के खड़ा हूँ और पीतांबर पहने भगवान।
1: अभी आप सुन रहे थे झाड़ू राम देवांगन और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी पंडवानी। इसी के साथ ही विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी।

0: बाल बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं प्रतीक्षा नैन्सी विकास नमस्कार करती हूं और साथ ही प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार देती हूं। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों, आज फिर से रविवार के दिन ठीक अपने वायदे के मुताबिक हम और आप एक दूसरे के साथ इस बालबाड़ी कार्यक्रम में फिर से एक दूसरे के साथ उपस्थित हैं। तो सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सारे बच्चे आज फिर से इस बालबाड़ी कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ और मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी एक दूसरे के लिए जोर से ताली बजाएंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है ईमानदारी का महत्व। आप सब ईमानदारी से क्या समझते हैं?

0: बेटा आप बताओ, ईमानदारी क्या होता है? बताओ, बोलो, क्या होता है ईमानदारी?
1: सच्ची रह, सच रह, सच का साथ देना।
0: सच का साथ देना, आपकी नजर में सच का साथ देना। बेटा आप बताओ क्या होता है ईमानदारी?
2: वफादार होना।
0: वफादार होना। और कोई कोई है जो बताएगा क्या है ईमानदारी? आप बताओ बेटा।
2: हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करना।
0: हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करना। ईमानदारी का मतलब होता है हमको अपने ईमान को, चाहे वो किसी के भी प्रति क्यों ना हो, हमेशा वफादार बनाए रखना, है ना? कभी कभी हम अपने ईमान से डोल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, है ना? जैसे अभी आप छोटे बच्चे हैं, जब आप अपने दोस्तों के घर जाते हो तो आपको उसके पास कुछ अच्छा खिलौना दिखता है। खिलौना से मतलब अभी आप थोड़े बड़े बच्चे हैं, किसी का बैट अच्छा लगता है, किसी का बॉल अच्छा लगता है, किसी का टी शर्ट अच्छा लगता है, किसी का कुछ भी अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हो, उसको देख करके अगर धीरे से उसको चुरा लिए और अपने घर ले आए, और उसके बाद जब वो बोले कि ये तो मेरा है, तो आप बोलोगे नहीं ये तो मेरा है, तो क्या होगा? आप अपने ईमान से डगमगा जा रहे हो, है ना? आप झूठ बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सच नहीं बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो, है ना? तो हमको ईमानदारी का महत्व को समझना है, हमको हमेशा ईमानदार रहना है, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा ईमान गलत हो, है ना? होता है कि नहीं? कभी कभी हम देखते हैं टीवी में, आसपास अड़ोस पड़ोस में, पिक्चरों में, है ना, लोग पैसों के लालची हो जाते हैं, अपने ईमान को खो देते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, डाका डालते हैं, है ना? ये क्या होता है? क्या वो ईमानदार होते हैं? नहीं होते, है ना? ये सब गलत है ना? जब हम सच्चाई से अपने काम को करते हैं, सही रीति से अपने काम को करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ईमानदारी, है ना? आप सुने हो कि बहुत से लोग छोटे छोटे कामों के एवज में क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, इसके बदले में मुझे ये देना, है ना? कभी कभी आप बच्चे लोग भी अपने मम्मी पापा से कह बोलते हो कि नहीं, ठीक है मम्मी मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आप मेरे को 50 रुपए दोगे, मैं एक गिलास पानी ला दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए ये कर दोगे। यहां से शुरुआत होती है, हम शर्त रखने लग जाते हैं, है ना? तो ये ईमानदारी नहीं कहलाती। ईमानदारी वो होती है जब हम सच्चे रूप में, सही अर्थों में, बिना किसी स्वार्थ के, है ना, बिना किसी गलत भावना के, जो काम है उसको सही रीति से करना ही क्या कहलाता है? ईमानदारी कहलाता है। और हमको ईमानदारी के महत्व को समझना है। जो ईमानदार होते हैं, जो अपने ईमान को हमेशा बचा के चलते हैं, जो अपने ईमान को हमेशा बना के रखते हैं, वो जीवन भर सुख से रहते हैं। लेकिन जो अपनी ईमानदारी को नहीं बचाता, जो अपनी ईमानदारी को नहीं बना करके रखता है ना, उसे कभी भी क्या है, उसे कभी भी सही नींद नहीं आती। वो दिन भर कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन जब वो रात में बिस्तर पर जाता है ना, तो सोते समय जब हम अपना आकलन करते हैं, आत्मा आकलन, कि आज हमने दिन भर क्या किया, तो हमको हमारी गलती याद आती है, और उस समय हमको क्या लगता है? ईश्वर का डर लगता है, भय, और हमको नींद नहीं आती। तो हमको एक सही जीवन जीने के लिए हमेशा ईमानदार बने रहना है, और इसकी शुरुआत हमें अपने बचपन से ही करनी है ना? कोई कुछ भी बोल डाले, कोई कैसा भी करे, हमको अपनी ईमानदारी को बनाए रखना है, अपनी ईमान को कभी भी डगमगाने नहीं देना है। तो समझ गए सारे बच्चे ईमानदारी का महत्व? जोर से बोलो
3: जी।
0: चलो, बहुत अच्छी बात है, आप सबने ईमानदारी के महत्व को समझा। तो अब मैं आती हूँ सामुदायिक गीत की ओर, और हम सुनते हैं एक सामुदायिक गीत जो कि आसामी भाषा का है, और इसके रचनाकार हैं सत्य।

0: इस सुंदर से सामुदायिक गीत के बाद अब हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों की ओर आते हैं। और बेटा, आप अपना नाम बताइए, आप आज क्या सुनाना चाहती हो?
1: मेरा नाम है अर्शी और मैं कहानी और कविता दोनों सुनाना चाहती हूँ।
0: कहानी और कविता दोनों। तो पहले क्या सुनाओगी बेटा?
1: कहानी।
0: कहानी। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
1: बंदर और जुगनू।
0: बंदर और जुगनू। चलो सुनते हैं कहानी बंदर और जुगनू की। चलो बेटा सुनाओ।
1: एक बार जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कुछ बंदर ठंड से कांप रहे थे। तभी उन्हें कुछ जुगनू दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने चिंगारी समझ लिया और उन्हें फूंक मारकर गर्माहट पाने की कोशिश करने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी एक गौरैया यह सब देख रही थी। उसे बंदरों की मूर्खता पर दया आई और वह बोली, भाइयों, ये आग नहीं जुगनू है, इनसे ठंड कम नहीं होगी, आप कहीं कूफा ढूंढ ले। बंदरों को एक छोटी सी चिड़िया की सलाह पसंद नहीं आई। एक अहंकारी बंदर को इतना गुस्सा आया कि उसने पेड़ पर चढ़कर गौरैया का घोंसला तिनका तिनका कर तोड़ दिया। बेचारी गौरैया को अपने नेक सलाह के बदले अपना घर गंवाना पड़ा। मूर्ख व्यक्ति को सलाह देना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है।
0: बहुत ही सुंदर कहानी। क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी जबरन हमको किसी को शिक्षा नहीं देना, खास तौर पर उस व्यक्ति को जो क्या है, मूर्ख है, दिमाग से पैदल है। तो सुंदर कहानी के लिए अर्शी के लिए सब ताली बजाएंगे। अब अर्शी कविता सुनाने जा रही है। बेटा, आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
1: सपने नए हैं आंखों में।
0: सपने नए हैं आंखों में। चलो बेटा सुनाओ।
1: सपने नए हैं आंखों में, ऊंची नई उड़ान है, आसमान के कंधों पर तारे नए सजाने हैं, लिखने हैं कुछ नई मंजिले और नई कुछ राहें, हिम्मत और मेहनत से लिखनी है कुछ चाहे। नए समय के बच्चे हैं हम, सपनों के पौधे उगाने हैं, आसमां के कंधों पर तारे नए सजाने हैं। इस दुनिया से सीखेंगे कुछ, कुछ हम इसे सिखाएंगे, नए सफर पर निकले हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। फूलों की खुशबू से हर आंगन महकाने हैं, आसमां के कंधों पर तारे नए सजाने हैं।
0: बहुत ही सुंदर कविता। एक बार फिर से अर्शी के लिए जोरदार सब ताली बजाएंगे। जोर से बजाइए। अर्शी के बाद बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: यश।
0: यश। यश पूरा नाम बोलो।
2: यश पॉल।
0: यश पॉल। बेटा आप क्या सुनाओगे?
2: कविता।
0: कविता। आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
2: तितली।
0: तितली। बटरफ्लाई है ना, तितली। चलो बेटा सुनाओ।
2: रंग बिरंगी तितली आई, चंचल नैनो वाले तितली, चमचम तारे जैसे छाई, काश हम भी तितली होते, हमारे भी रंग बिरंगे पंख होते, हम भी आसमान पर छा जाते, हम भी फूलों पर मंडराते, तितली आई रंग बिरंगी तितली आई।
0: बहुत ही सुंदर कविता। छोटी सी प्यारी सी तितली, रंग बिरंगी तितली है ना। हम अपने आसपास हमेशा रंग बिरंगी तितलियों को देखते हैं। जब मैं छोटी थी ना आप लोग के जैसे, तो तितलियों के पीछे दौड़ती थी। तो यश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। सभी फिर से ताली बजाएंगे यश के लिए। अच्छे से बजाइए बेटा। यश के बाद बेटा आप अपना नाम बताओ।
3: हर्षित।
0: हर्षित। हर्षित आप क्या सुनाओगे?
3: एक कहानी और एक कविता।
0: एक कहानी और एक कविता। तो आप पहले क्या सुनाना चाहते हो?
3: कहानी।
0: कहानी। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
3: चांदी का अंडा देने वाली मुर्गी।
0: चांदी का। मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी हूँ, आज पहली बार चांदी का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनूंगी। चलो बेटा सुनाओ।
3: एक बार एक औरत ने बाजार से एक सुंदर मुर्गी खरीदी। यह मुर्गी रोजाना एक चांदी का अंडा देती थी, और औरत ने जब चांदी का अंडा देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा यदि यह मुर्गी एक से अधिक अंडे देगी तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वह अमीर हो जाएगी। ज़्यादा अंडे पाने के लिए उस औरत ने मुर्गी को ढेर सारा खाना खिलाया। उसने सोचा मुर्गी जितना ज़्यादा खाएगी उतने ज़्यादा अंडे देगी। अगली सुबह जब वह औरत अपनी मुर्गी के दबेड़े में गई तो उसने अपनी मुर्गी को मृत पाया। अपच के कारण मुर्गी मर गई थी और अब वह कभी भी अंडे नहीं दे सकती थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।
0: बहुत ही अच्छी कहानी, मैं ये कहानी सुन चुकी हूँ, हम सब सुने हैं, बस अंतर ये हो गया कि सोने की जगह चांदी हो गया, यही एक नयापन था। तो हम हर्षित के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोर से। हर्षित एक कविता भी सुनाना चाहते हैं बेटा, आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
3: चले चलो।
0: चले चलो कहाँ जाना है?
3: कविता का
0: नाम। अच्छा, कविता का नाम है, चलो सुनाओ।
3: ना रुको कभी ना थमो कभी, बस राहों पर अपनी चले चलो चले चलो। मुश्किलें आएंगी हजार, मानना कभी हार, मंजिलों की ओर यह मुसाफिर बड़े चलो चले चलो। जिंदगी एक कविता को समझो, अल्फाजों में न उलझो, हर एक नजम को तबीयत से पढ़े चलो चले चलो। तूफान से भर समुद्र में विकराल लहरों पे अपनी मन को कश्ती पर संभाले चलो चले चलो। चट्टानों को पार करते हुए, सपनों पार धार करते हुए, जीवन पर्वत शिखर पर चढ़े चलो चले चलो।
0: बहुत ही सुंदर कविता, चले चलो चले चलो। तो चलिए हम हर्षित के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हर्षित के बाद विभू नाम याद हो गया मुझे। तो विभू बेटा आप क्या सुनाओगे?
4: कविता।
0: कविता, आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
4: आम की टोकरी।
0: आम की टोकरी, गर्मी का मौसम है और आम फलों का राजा है, तो हम सुनते हैं विभू के द्वारा आम की टोकरी। ये कहानी है कि कविता है?
4: कविता।
0: कविता, चलो बेटा सुनाओ।
4: 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना।
0: बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कविता, तो गर्मी के मौसम में आम सभी चूस रहे हैं, फल का उसके मीठे रस का स्वाद ले रहे हैं, तो सभी विभू के लिए ताली बजाएंगे। विभू के बाद अब है निक। निक बेटा आप क्या सुनाओगे?
5: कहानी।
0: कहानी, आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
5: मूर्ख बिल्लियां।
0: मूर्ख बिल्लियां, आप भी कविता सुनाना चाहते हो कहानी के बाद?
5: नहीं
0: नहीं, आप सिर्फ कहानी सुनाओगे, ठीक है, चलो बेटा सुनाओ।
5: एक बार एक बिल्ली ने सड़क पर रोटी का एक टुकड़ा देखा, एक और बिल्ली ने भी देखा, और दोनों एक ही समय में उस पर झपट पड़े। बिल्लियां लड़ने लगी। कुछ समय बाद पहली बिल्ली ने सुझाव दिया कि वे रोटी को 2 बराबर टुकड़े में बांट ले। इस बीच एक बंदर वहां आ गया। बंदर बहुत चालाक था, उसने रोटी को 2 टुकड़ों में बांट दिया और उनके आकर की जांच की, लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था, इसलिए उसने बड़े टुकड़े से काट लिया। फिर उसने देखा कि दूसरा टुकड़ा बड़ा था और उसने उससे भी काट लिया। वह कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा और आखिर आखिरी में उसने सारी रोटी खा ली और बिल्लिया के पास कुछ भी नहीं बचा। नैतिक शिक्षा, मूर्ख वह है जो दूसरे मूर्ख पर भरोसा करता है।
0: क्या मिलती है इस कहानी से शिक्षा हमें? मूर्ख वही है जो दूसरे मूर्ख पर भरोसा करता है। तो हम तो मूर्ख नहीं है, है ना निक
5: जी?
0: हम मूर्ख है कि बुद्धिमान है?
5: बुद्धिमान।
0: बुद्धिमान है। हमें दूसरे मूर्ख पर भरोसा करना है?
5: नहीं
0: नहीं। किस पर भरोसा करना है?
5: जो बुद्धिमान हो।
0: जो बुद्धिमान है। तो चलो इसी बात पर निक के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बेटा आप अपना नाम बताओ।
6: जिया।
0: जिया, जिया आप क्या सुनाओगी?
6: मैं आज एक कविता सुनाऊंगी।
0: कविता, आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
6: माँ।

0: चलो बेटा सुना।
1: प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना मुझे सिखाती माँ, मंजिल मुझे दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना मुझे खिलाती माँ, लोरी गाकर सुलाती माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ।
0: बहुत ही सुंदर कविता माँ के ऊपर है ना। अभी हम हाल ही में एक न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें एक माँ अपने छोटे से 4 साल के बच्चे को अपनी गोद में लिए लिए उसे छोड़ा भी नहीं और इस दुनिया से चली गई पानी में डूबकर। लेकिन उसने डूबते हुए भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी होती है माँ जो 9 महीने हमें अपने अंदर रखती है और हमारे पैदा होने से पहले ही जान जाती है कि हम कैसे हैं। तो सारे बच्चे जिया के लिए ताली बजाएंगे। बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: रवि जॉन
0: रवि। रवि आप क्या सुनाओगे?
2: कविता
0: कविता। आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
2: बचपन।
0: बचपन। चलो बेटा सुनाओ।
2: मासूमियत से भरे बचपन की मासूमियत का जवाब नहीं, क्या कहूँ उनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं। पल में रोते पल में हंसते, उनको ये तक ज्ञात नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे पास शब्द नहीं। बचपन होता कितना प्यारा, जिससे कोई भेदभाव नहीं, क्यों पल में खेले और झगड़े, मेरे पास शब्द नहीं। तोतली बोली और किलकारी उनकी, उनके पास कोई मासूम नहीं, क्या कहूँ मैं प्रभु की लीला है, मेरे पास शब्द नहीं। मासूमियत से भरे बच्चों की मासूमियत का जवाब नहीं, क्या कहूँ उनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं।
0: बहुत ही सुंदर सी कविता है ना। बचपन, हम सब अभी, मैं नहीं, आप सब अभी अपने बचपन में है ना। तो बेटा आप अपने बचपन को बहुत अच्छे से इंजॉय इंजॉय करो, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, मस्ती करो, क्योंकि बचपन एक बार चला गया तो लौट कर कभी नहीं आएगा। तो हमको हमारे बचपन को जीना है और आप लोगों का बचपन देख के हम भी जिएंगे। तो अंकित के लिए ताली बजाएंगे सभी जोरदार। तो रवि के लिए हम सब ताली बजाएंगे जोर से। आप कुछ और सुनाना चाहते हो बेटा?
2: कहानी
0: कहानी। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
2: भेड़िया और सारस।
0: भेड़िया और सारस। सभी ध्यान से सुनेंगे कहानी।
2: एक दिन एक भेड़िए को जंगल में बैल का मांस मिला। वह लालच से मांस खाने लगा। उसके गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और उसका दम घुटने लगा। अचानक भेड़िए को याद आया कि पास में एक सारस रहता है। भेड़िया सारस के पास गया और मदद की भीख मांगी और बदले में इनाम देने का वादा किया। सारस को भेड़िए पर दया आई और वह मदद के लिए तैयार हो गया। भेड़िए ने अपना जबड़ा चौड़ा किया और सारस ने आसानी से हड्डी निकाल ली। फिर सारस ने भेड़िए को वादा किए गए इनाम की याद दिला दी। उसने कहा, क्या इनाम? भेड़िए ने टिप्पणी की, जब तुम्हारी चोंच मेरे मुंह में थी तब मैं तुम्हें काट सकता था। बस आभारी रहो कि मैंने तुम्हें जीने दिया। सारस की प्रतिक्रिया से पहले स्वार्थी भेड़िया भाग गया। नैतिक शिक्षा, कृतज्ञता और लालच एक साथ नहीं रहते।
0: कितनी सुंदर कहानी है ना। क्या शिक्षा मिलती है हमको? कृतज्ञता और लालच एक साथ नहीं रहते। तो रवि के लिए फिर से सब जोरदार ताली बजाएंगे जोर से। रवि के बाद बेटा आप अपना नाम बताओ।
1: मेरा नाम सारा है।
0: सारा। सारा आप क्या सुनाओगी?
1: मैं अपनी खुशी के बारे में सुनाऊंगी।
0: अपनी खुशी के बारे में बताओगी। चलो बेटा बताओ।
1: अपनी खुशी तलाशती मैं कभी बंद अलमारी और बंद दरवाजों में, कभी खुली खिड़कियों में, तो कभी यादों के झरोखों में, कभी गैस पर चूड़े कुकर में, तो कभी भगोने में उबलती खीर में, कभी सड़क से आती कार की आवाज़ में, तो कभी सड़क पर चलती हवा में, कभी बजती डोर बेल में, तो कभी सुनाई आती आरती में, कभी नल से टपकते पानी में, तो कभी भरे मटके में, कभी सन्नाटे को चीरती सब्जी वाले की आवाज़ में, कभी सोचती सी मैं जाने कहाँ गए वे दिन,

0: वापस उनके लौटने की आशा में और समेटी हुई अपनी अभिलाषा में, बटोरी गई हिम्मत और समेटी गई उम्मीद में।
1: बहुत ही सुंदर, क्या है ये, कविता, या इसे हम लेख भी कह सकते हैं। तो बेटा आपका नाम फिर से एक बार बोलो।
0: मेरा नाम सारा है।
1: सारा। तो सभी सारा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सारा कुछ और सुनाना चाहती हो?
0: पेड़ लगाओ ऐसा।
1: पेड़ लगाओ ऐसा, ये कहानी है कि कविता है?
0: कविता।
1: कविता। चलो बेटा सुनाओ।
0: पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा, बिस्कुट के पत्ते हो जिसमें, फल हो टॉफी जैसा, आइसक्रीम का रस हो जिसमें, कोत हो च्युइंग गम जैसा, दही मक्खन बर्फी बन जाए, दूध बहे कुछ ऐसा, डाल पकड़कर अगर हिलाएं टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा।
1: पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा। तो सारा के लिए फिर से जोरदार ताली बजाएंगे। सारा के बाद अब हम आते हैं, बेटा आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम है अर्पित।
1: अर्पित। अर्पित आप क्या सुनाओगे?
2: मैं पहले एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद एक और कविता सुनाऊंगा।
1: अच्छा, पहले एक कहानी और उसके बाद एक कविता। चलो बेटा सुनाओ।
2: मेरे कहानी का शीर्षक है बंदर और जुगनू। एक बार
1: बंदर और जुगनू, ध्यान से सब सुनेंगे।
2: एक बार जंगल में कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, कुछ बंदर ठंड से कांप रहे थे।
1: बेटा आप अपना नाम बताओ।
3: क्रिंची।
1: क्रिंची। क्रिंची आप क्या सुनाओगी?
3: कहानी।
1: क्या, फिर से बोलो।
3: कहानी।
1: कहानी और कुछ?
3: कविता।
1: कहानी और कविता दोनों। तो पहले क्या सुनाओगी? कहानी। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
3: ईमानदार बच्चा।
1: ईमानदार बच्चा। चलो एक बार फिर से हम ईमानदारी को जाने और क्रिंसी के द्वारा सुनते हैं ईमानदार बच्चे की कहानी। चलो बेटा सुनाओ।
3: एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। वह बहुत ही सीधा सादा और ईमानदार था। एक दिन उसे स्कूल जाते समय रास्ते में एक पर्स बटुआ मिला। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें काफी पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। राहुल के मन में एक पल के लिए आया कि वह पैसे रख ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह गलत है। वह पर्स लेकर सीधे अपने शिक्षक के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। शिक्षक ने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की और स्कूल में घोषणा करवाई। थोड़ी देर बाद उस पर्स का मालिक स्कूल पहुंचा, उसे अपना पर्स वापस मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और राहुल को इनाम देना चाहा, लेकिन राहुल ने विनम्रता से मना कर दिया। राहुल की ईमानदारी देखकर सभी लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता, सच्चाई हमेशा सम्मान दिलाती है।
1: बहुत ही सुंदर कहानी। आज का विषय ही था ईमानदारी का महत्व। ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता, सच्चाई हमेशा क्या होती है, हमें क्या दिलाती है बेटा? सच्चाई क्या दिलाती है?
3: सच्चाई हमेशा सम्मान दिलाती।
1: सच्चाई हमेशा सम्मान दिलाती है। सच्चाई मतलब ईमानदारी, और ईमानदारी हमेशा हमें सम्मान दिलाती है। तो क्रिंसी के लिए सब ताली बजाएंगे जोर से। एक कविता भी सुनाना है आपको, है ना? आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
3: ईमानदारी का दीपक।
1: ईमानदारी का दीपक। चलो बेटा सुनाओ।
3: ईमानदारी का दीपक जलाओ, सच्चाई की राह पर चलते जाओ। झूठ भले ही चमक दिखाए, सच हमेशा जीत ही पाए। लालच से दूर रहो तुम, साफ दिल से काम करो तुम। मेहनत का फल मीठा होता है, ईमानदार कभी नहीं रोता है। छोटा हो या बड़ा इंसान, सच से बढ़ता उसका मान। दुनिया में वही है सबसे न्यारा, जिसने ईमानदारी को है सहारा।
1: बहुत ही सुंदर कविता ईमानदारी के ऊपर। सारे बच्चे एक बार फिर से कृषि के लिए ताली बजाएंगे। बेटा आप अपना नाम बताओ।
4: मेरा नाम एंड्रिक है।
1: एंड्रिक। एंड्रिक आप क्या सुनाओगे?
4: मैं एक कहानी सुनाऊंगा।

0: तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने सच्चाई बताई और बोला कि मेरा कुल्हाड़ी उस नदी पर गिर गया है। तब देवता ने उठकर उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो उसने साफ साफ मना कर दिया, यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई तो फिर लकड़हारा ने बताया कि ये भी मेरी नहीं है। तो देवता ने उसका कुल्हाड़ी दिया, परंतु उसने दो कुल्हाड़ी उसे तोहफे के रूप में दिया क्योंकि वो सच्चाई बता रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सच्चाई और ईमानदारी का साथ देंगे तो हमें जो नई चीज़ मिलती है वो भी मिल जाएगी।
1: इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ईमानदारी बनाए रहें तो एक समय पे हमें वो भी चीज़ मिलती है जो हम सोचे भी नहीं रहते। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अगर हम ईमानदार बने रहें तो उस समय ना सही, लेकिन समय आने पर हमें हमेशा अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी पे नहीं बने रहेंगे तो शुरुआत में तो सब अच्छा होगा, लेकिन अंतिम में हमारे साथ बुरा होता है। इसलिए हमेशा हमें ईमानदारी बनाए रखना है अपने जीवन में। तो सारे बच्चे एंड्रिक के लिए ताली बजाएंगे। बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम अर्पित जोयल है।
1: अर्पित, अर्पित आप क्या सुनाओगे?
2: मैं एक कहानी और एक कविता सुनाऊंगा।
1: एक कहानी और एक कविता। तो पहले क्या सुनाना चाह रहे हो आप?
2: पहले मैं कहानी सुनाऊंगा।
1: कहानी, आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
2: जादुई चिराग।
1: जादुई चिराग, चलो बेटा सुनाओ।
2: बहुत समय पहले तीन दोस्त थे, हाथी, मगरमच्छ और जिराफ। एक जंगल में वे सब साथ रहते थे। एक दिन उनके सामने एक जिन आया। जिन ने कहा, आप मुझसे जो करने के लिए कहेंगे मैं वह कर सकता हूँ। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी इच्छा बताई। हाथी ने कहा, मेरा सूंड बहुत लंबा है, कृपया मुझे एक छोटा सूंड दे दो। मगरमच्छ ने कहा, मेरे पैर बहुत छोटे हैं, मुझे लंबे पैर चाहिए। जिराफ ने कहा, काश मेरी गर्दन छोटी होती। जिन ने कहा, ठीक है। अब हाथी की सूंड छोटी हो गई, मगरमच्छ के पैर लंबे और जिराफ की गर्दन छोटी हो गई। हाथी बोला, अरे नहीं, अब मैं पानी अपने पूर शरीर पर नहीं डाल सकता, मैं गन्ना भी नहीं खा सकता, मेरी लंबी सूंड ही अच्छी थी। मगरमच्छ ने कहा, अब मैं पानी पे छिप नहीं पा रहा हूँ। जिराफ ने कहा, अरे नहीं, मेरी गर्दन इतनी छोटी है कि मैं लंबी शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता, कृपया हमारी मदद करें। जिन, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हम ऐसे नहीं बनना चाहते। जिन ने एक बार फिर सबकी इच्छा पूरी कर दी। पढ़ लिखो कि हार ना होती, आसमान पर चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ।
1: बहुत सुंदर कविता। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, हमेशा हमें पढ़ते जाना है। हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अर्पित के लिए फिर से जोरदार तालियां बजाइए। इस सुंदर सी कविता के बाद अब समय है मेरा कि मैं आपको आपकी पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा फिल्मी गीत सुनाऊं। सुनेंगे? जोर से बोलिए, सुनेंगे?
3: जी।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा फिल्मी गीत।

0: और सिस्टर मिसेस कुंवारी है।
1: रोक सको तो रोक लो का मॉर्निंग रागा है, जनता हवलदार को देख के मेर खा भागा है।
0: रोमांस कड़क है, फाइट के भी सीन है, इधर आसू साला विदाउट ग्लिसरीन है।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉबी के कुछ गीत।
3: बाहर से

फिल्म बॉबी सन 1973 में राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित एक ऐतिहासिक भारतीय हिंदी संगीतमय रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म से ऋषि कपूर और डिंपल कंपाड़िया ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। यह फिल्म एक युवा प्रेम कहानी पर आधारित थी जो अपने समय में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 1970 के दशक की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी।

फिल्म बॉबी की कहानी को जैनेन्द्र जैन, ख्वाजा अहमद अब्बास और बीपी साठी ने लिखा था। फिल्म बॉबी में अन्य कलाकार के रूप में थे प्रेमनाथ, प्राण, अरुणा ईरानी और प्रेम चोपड़ा।

फिल्म बॉबी के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी, राज कवि इंद्रजीत सिंह, तुलसी और विट्ठल भाई पटेल ने। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाजें दी थी शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल और मन्ना डे ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। आज इसमें आप सुन रहे थे फिल्म बॉबी के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला तीसरा स्थान। और प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। श्री शाह देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर में चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बागीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। नगरी प्रशासन विभाग ने कई वरिष्ठ इंजीनियरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार रायपुर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह को नगर निगम बिलासपुर भेजा गया है। वहीं कवर्धा के कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम को दुर्ग स्थित संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ब्रजेश श्रीवास्तव, ललित कुमार त्रिवेदी, सीबी परगनिया, हेमंत कुमार साहू, चंद्रशेखर सारथी और गगन वासन का भी तबादला किया गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपति से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आज सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। कल भिलाई में अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ वैशाली नगर के विधायक ऋकेश सेन ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सेंटर भिलाई दुर्ग क्षेत्र की महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा या अन्य किसी भी संकट के दौरान पीड़ित महिला को भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आज प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 तक रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला तीसरा स्थान और प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, इसमें आज आप सुनिए नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत ओ रोमियो फिल्म से, रचना गुलजार की है, संगीत विशाल भारद्वाज का है, स्वर दिया है अनन्या वाटकर ने।

आइए अब सुनते हैं सहदेव फिल्म का गीत। स्वर दिया है कपिल कपिलन और पावनी ने, बोल मंदार चोलकर के हैं, संगीत दाऊ जांद का है।

रश्मि विराग के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जावेद मोहसिन ने, आवाज़ें दी है जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल ने, फिल्म है सावी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तू या मैं का गीत। स्वर आदर्श गौरव और लोथिका का था, बोल चकोरी द्विवेदी के थे, धुन बनाई थी आदर्श गौरव और आदित्य ने। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन। इसमें आज आप सुन रहे हैं नए तराने। आइए अब सुनते हैं जावेद अली के स्वर में वेलकम वेडिंग फिल्म का गीत। रचना सईद क्वादरी की है, संगीत दिया है राज आशु ने।

योद्धा आइए अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं। गीत लिखा है कुशल किशोर और विशाल मिश्रा ने, संगीत विशाल मिश्रा का है और स्वर दिया है विशाल मिश्रा ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए रूमी और तनिष्क बाख्शी की आवाजों में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे नए तराने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति गायत्री आचार्य की है। संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: श्रोताओं नमस्कार। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरा संसार समाया हुआ है, जिसकी गोद में सुकून है, जिसकी दुआओं में जन्नत है और जिसकी ममता हर दर्द की दवा बन जाती है। माँ केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन की पहली शिक्षक, पहली दोस्त और सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले जो हाथ हमें संभालता है वो माँ का होता है, और जब हम दुनिया छोड़ जाते हैं तब भी माँ की दुआएं हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं। श्रोताओं, माँ के प्यार को शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फोन इन चाहत कार्यक्रम में आइए जानते हैं कौन है हमारे सबसे पहले कॉलर।
1: हेलो, फोन इन चाहत, आकाशवाणी जगदलपुर।
2: जी हाँ, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, मैं आपका नियमित रेडियो श्रोता अस्पताल लोक केंद्र सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौर बोल रहा हूँ।
2: जी चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन चाहत कार्यक्रम में। बताइए चंद्रेश
1: बहुत,
2: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
2: कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है दीदी, और आप सबकी दुआएं हैं, और इतनी तपती हुई दोपहरी में और जेठ माह की गर्मी में आपकी केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनकर जो सुखद एहसास की अनुभूति हो रही है उसे इस फोन के माध्यम से बता पाना मैं अपने आप को नामुमकिन मानता हूँ।
2: जी, मौसम तो इधर थोड़ा सा खुशनुमा है, बारिश हुई है रात में, तो
1: जी।
2: अगर हम बस्तर के मौसम की बात कहें तो अभी ठंडक लिए हुए है चंद्रेश जी।
1: जी, जी
2: ये जो सर्द और गर्म मौसम है इसका सेहत पर बहुत असर पड़ता है, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए क्या होता है सर, प्रकृति से तो हमने बहुत कुछ लेना सीखा है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया भी।
2: जी।
1: जल जंगल जमीन जो थे उनको विनाश करने में हम मानव ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी का प्रतिफल है कि आज ये मौसम, मतलब जहाँ गर्मी का मौसम होना चाहिए वहाँ आंधी तूफान ये बारिश आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रकृति से जो हमने छेड़छाड़ की है उसी का प्रतिफल आज हमें भोगना पड़ रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, साफ सही होगा, तो ये मानिए कि हम प्रकृति के जो समय अनुसार जो मौसम होते हैं

0: अनंत रूप का ये स्वरूप है और जिसके आंचल में पूरी दुनिया की खुशियां समाई होती है। तो ये जो मातृ दिवस है सिर्फ एक दिन हम ना मनाएं, हर दिन माँ के लिए है।
1: खुद भूखी रही लेकिन हमारा पेट भरपूर रखा इस माँ ने। तो माँ की महिमा का गुणगान तो इतनी सहज और सरलता से नहीं किया जा रहा दीदी, मेरे साथ
0: ऐसे संतानें होती हैं जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं।
1: ये चीजें सुनने में आती है और देखने में आती है तो बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है, बड़ा मन विचलित सा हो जाता
0: है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें हमने माँ को हमेशा एक सर्वोच्च जगह दिया हुआ है। माँ को केवल हम उपहार न दें बल्कि उनके प्रति जो प्रेम है, जो सम्मान है वो हमेशा बनाए रखें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि माँ है तो दुनिया का सबसे अनमोल उपहार,
1: बड़ा उपहार हमारे साथ।
0: तो चंद्रेश जी गाना सुना दें आपको अपनी पसंद
1: जी। बिल्कुल, मैं फिल्म राजा और रंक का ही गीत सुनना चाहूंगा, तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है। अंत में दीदी आपके सम्मान के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, प्यार भरा कोई जब रिश्ता मिलता है, रोशन हो जाती है हम श्रोताओं की दुनिया जब रिश्तों में आप जैसा उद्घोषक हमको मिलता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो, फोन इन चाहत। जी हाँ, फोन इन चाहत। नमस्कार।
3: जय जोहार मैडम, कैसी है?
2: जय जोहार, कौन बोल रहे हैं आप? पहले नाम तो बता दीजिए।
3: अशोक आपका श्रोता।
2: जी जी,
3: कैसी हैं आप?
2: जी अशोक जी, हम तो ठीक हैं, आप बताइए, आप कैसे हैं?
3: आपके गाने सुनता हूँ, प्रोग्राम सुनते हैं तो अच्छे लगते
2: हैं। जी, आप ही के पसंद के गाने होते हैं, हम जो भी बजाते हैं। आप श्रोता सुमन की बात कह रहे हैं?
3: हाँ,
2: तो बताइए अशोक जी, आप क्या करते हैं?
3: मैं इनकम टैक्स कमिश्नर से रिटायरमेंट, आपसे बात नहीं हुई इस बार तक।
2: तो अभी आप कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं?
3: हम अपना समय बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं और रेडियो से लगाव है 75।
2: अगर आप रेडियो सुनने की इच्छा रखते हैं और रेडियो सुनते हैं तो आपका समय तो बहुत आसानी से बीत जाता होगा।
3: जी जी जी जी जी।
2: आप हमारा कार्यक्रम कौन कौन सा सुनते हैं?
3: मैडम मैं झूठ क्या बोलूं, हर जगह जुड़ा रहता हूं, बस यही श्रोता सुमन वगैरह आपके जो आते हैं और विविध भारती से सुनते रहते।
2: जी जी
3: जी,
2: तो चलिए अच्छी बात है, किसी न किसी बहाने आप हमारे स्टेशन से जुड़ते तो हैं।
3: जी,
2: और क्या कहना चाहेंगे आप?
3: सुना दीजिए मैडम, गर्मी पड़ रही है तो वही कुली नंबर वन का ही सुना दो, गेट की दोपहरी में पाँव जलत है।
2: तो गर्मी बहुत पड़ रही है आपके क्षेत्र में?
3: तो रही है, थोड़ा बहुत हवा चलती है, बादल आदल आ जाते हैं, अभी तो गर्मी है, इस समय कूलर के बिना नहीं रह सकते
2: देश के।
3: जी, तो गर्मी में यही सब अपना बचाव रखें, दाना पानी के लिए चिड़िया पक्षियों के लिए जानवरों के लिए दाना पानी रखें, यही अपना भी कर्तव्य है। जी,
2: पक्षियों के लिए दाना पानी।
3: जी, यही हम रखते हैं और कहते हैं।
2: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम अपने खुद के साथ साथ पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें।
3: जी,
2: जी, तो अशोक जी, आपने जो गाना पसंद किया है उसको अब हम आपको सुनवा देते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी फोन इन चाहत मैम।
2: जी हाँ फोन इन चाहत, कौन बोल रहे हैं?
1: मानकू मरकाम बोल रहा हूँ मैम, ग्राम आमाडीह विश्रामपुरी जिला कोंडा।
2: जी आप क्या करते हैं?
1: जी मैं पढ़ाई करता हूँ, हिंदी से एमए कर रहा हूँ।
2: कौन से विषय में रुचि है आपको?
1: मेरा प्रथम ईयर है मैम हिंदी साहित्य, चित्रकूट उत्तर प्रदेश।
2: बहुत अच्छी बात है। तो आपको मानकू जी कौन से लेखक सबसे ज्यादा पसंद है? हिंदी साहित्य में अभी तक जितने लेखक हुए हैं उनमें से किसे पढ़ना आप पसंद करते हैं?
1: मेरे को मैम वो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, ये सभी लेखक ठीक लगते हैं।
2: जी जी जी, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ आपने पढ़ी है?
1: जी मैम बहुत पढ़े उनके कहानी, तो उनके तो मैम बहुत सारे कहानी है, याद ही नहीं आ रहा है, पढ़ते हैं लेकिन।
2: तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: मैम मैं तो बहुत दिन में मैं फोन लगाया हूँ और आप गायत्री आचार्य मैम बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है मेरे।
2: जी जी जी
1: जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है मैम। और
2: इससे पहले आपने कब कॉल किया था?
1: इससे पहले मैम 2022 में कॉल किया।
2: अच्छा, तो इतने दिनों बाद।
1: छत्तीसगढ़ में रहने नहीं होता है, इधर ही चित्रकूट में रहने होता है, तो उतना कॉल वॉल नहीं लगा पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो
2: जी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं?
1: शिक्षक बनना। शिक्षक इसलिए बनना है कि मैम मेरे आने वाले जो जनरेशन है उन लोग को अच्छे शिक्षा देना है और अच्छे पढ़ाना है, क्योंकि मैम अभी जो बस्तर भी अब शिक्षित बन रहा है, अच्छे से विकास हो रहा है बस्तर में भी।
2: बहुत अच्छी बात, एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
1: जी मैम, मेरे दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैम, कृष्णा नेताम है, रंजीत नेताम है, रविंद्र नेताम, मुन्ना नाग।

0: बहुचरण बघेल ये सभी बस्तर के साथी हैं मैम, यहीं पर पढ़ रहे हैं चित्रकूट में।
1: और अब जान लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: मेरा पसंद का गीत है मैम वो विवाह का फिल्म का, सुना दीजिए तो अनजाने अजनबी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो, फोन इन चाहत।
2: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: धीरज जबारी बात कर रहा हूँ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरे गांव का नाम है डेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात, रहता हूँ मैं अहमदाबाद।
1: गुजरात से आप बोल रहे हैं? बहुत दूर से आप से बातचीत कर रहे हैं।

0: हैं, तो आप हमारी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं?
1: एप्लीकेशन पर प्रसारण साफ सुथरा सुनाई देता है और इसीलिए तो हम जुड़ पाते थे, वरना पहले रेडियो हमारे कोर केंद्र राजकोट है, भुज केंद्र सुनने के लिए रेडियो को घुमाना पड़ता था, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर तो कैसे सुनाई देता। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, तो अभी ये शक्य हुआ है एप्लीकेशन के जरिए न्यूज ऑन एयर पर हम सुनते हैं।
0: जी जी, एक बहुत अच्छी बात रही है हमारे श्रोताओं के लिए कि वो देश भर के रेडियो स्टेशन सुन पा रहे हैं मोबाइल ऐप के जरिए।
1: बिल्कुल, और जगदलपुर आकाशवाणी जो पिरोता है मनोरंजन के साथ ज्ञान, उसमें भारत के कई श्रोता लाभान्वित होते हैं, इसमें मैं भी हूँ।
0: जी जी जी,
1: फोन इन में हमें ये ज्यादा जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ के कौन से क्या रिवाज है, कौन सी संस्कृति है, कौन सा पहनावा है। इसके अलावा भारत के कई राज्यों से श्रोता जुड़ते हैं, तो वहाँ की भी भौगोलिक स्थिति है और जो देखने वाला स्थल है वो सब जानकारी इस कार्यक्रम में मिलती है। और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता यही है कि भारत की कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से श्रोता नहीं जुड़ा हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो हमारे क्षेत्र की बात बताऊँ तो यहाँ अहमदाबाद में तो कई जगह देखने लायक है, जैसे साबरमती का रिवर फ्रंट, दोनों साइड पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, उसमें गार्डन भी है बच्चों के लिए खेलने के लिए संसाधन भी है, अटल ब्रिज भी है यानी तट नदी पर, और दूसरे तो कई स्थल है, माता जी के मंदिर है, सीधी सही की जाली है, और आगे जाके गांधी जी का पाटनगर देखा जाए तो गांधीनगर में जाओ तो महात्मा मंदिर है, फिर यहाँ आश्रम रोड पर गांधी आश्रम भी है, पुराने कई स्थापत्य कला है, हमारे पाटन में रानी की वाव है, अगर कभी भी आओ तो पाटन रानी की वाव देखो तो आपको यही लगे कि ये रानी की वाव कल परसों बनाई हुई है। और यहाँ की खास विशेषता ये है कि हमारे पाटन पटोले से प्रख्यात है, यहाँ की जो साड़ी है जो पटोले बोला जाता है, तो उसमें जो कारीगिरी होती है वहाँ सालवी भाइयों की बेनमून कारीगिरी होती है, और इसकी कीमत भी ज्यादा है, लेकिन वो जो कारीगिरी उसकी कीमत होती है।
0: जी जी, विश्व विख्यात है ये, जो वहाँ की जो कलाकृति है, जो कारीगरी है धीरज जी,
1: पटोला।
0: तो हमारे भारत देश में हर राज्य में हर राज्य की अपनी एक अलग अलग विशेष,
1: आपके जो बहनों के जो कपड़े होते थे उसमें भरत काम होता था, यानी धागे से बहने गुंथती थी, तो वो एक पहनने में बहुत अच्छा लगता है और एक हमारी संस्कृति का भी एक मूल्यांकन होता था। लेकिन अभी फिलहाल जो भरत काम जो बहने खुद करती थी वो अभी मशीनों में चला गया है, लेकिन वो भरत काम हमारा कच्छी का भरत काम है, हमारे उत्तर गुजरात का, और उसमें फिर वो दर्पण आता था, अरिसा आता था, उसमें फिर अबला भी बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था वो पहनावा। और जो देहातों का पहनावा है मेरे ख्याल से वो उनकी पहचान है।
0: बिल्कुल, हाथों की जो कारीगरी है उस का जो महत्व है कुछ अलग ही है।
1: बिल्कुल भी, हमारे यहाँ कहावत है कि बार गौ बोली बदला, यानी आप बार गौ अंतर कापने से इंसान की बोली भी बदल जाती है और वहाँ उसको पहचाना भी जाता है कि ये भाई रायपुर के है कि जगदलपुर के है या पाटन के है या मेहसाना के है।
0: जी जी जी, बिल्कुल, तो हर कोई अपने आप में विशेषता लिए हुए है। तो धीरज जी,
1: प्रेम पर्वत का गाना सुनना है मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, समय लगता है लेकिन मेरे को आप लोग प्लेटफॉर्म देते है बात करने का, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता।
0: जी जी, ये कार्यक्रम आपके लिए ही है धीरज जी, तो चलिए सुनते हैं अब आपकी पसंद का गीत।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो
3: जी, हाँ फोन इन चाहत, कौन बोल रहे हैं आप? जी इंद्रभान जी, स्वागत है आपका फोन इन चाहत कार्यक्रम में। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी बताइए।
2: फिल्म का नाम है कालिया और गीत को बोले जहाँ तेरी नजर है मेरी जा मुझे खबर है। ये कहना चाहूंगा मैडम कि अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, तो लोगों से आग्रह करूंगा कि इस मौसम में कभी से ध्यान दें, और जो आधी तूफान है उसमें गाड़ी दिल्ली के ना जाए, जब हवा दिख जाए तो गाड़ी को लेके जागरूक करके कहीं अगर वो जा रहे हैं आंधी तूफान आ रहा है तो पूरे आंधी पर गिर सकता है। ये सब बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी
3: है। भीषण गर्मी के बाद जो बारिश हो रही है उससे बचें, सेहत का ध्यान रखें। यही तो, चलिए आपकी पसंद का गीत हम आपको सुना देते हैं। मुझे लग रहा है कि आप शायद नेटवर्क से बाहर हैं तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, तो आप बस में भी सफर कर रहे हैं क्या? इसलिए आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। तो इंद्रभान सिंह जी, आपसे हमारी बातचीत हो गई है और आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरक का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हेलो, फोन इन चाहत।
3: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए।
3: खागेश्वर मंडाईपुर, हमें फरदगांव जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़।
2: खागेश्वर जी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आप फोन इन चाहत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
3: जी मैम।
2: कहाँ बिजी थे इतने दिनों, आप बताइए।
3: कई दिन में बस कार्यक्रम सुन रहे थे, घर ही में थे।
2: तो अभी शादी ब्याह का माहौल है, शायद उसी में आप बिजी रहे होंगे।
3: जी मैम, मेरी खुद की शादी थी मैम।
2: बहुत बहुत बधाई हो आपको दंपति जीवन में प्रवेश करने के लिए।
3: जी मैम।
2: तो फागेश्वर जी बताइए, आज हम आपको सुनेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: अभी तो मैम फिलहाल बेमौसम बारिश हो रही है, तो खास करके किसान लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रही है मैम। और अभी जो जैसे गर्मी बढ़ गया, तो उस टाइम लाइट का कटौती भी चल रहा था मैम हमारे कोंडागांव जिला में, तो उससे भी नुकसान हो रहा था मैम किसानों का।
2: जी जी
3: जी। तो अभी भी नुकसान हो ही रहा है, पहले भी नुकसान हो रहा था मैम किसान लोगों का, क्योंकि किसान अगर हैं तो हम हैं मैम।
2: बिल्कुल बिल्कुल, किसान अन्नदाता हैं और उन्हीं की बदौलत हम जो जीवन यापन है, जो भोजन प्राप्त करते हैं, जो फसलें उगाते हैं, उन्हीं से हम जीवित हैं। बिल्कुल। तो फागेश्वर जी, ये जो उनका नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे करें?
3: अब देखिए मैम, अब एक सिक्के के दो पहलू बोलते हैं, तो जैसे कई बोर खनन जो होता है ना मैम, उसे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है मैम, क्योंकि वातावरण एक दूसरे से बंधे रहता है मैम, और उस वातावरण को लोगों को क्या है समझना पड़ेगा, एक बारीकी से हम अगर एक दो दिन अन्न नहीं खाएंगे तो जिंदा रह सकते हैं मैम, लेकिन हवा और पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
2: जरूरी है, बिल्कुल
3: जी।
2: तो बोर खनन से इसका दुष्प्रभाव आप बता रहे हैं।
3: जी मैम, इसमें दुष्प्रभाव इसलिए मैम, देखो पहले क्या है, जब बोर खनन नहीं होता था तो पानी ऊपर में रहता था मैम, और उससे हम जैसे छोटा सिंचाई करते थे मैम नलकूप के माध्यम से, तो उस टाइम में बहुत कम फसल, मतलब 3-4 दिन का फसल लगता था मैम, तो कम दिन में कम हो जाता था। जैसे कहा जाता है मैम कि एक बच्चे को पैदा करने के लिए 3 साल का अंतराल कहा जाता है विज्ञान, उसी तरह एक खेत में अगर हमको अन्न पैदा करना है तो कम से कम खेत को स्पेस भी देना चाहिए मैम। ये बोर का जो पानी जो खनन है ना मैम, वो बहुत नीचे चला गया है अभी।
2: तो कुएं की जरूरत, दुविधा में रहते हैं हमारे किसान, जब भी अगर बारिश ज्यादा हो तो, बारिश कम हो तो, और आधुनिक तकनीकी भी बहुत कुछ ऐसी हैं जो दुष्प्रभाव पैदा कर जाती हैं किसानों के लिए, या किसानों को खेती उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए इसकी जगह पे
3: मैम? जैसे जैसे बोर जो करते हैं ना मैम, उस किसान को एक तालाब बनाना चाहिए, और उसमें जो रिसाइकल होता है पानी, उसको बचा के रखना चाहिए मैम। हर एक किसान जिसके यहाँ बोर है, उसके यहाँ एक तालाब होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
2: तो जिससे किसानों को नुकसान कम हो, ऐसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और जागरूकता फैलाएं इस बारे में। आप युवा हैं तो हमारे किसान परेशान न हो और परेशानियों का हल ढूंढें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी पसंद का गीत।
3: मैम सिर्फ तुम फिल्म का गीत सुनना था मैम, पंछी सुर में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, ऐसा करके गीत है।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: हेलो
0: जी हाँ, फोन इन चाहत।
1: हेलो मैडम जी, आपको हमारा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय जोहार।
0: जी हाँ, जय जोहार।
1: जी हम संतोष खड़से बोल रहे हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से आप हमसे जुड़े हैं तो बहुत दूर से हमारी आपकी बातचीत हो रही है, तो आपका फोन इन चाहत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी।
1: जी धन्यवाद मैडम जी, और आपके कार्यक्रमों को हम नियमित रूप से सुनते हैं मैडम जी, और हमारे नामों को आप शामिल भी करती है हर एक कार्यक्रम में, तो सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है।
0: ये आप ही का कार्यक्रम है संतोष जी, और आपके पत्रों से ही हमारे कार्यक्रम अच्छे बन पड़ते हैं।
1: जी, सभी कार्यक्रम आपके बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और काफी सालों से हम 2019 से सुन रहे हैं, जबकि मोबाइल एप्लीकेशन पर आपका प्रसारण शुरू हुआ
0: शुरू
1: था।
0: जी, तो आप आकाशवाणी जगदलपुर को क्लियर सुन पाते हैं?
1: जी, मोबाइल एप्लीकेशन पर तो बिल्कुल साफ सुथरा आता है और सुनने का मजा ही कुछ और है।
0: जी, तो हमारे सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं या फरमाइशी कार्यक्रम है?
1: जी चुनिंदा सुनते हैं, एक ही कलाकार है, श्रोता सुमन है, युवाणी के कार्यक्रम है। हाँ जी, फोन इन चाहत वगैरह ऐसे चुनिंदा कार्यक्रम सुनते हैं।
0: और संतोष जी आप करते क्या है?
1: जी मैम, हम बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनने के लिए समय निकालते हैं।
0: शाम के समय सुनते हैं या सुबह सुनते हैं?
1: जी हम तो तीनों समय में भी सुनते हैं, जब ड्यूटी पर रहते हैं तब सुनना जरा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जब घर पे रहते हैं तो जरूर सुन लेते हैं।
0: माँ के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: जी माँ तो ईश्वर का प्रतिरूप होती है मैडम जी, क्या कहे माँ के बारे में, माँ के बिना तो सारा संसार ही सुना है, माँ ही अपनी सब कुछ होती है, और माँ की एक अहमियत क्या होती है, एक माँ के नहीं रहने के बाद या फिर जिसकी माँ नहीं है उनको ही अच्छी तरह से पता हो सकता है।
0: जी,
1: जब तक
0: जी।
1: अपने माँ बाप जिंदा है, अपनी माँ जिंदा है, अपने अभिभावक जिंदा है, तो उनकी सेवा करे, सम्मान करे, उनका कहना माने,
0: बिल्कुल
1: उनके प्रति अच्छा व्यवहार करे, यही उनका असली सम्मान होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: माँ तो
1: लोग
0: वो है
1: क्या
0: जो
1: कहते,
0: बिना कहे हमारी हर बात समझ जाती है।
1: हाँ जी हाँ जी, वो हमारा पहला गुरु भी कहलाती है ना।
0: बिल्कुल,
1: हमें
0: माँ
1: बहुत
0: ही होती है
1: संस्कार
0: जो
1: देती
0: हमें
1: है।
0: बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, और हर कठिन राह पे हमारा हाथ थाम के रखती है।
1: जी, अपने जीवन यापन में और सभी आगे के जीवन में माँ के संस्कार ही हमें काम आते हैं मैडम जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो संस्कार की मूरत है माँ, तो इसलिए हम अपने अभिभावकों के रहते उनकी जरूर सेवा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
0: जी। तो संतोष जी बताइए अपनी पसंद का कोई सा गाना हमें।
1: जी मातृ दिवस के ही अवसर पर एक गीत पसंद कर रहे हैं हम, तेरी उंगली पकड़ के चला माँ मेरी माँ, ऐसे

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: चंडीगढ़ से श्री शनेजा बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन चाहत कार्यक्रम में। कैसे
1: हैं
0: आप?
1: बहना, आपका आपका भी हार्दिक अभिनंदन। हम बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं
0: जी। बताइए क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: बस इन दिनों कोई ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जो दिनचर्या में काम चलता है वो चल रहा है। मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, अभी तक गर्मी नहीं आई है। यहाँ चंडीगढ़ में मौसम ठंडा है, नहीं तो इन दिनों में काफी लू वगैरह एसी वगैरह चल जाते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसे लगा लो भी गर्मी नहीं है यहाँ पे शुरू हुई।
0: अच्छी बात है,
1: मौसम बहुत अच्छा है।
0: और अगर हम बस्तर की बात कहें तो यहाँ भी मौसम कुछ ठंडा ही है। तो सतीश जी, क्या कहेंगे आप मौसम को लेकर के?
1: बस यही कहेंगे कि मौसम जो परमात्मा ने जो उसकी योजना है जिस तरह जिस हाल में रखेगा, तो गर्मी के हिसाब से आनी चाहिए, लेकिन इस बार पहाड़ों के ऊपर काफी बर्फबारी हो रही है तो उसकी वजह से अभी आसार नजर नहीं आ रहे, कुछ दिन और गर्मी आएगी। बस यही दुआ करते हैं कि परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, कहीं मौसम ऐसे मौसम की वजह से किसी को तबीयत ना खराब हो जाए।
0: जी जी, गर्मी और सर्दी से सेहत पर इसका असर पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
0: तो सतीश जी बताइए, फरमाइश आज कौन सी है, किस गीत के लिए है?
1: दो चोर फिल्म का गीत है जी, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास।
0: और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से?
1: बस यही कहेंगे भी रेडियो से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है और रेडियो के बदौलत बहुत अच्छे रिश्ते बन गए और आपसी दोस्तों के साथ बातचीत श्रोताओं के साथ होती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: तो मन को बहुत सुकून देता है, दिन में जितनी मर्जी थकान हो लेकिन शाम को जब अपनी पसंद का कोई गीत या रेडियो का चैनल सुन लेते हैं तो बड़ी राहत मिलती है और थकान का पता नहीं लगता। रेडियो तो हमारा सबसे अच्छा साथी है और उसमें आकाशवाणी जगदलपुर का भी एक बहुत बड़ा हाथ।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर स्टेशन सुनते हैं और हमारे स्टेशन के कार्यक्रमों को भी सुनना पसंद करते हैं सतीश जी।
1: जी बना, आपके साथ हमेशा बने रहते हैं और जितने भी प्रोग्राम के पेश करते हैं प्रस्तुत करते हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं, बड़ा लगाव है और ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का ही चैनल है।
0: जी जी जी, हम आपके लिए ही कार्यक्रम पेश करते हैं और आपके पत्र आते हैं और आप बहुत अच्छे गीतों की फरमाइश करते हैं तो हमारा कार्यक्रम भी अच्छा बन पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहना, ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।
0: जी जी, तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा देते हैं।
1: ओके बहना जी, थैंक यू।

0: फोन इन चाहत।
1: हेलो,
0: फोन इन चाहत, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से पहुंच गया सुभाष गुदारा।
0: बताइए सुभाष जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया बढ़िया जी। और हेलो, जगदलपुर में फोन लग जाएगा तो और भी अच्छी है।
0: जी जी, हमें भी अच्छा लगता है जब बहुत दूर दूर से हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं और उनसे हमारी बातें होती है। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैम, कहना तो यही है, अभी पहले तो जैसे अब मैं खुद रेडियो से 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह जो भी पुरानी श्रोता है वो रेडियो से जुड़े, अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छा मनोरंजन। और सबसे अच्छी बात है भी काम करते वक्त काम नहीं मतलब रुकना पड़ता, ये साथ चलता रहता है और इसी तरह मनोरंजन भी होता रहता है।
0: बिल्कुल, कोई भी काम प्रभावित नहीं होता अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो।
1: हाँ जी जी, अब तो ऐप के माध्यम से इतनी दूर बैठे हैं और बहुत ही साफ क्वालिटी में, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम, जैसे श्रोता सुमन हुआ और हुआ, बहुत ही अपने प्रस्तोताओं की मेहनत उसमें नजर आती है।
0: हमें भी अच्छा लगता है जब देश के कोने कोने से श्रोता हमसे जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, हमारे कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है और हमारी जो मेहनत है वो सार्थक होती है।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
0: और बताइए आपके शहर का मौसम कैसा है?
1: तो यहाँ पंजाब में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है जी, और भी गर्मी पड़ रही है और उसका बचाव कर रहे हैं। मेरे तो शॉप है यहाँ बाइक रिपेयर की, साथ मैंने जैसे पक्षियों के लिए बर्तनों में पानी रख देते हैं भी, चलो बेजुबान है इनके भी कुछ मदद करनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गर्मियों में प्यासे रहते हैं तो हम उनके लिए भी पानी का प्रबंध करें। तो बहुत खुशी हुई कि आप भी पशु पक्षियों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो सुभाष जी, हम सभी इंसान का ये दायित्व है कि हम अपने अलावा पशु पक्षियों के बारे में भी सोचें।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम,
0: तो बताइए।
1: ओ मैम, पहले तो मैं परिवार के नाम लेता हूँ। मेरे साथ मेरी घरवाली होती है बिमला देवी, बच्चे इंदुवाला, पार्वती देवी, लड़का हिमांशु भी साथ होते हैं।
0: जी, अब जानते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: तो मैम, मेरी फेवरेट फिल्म थी हम आपके कौन, और इसका एक गीत है ये मौसम का जादू है मित्रवा, वो वाला गीत मेरे को पसंद।
2: ये मौसम...

श्रोताओं, ये था आज का हमारा फोन इन चाहत कार्यक्रम। अगर आप इसमें फोन करके अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें हर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से कॉल कर सकते हैं। नए श्रोता हमारा नंबर नोट कर लें, हमारा नंबर है 222160 और 222666। एसटीडी कोड है 077782। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन इन चाहत। प्रस्तुति थी गायत्री आचार्य की। संयोजक थे चंद्र ऋषि ठाकुर। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:33 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गुड़दुम में भारत और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में भारत और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण कल 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वामी पर्व पूरे देश में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 354 करोड़ रुपए के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर को कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड स्थित पांडा तराई पहुंचेंगे, जहां वे डोंगरिया खरहट्टा में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल टी20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश में इन दिनों आयोजित सुशासन तिहार के तहत जगह जगह शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 11 मई को रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रुसरुसा में लोक गाथा मैनामती रानी। गायिका है कचरा बाई और साथी।

Come on.

মতি রানি এবে গর্ভবাসে

casa de salir, ay caramba, ya ves.

राजा लगेर ननी जाउँद बोले राई तुई राजा लगेर ननी जाउँद बोले राई मुई राजा लगे नि जाए दिदी बुबू लगे जाए राजा लगे।

সনি বুড়ি যায়, হে আমাকে বলে রে বুবু কথা কানিয়া দুখে আছে।

चढ़ा कर

जाऊ नादा करे बेटा सुई ना डोकरी घरे जाय सुई ना डोकरी घरे आया नुकलाय जासे बेय सुई ना डोकरी काजे आया नुकलाय जासे बेय इसरली राय करमाय बे चावर राजा जाय हिसरली रे

सुई ना डगर एवे डाल चौर जाए से इंजा तो जा

পাটি খেলিয়া পিলাম এ শুই না ঘর রে বাবু কোন লাগে আসে

ਡਲ ਚਾਰਾ ਜਾਏ ਵੇ ਉਨੀ ਵਟ ਜਾਏ ਡਲ ਚਾਰਾ ਜਾਏ ਵੇ ਉਨੀ ਵਟ ਜਾਏ ਸੋ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रुसरुसा में लोक गाथा मैनामती रानी। गायिका थी कचरा बाई और साथी। इस लोक गाथा का अगला भाग आने वाले शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोता बहनों का हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन के आज के सफर में, जहां मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हम सफर मंजूषा। इस सफर में हम करेंगे कुछ बातें, सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों की अगर मैं बात करूं बहनों, तो मुझे आपसे इस बात को साझा करने का मन कर रहा है कि कुछ दिनों पहले मैं वो गीत सुन रही थी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। इस गीत को आप सभी ने सुना होगा, पर मैं जब इस गीत को सुन रही थी उस दिन, तो मुझे ऐसा लगा कि सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ काम और काम। जी हाँ, हम सभी व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक कि रात की नींद भी अब कम हो गई है। सही मात्रा में प्रॉपर रेस्ट तक हम नहीं कर पाते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन व्यापन के लिए, सफल होने के लिए, कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो दौड़ सुबह शुरू होती है, वो खत्म कब होगी, कहाँ होगी, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल ही हो गया है। आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम जिम्मेदारियों में इतना उलझे हुए हैं कि अपने लिए समय निकालना जैसे भूल ही गए हैं, जो कि बहुत दुखद है। जी हाँ, बहुत दुखद। पर बहनों, सच तो यह है कि हमें अपने लिए समय निकालना ही होगा, क्योंकि ये हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। अगर हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो ना ही हम खुश रह पाएंगे और ना ही हम अपने अपनों को खुश रख पाएंगे। दिन भर की दौड़, दिन भर के काम में हम सब शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, जिससे हम में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और पैदा होता है तनाव। मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी है खुद के लिए समय निकालना, जिससे हमें सिर्फ आराम ही नहीं मिलता, बल्कि हम खुद को रिचार्ज कर पाते हैं। जी हाँ, डिजिटल भाषा में मैं अगर कहूँ तो रिचार्ज कर पाते हैं। और जब हम रिचार्ज हो जाते हैं, तो हम खुश रहते हैं और अपने अपनों को भी खुश रख पाते हैं। जिम्मेदारियों को निभाना हमारा दायित्व है, पर अपने इस दायित्व को पूर्ण रूप से उठा पाएं, इसके लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जिसका एक आसान तरीका है अपने लिए समय निकालना। इसके लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं। अपने दिनचर्या में इन बातों को शामिल करें, जिससे कि हम अपने लिए समय निकाल पाएं। जैसे कि अपने कामों को करने की पूर्व योजना, यानी कि प्री प्लानिंग कर लें। पूरे काम को ऐसे सेट करें कि कम से कम आधे घंटे का समय पूरे दिन में आप अपने लिए निकाल पाए, और इस निर्धारित समय में आप कोई भी जिम्मेदारी वाला काम नहीं करेंगे। ये समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होगा, और इसके लिए आपको ना कहना भी सीखना होगा। मतलब कि अगर आपके पास पहले से ही बहुत काम है,

बट आप योग, ध्यान, एक्सरसाइज वगैरह करके ये समय अपने लिए उपयोग करें। शाम को भी ऐसे ही 10 से 20 मिनट तक समय निकालें, संगीत सुने, नृत्य करें, आपकी हॉबी वाला हर वो काम आप कर सकते हैं इस समय। डायरी लेखन, कविता लेखन, स्किन केयर कर सकते हैं आप, टहलने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ भी समय बिता सकते हैं। कहने का मतलब बहनों कि जो भी काम आप करें उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। दैनिक आदतों में भी बदलाव लाकर आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। घर के सारे काम आप स्वयं करें ये जरूरी नहीं है, घर के बाकी सदस्यों को भी काम बांटें, इससे आपका काम तो कम होगा ही, साथ ही आपको अपने लिए समय निकाल पाने का भी मौका मिलेगा। बहनों, अपने लिए समय निकालने से मन को शांति मिलती है, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच विकसित होती है, तनाव और थकान कम होता है, अपने रुचियों और प्रतिभा पर ध्यान देकर उसे आगे लेकर जाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आज के बाद यानी कि कल से अपने लिए जरूर समय निकाले और अभी आप सुने मेरे साथ ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बर्फी से, श्रेया घोषाल और निखिल पॉल की आवाज में। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा गीत।

0: असितके इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरु गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इदकी इंजे गाड़ी पोटरु गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: बहनों, हम सबको पता है कि हमारी सरकार आए दिन हमारे लिए नई योजनाएं और नई नीतियां बना रही हैं जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा और शिक्षा की नई नीति, इसी पर आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। बबीता दीवान से भेंट कर रही है चंद्र ऋषि ठाकुर।
4: घरांगन सुन रहे आप सभी श्रोता बहनों को मेरा यानी चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। बहनों, सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के जरिए मनुष्य के ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करके उसके अनुवांशिक गुणों को निखारा जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति की बुद्धि, बल और विवेक को उत्कृष्ट बनाती है। हमारे लिए महिलाओं की शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि महिला शिक्षा आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में महिला शिक्षा और नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है श्रीमती बबीता दीवान जी को। आप अर्थशास्त्र की प्राध्यापक हैं, साथ ही शासकीय दंतेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी कार्यरत हैं। तो सबसे पहले बबीता जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी अपने स्टूडियो में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: जैसा कि हमने अपनी श्रोता बहनों को बताया कि आज हम महिला शिक्षा और नई शिक्षा नीति के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर महिला शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है।
5: महिला शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, केवल अभी ही नहीं, युगों युगों से ये महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि जो महिला होती है वो ना सिर्फ एक बेटी होती है, ना सिर्फ एक बहन होती है, बल्कि वो एक माँ होती है। और आपको पता है कि माँ पहला गुरु होती है। जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना खाना सीखते हैं, चलना फिरना सीखते हैं, बात करने का तरीका सीखते हैं। माँ अगर शिक्षित होती है तो बच्चे की शिक्षा के अवसर बढ़ जाते हैं। माँ ही अगर अशिक्षित होगी तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं महिला शिक्षा में उत्थान हुआ है, महिलाओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, पहले की तुलना में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। तो आज आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके पास पर्याप्त अवसर होते हैं कि वो नई नई बातों को सीख सकते हैं और टेक्निकल एजुकेशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। माँ जितनी ज्यादा ज्ञानी होगी बच्चे के लिए उतने ही ज्यादा अवसर होते हैं तरक्की करने के।
4: जी जी, और कहा भी जाता है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो ये समझिए कि आप पूरे समाज को शिक्षित कर रहे हैं,
5: परिवार को और परिवार से समाज को आप शिक्षित करते हैं। एक जो बेटी होती है वो अपने मायके में अपने परिवार को रोशन करती है, उसके परिवार के सकारात्मक माहौल में उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और वही बेटी जब बहू बनकर एक दूसरे घर में जाती है वो दो परिवारों को जोड़ती है, दो परिवारों में उजाला फैलाती है। अगर वो शिक्षित होगी, अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो इससे दोनों ही परिवारों का कल्याण होता है।
4: लेकिन अगर हम आज की स्थिति देखें, आजादी के इतने सालों बाद अभी भी सुदूर क्षेत्रों में देखा जाता है कि शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते।
5: जी हाँ,
4: तो अभी स्तर क्या है हमारे देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में और बस्तर क्षेत्र में।
5: हाँ, देखिए पहले की तुलना में तो स्थिति बेहतर हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। अभी हमें बहुत सारा लक्ष्य अभी हासिल करना बचा है। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताती हूँ। हमारे देश में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%, यानी कि 100 में से 74.04 व्यक्ति जो है वो साक्षर हैं। तो ये ठीक है, मगर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हमारा लक्ष्य 100% का है। महिलाओं की पूरे देश में साक्षरता की स्थिति है 65.46%, तो ये पुरुषों की तुलना में तो कम है। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने के ज्यादा अवसर प्राप्त हैं और महिलाओं को उनकी तुलना में कम अवसर प्राप्त हैं। ये तो आंकड़ों से ही जाहिर हो रहा है। इसी प्रकार से आपने पूछा बस्तर जिले में क्या स्थिति है, तो बस्तर जिले में साक्षरता का दर पुरुषों में 64.82% है। ये मैं 2011 की जनगणना के आंकड़े आपको बता रही हूँ। पुरुषों की जनगणना का पुरुषों की साक्षरता का जो दर है वो है 64.82% और महिला साक्षरता जो है वो 44.26 है, जो कि बहुत ही कम है। बहुत ही कम है, इसको बहुत ज्यादा किए जाने की आवश्यकता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हालांकि साक्षरता दर तो हमारा बहुत ही बुरा है बस्तर जिले का, लेकिन एक चीज अच्छी भी है यहाँ पे। पूरे देश में जहाँ लिंग अनुपात है 940, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं हैं, वहीं बस्तर में कुछ डिफरेंट है स्थिति। यहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे 1023 महिलाएं हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसा की बात है। और इस आंकड़े से ये जाहिर होता है कि बस्तर जिले में महिलाओं को कमतर नहीं आंका जाता है, उनको पुरुषों से कम नहीं आंका जाता है। यहाँ का जो कल्चर है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पूरा बस्तर ही पिछड़ा हुआ है। पूरा बस्तर पिछड़े होने के कारण न केवल महिलाएं बल्कि पुरुषों की साक्षरता दर भी बहुत कम है।
4: जी,
5: वो इतने पिछड़े हुए हैं, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत स्कूल खोलने की, बहुत टीचर्स अपॉइंट करने की, और उनको पूरा पर्यावरण, पूरा एनवायरमेंट प्रदान करने की आवश्यकता है कि वो स्कूल जाना इम्पोर्टेंट समझें।
4: अभी तो आपने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बस्तर में भी कम है, छत्तीसगढ़ में भी कम है और हमारे भारत देश में भी कम
5: है। बिल्कुल।
4: तो कम होने के कारण क्या क्या हैं?
5: कारण यही है कि बहुत पहले से ही हमारे देश में लड़कियों के साथ भेदभाव होता रहा है।
4: जी जी।
5: मैं ये नहीं कहती कि प्राचीन काल में ऐसा होता था, हमारे यहाँ वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी।
4: जी जी।
5: बहुत विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, आप जानते होंगे मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत ही उच्च शिक्षित और विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, उनका बहुत सारा लेखन कार्य हुआ करता था। अगर हम पूरे इतिहास को टटोल कर देखें तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो महान हुई हैं, लेकिन वो उनकी संख्या कम है।
4: जी जी।
5: है ना, पूरे समाज में से बहुत कम प्रतिशत महिलाएं उच्च पदों पर आसीन होती आई हैं। ज्यादातर महिलाओं की स्थिति हमारे देश में बुरी रही है।
4: जी जी।
5: आपको तो पता है हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या कितनी ज्यादा हुई है आज से 25-30 साल पहले।
4: कुछ कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहां पे कन्याएं हैं ही नहीं,
5: कन्याएं
4: बाहर से उन्हें दुल्हन लाना पड़ता है।
5: तो ये उन्ही सब दुष्कर्मों का नतीजा है जो हमने आज से 25-30 साल पहले किए। हमने महिलाओं को पैदा होने के पहले ही खत्म कर दिया।
4: जी जी।
5: इसी कारण आज महिलाओं की संख्या कम होने के कारण ही ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है।
4: जी जी।
5: ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। तो मनुष्य को जागरूक होना चाहिए। महिलाओं को जन्म लेने से पहले ही मार देना ये इस बात का सूचक है कि लोग उनको कमतर आंकते हैं, कि वो कम बलशाली हैं या वो एक मुसीबत का कारण बन सकती हैं। कि अगर घर में लड़की पैदा हो गई तो दहेज देना पड़ेगा, अगर घर में लड़की पैदा हो गई तो उसकी सुरक्षा के लिए जागरूक रहना पड़ेगा, अगर घर में लड़की पैदा हो गई तो कितने सारे, पता नहीं कितने सारे लॉस हो जाएंगे, ऐसे लोगों के मन में भ्रांति है ये। जबकि आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है।
4: जी जी।
5: जमीन से लेकर आसमान तक कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपनी सफलता के झंडे ना गाड़े हों।
4: तो जैसा कि आप खुद एक महिला महाविद्यालय की प्राचार्या हैं, तो आप ये बताएं कि जो भी आपके महाविद्यालय में छात्राएं ही आती हैं, उन्हें क्या बताती हैं?

0: कि वो क्या करें, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि अपने अपनी बच्चियों को कॉलेज तो भेज देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि वो कॉलेज कंप्लीट कर ले फिर उनकी शादी कर देंगे। कोई भी ये नहीं सोचता कि उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। और ये बात किशोरियों के मन में डालना जरूरी है कि आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। तो ये बातें क्या आप अपने महाविद्यालय में बताती हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए क्या क्या आपने प्रयत्न किए हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो मैं सच में करती हूँ वो मैं बता पाऊंगी। हाँ, मैं सच में अपने महाविद्यालय में ऐसा करती हूँ। मुझे बहुत सारे अवसर मिलते हैं अपनी छात्राओं से बातचीत करने के। आए दिन हमारे कॉलेज में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें मैं अपनी छात्राओं को संबोधित करती हूँ और हमेशा उन्हें ये याद दिलाती हूँ कि वो किसी भी तरीके से कमतर नहीं है। ईश्वर ने उनको सारी प्रतिभाएं दी हैं और उन प्रतिभाओं का वो दोहन करें। मैं अपनी छात्राओं को हमेशा समझाती हूँ कि अपने समय का सदुपयोग कीजिए और अपनी ऊर्जा का पूरा पूरा दोहन कीजिए और अपने करियर बनाइए, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होइए। केवल अपना सहारा मत बनिए, दूसरों का भी सहारा बनिए। ये बात मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती रहती हूँ और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। बच्चे बहुत जागरूक हैं। आजकल की लड़कियां घर पे रहना नहीं चाहती हैं। खास करके मैंने देखा है कॉलेज में जो लड़कियां आती हैं वो अक्सर मुझसे ये सवाल करती हैं कि मैडम मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। कई बार बच्चे आते हैं कहते हैं कि मैडम हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, आप बताइए हम क्या करें। तो मैं उन्हें कुछ रास्ते बताती हूँ कि किस तरीके से वो अपनी प्रतिभाओं का पूरा दोहन करें और अपने पैरों पर खड़े होकर केवल अपना ही नहीं पूरे देश का, पूरे समाज का कल्याण करें।
0: जी, तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं फिर तो आप। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके महाविद्यालय से जो भी छात्रा निकलती है वो जरूर बस्तर का नाम पूरे देश में रोशन करे। अब क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे दें।
1: बिल्कुल, ये जो नई शिक्षा नीति है ये 1986 के बाद अभी 2020 में आई है। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव जो है वो है 5+3+3+4 का प्रारूप। पहले क्या होता था, 10+2 था, यानी कि पहले बच्चा 10 इंटरमीडिएट पढ़ता था 10 साल और फिर +2 हायर सेकेंडरी 2 साल। लेकिन अभी क्या है, शुरू के 5 साल में बच्चा प्री स्कूल में पढ़ेगा कक्षा 1 और 2 मिला करके, और 5 साल हो गया, 8 साल से 11 साल की उम्र में वो कक्षा 3, 4 और 5 पास करेगा। उसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में वो कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ेगा। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र कक्षा 9, 10, 11 वो 12 में पढ़ेगा। इस तरीके से उसकी स्कूल की पढ़ाई समाप्त होगी।
0: जी,
1: ये है। और नई शिक्षा नीति के बारे में एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि पहले जहां कुल राष्ट्रीय आय का 1.7% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा था, अब नई शिक्षा नीति के तहत ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यानी कि जीडीपी का 6% यानी कि 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। यानी कि ये अब महत्व देने की शुरुआत है। तो अब हम शिक्षा पर ज्यादा व्यय करने को तैयार हैं। नई शिक्षा नीति में एक बात और है कि जो शिक्षा का माध्यम है, प्राइमरी एजुकेशन का जो माध्यम है, वो स्थानीय भाषा होगा।
0: जी,
1: यानी कि जो वहाँ की स्थानीय भाषा है या जो मातृभाषा है बच्चे की, उसमें वो शिक्षा प्राप्त करेगा। और इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जागरूक होने की बात कही गई है कि बाल वाटिका में यानी कि आंगनबाड़ी में जब वो जाता है तो वहां पर उसको पूरा ऐसा पर्यावरण प्रदान किया जाएगा जहां पर कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ना केवल उसको गिनती, अंक, कथा, कहानियां, गीत और ये सारी बातें जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, ना केवल इन बातों के माध्यम से उसके ज्ञान में वृद्धि की जाएगी बल्कि उसको पोषक आहार भी प्रदान किया जाएगा। अभी भी आप देखते हैं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पहले से ही हमारे देश में थी, लेकिन अब इसमें ज्यादा ध्यान दिए जाने की बात कही गई है कि सुबह उनको फल दिए जा सकते हैं, अंकुरित अनाज दिए जा सकते हैं, मूंगफली दी जा सकती है, दूध दिया जा सकता है। अगर वो पौष्टिक खुराक लेता है नाश्ते में तो उसका ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि बच्चों की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। शुरू के 5 साल तक उसके दिमाग का 85% तक मस्तिष्क विकास कर चुका होता है।

0: इसलिए हमें जो भी करना है वो उसके 5 या 6 साल का पूरा होने के पहले ही कर लेना चाहिए। अगर हम नैतिकता का विकास करना चाहते हैं, मूल्यों का विकास करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, मित्रता की भावना, कोऑपरेशन, ये सारी बातें हम विकसित करना चाहते हैं, तो ये हमको प्राइमरी स्टेज में ही कर देना चाहिए।
1: जी जी।
0: तो नई शिक्षा नीति में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि प्रारंभिक चरण में बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए
1: जी जी।
0: कि वो ना केवल एक अच्छे ज्ञानी बने, बल्कि उनमें कुछ नैतिक मूल्यों का भी डेवलपमेंट,
1: अच्छे
0: इंसान भी बने।
1: जी
0: ये
1: जी।
0: हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल एक ग्लोबल सिटीजन बनाना ही नहीं है, वो तो है ही, ग्लोबल सिटीजन बनाना तो है ही, लेकिन केवल ग्लोबल सिटीजन बनाना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने जड़ों से जोड़ना भी है।
1: जी जी।
0: जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत महान है, हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत विस्तृत है, और हमें उसको भूलना नहीं है।
1: जी जी।
0: हमें अपनी जड़ों से जुड़कर एक ग्लोबल सिटीजन बनना है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये नई शिक्षा नीति इसके लिए काम करेगी।
1: जी जी। तो बबीता जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई हमारे श्रोता बहनों को कि महिला शिक्षा क्या है, नई शिक्षा नीति क्या है।
0: जी हाँ
1: अब हम चाहेंगे, क्योंकि समय हो रहा है,
0: जी
1: आप हमारी महिला बहनों को अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें।
0: हाँ, मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा वो है जो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है।
1: जी जी।
0: शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो कुछ भी हमारे जीवन में उपयोगी है उसे बेहतर तरीके से करना, वो शिक्षा है। ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें खेल, योग, मार्शल आर्ट, नृत्य, बागवानी, शारीरिक गतिविधियाँ, व्यायाम, ये जो चीजें जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते थे पहले,
1: जी जी
0: उसको अब शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
1: जी जी
0: तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही उपयोगी है, और महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप स्वयं भी जागरूक रहें, पढ़ती रहें, और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो पढ़ाई करें और एक अच्छे इंसान बने।
1: जी जी तो इतने अच्छे संदेश के साथ आज हम ये जो कार्यक्रम है यहीं पे अंत करना चाहेंगे, और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आकर हमारी बहनों से इतनी सारी बातें की।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे भी बेहद खुशी हुई।
1: जी
0: नमस्कार
1: जी।
2: महिलाओं की शिक्षा और शिक्षा की नई नीति, इसी पर हम सुन रहे थे भेंट वार्ता। बबीता दीवान से भेंट कर रही थी चंद्र ऋषि ठाकुर। बहनों, आज मई महीने का दूसरा रविवार है, जिसे कि मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माँ छोटा सा शब्द है, पर हम सभी के लिए माँ से बड़ा कोई नहीं। यूँ तो आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है, पर हम सभी का पूरा जीवन, हर सांस हर पल माँ को समर्पित है। उनके लिए हमारा प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए आज का ये खास दिन मनाना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी जब आज हम मना रहे हैं तो उनके लिए एक गिफ्ट ले लें और आज का दिन उनके साथ बिताएं, और हर दिन उनके साथ बिताने की कोशिश करें, उन्हें ढेर सारा प्यार दें। और इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ, पर विदा लेने से पहले आप सभी को घरांगन परिवार की तरफ से मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली कड़ी तक, घरांगन की अगली कड़ी तक मुझे यानी कि मंजुषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। दिन के एक बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
1: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा।

0: वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ दसवें, बेंगलुरु चौथे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि सामिकी बेड़ा खारा चुगोट।
2: काश्तकार दाता दीदी मन, असन तो आम्ही साग भाजी चो कमानी करूं से, अरण फसल चो भले कमानी करूं से, अंतर गोटोक फायदा बीती और कमानी आए होन कमानी आए फूल चो कमानी। आजी मैं तुमके गुलाब फूल ने बल बपू बीती खत भात जिनिस चो गोट के सांगे से। गुलाब फूल ने नत्रजन के अमोनियम सल्फेट ले देतो राय। ये खत चुनाव है अमोनियम सल्फेट। ये खत बूटा चो खंदा आरु पाना चो बाढ़ती काजे काम देवाय। और जसन इस्फूर चो कमिया से बल्ले इस्फूर के सिंगल सुपर फास्फेट ले देतो राय। ये बूटा चो जड़ बल्ले बूंद चो काम एवाय और फूल आगर हो एचो काजे काम देवाय। आरु जोन भूई ने पोटास कम रहे से होता सल्फेट आप पोटास ये खत के देतो राय। एचोले काय होए दे कि गुलाब फूल झपके फूटे दे और बीमारी ले भले बाचुन रह दे। और बल बपू बीती जिनिस मन दाना बीती नहले घोरलो सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण माइक्रो न्यूट्रिएंट एके माटी ने मिसाउन नहले पाना ने छिचुन भले देउक सकास। एबे जित्रो बानी मन के मैं सांगले ए मन ने कोनी बले गोटो कम होलो ने गुलाब फूल ने फूल फूटतोर कम होन जाए से नहले बूटा के रोग बले होन जाए से। काय बानी कम होले कसन बाना चीना दखा दे से एके बले मैं सागे से। नत्रजन, नत्रजन कम होलो ने गुलाब चो पाना मन नानी नानी होन जासोत आरु हृदय महा दखा देसोत। ये पाना मन बूटा ले नी घसरोत आरु होता हुन पाना मन ने लाल रंग चो बनना चीना महा दखा देवात। इस्फूर, इस्फूर कम होलो ने गुलाब चो पाना मन बूटाले झड़ून जासोत। खंदा मन कमजोर होऊन जावात और बूंद बले नगत नी बसे। पोटास, पोटास कम होलो ने पाना चो रेटे रेटे भूरा बले धमस्या महा दखा देवाय आरु पाना डसलो असन दखा देवाय। मैंगनीज, मैंगनीज नी रलो ने पाना चो ऊपर मुंडी ने सेमी रंग्या आरु मंजी ने हरदया दखा दे से। लोहा, ये कम होलो ने नुआ पाना मन चो मुंडी मन सेमी रंग्या आरु मंजी भाग हरदया होन जाए से। बोरान, बोरान कम होलो ने नुआ बूटा मंच बाढ़ती ने फरक पड़े से बाढ़ती थेबुन जाए से। दादा दीदी मन, अदाय जाना कार्बनिक खत बनातो वाट। ये खत प्राकृतिक खत आए आरु गुलाब फूल चो फसल काजे खूबे लाभकारी बले आए। ये खत ने जमक बल्ले सड़लो गल्लो पाना मन जूना बूटा मन गोबर आरु कचरा लागे से। ये खत के आउर अगर गुणकारी बना तो राय एथा तेल आरु जाड़ा बिचाचो खली के बले मिसाऊ सकास। ये चोले नत्रजन आगर मिरे से। ईश्वर काजे एथा मरलो गाय बैला चो हाड़ा चो चूरन बले मिसाऊ सकास। असन करुन बनालो कार्बनिक खत गुलाब फूल कमानी काजे खूबे नगत रहे से। भूई ने आमी रोजे बरक फसल धरू से फसल धरतो के होता कार्बनिक जिनिस मन कम होन जाए से। यही लागून होता कार्बनिक खत ऊपरे ले देउक लागे से। असन दिलो ने बूटा के सप्पाय बाटले फायदा मिरे से। दादा दीदी मन, ये तो रहे गुलाब ने खत भात चो वाट। ये हिसाब ने तुम्हें कमानी करुक सकास और गुलाब फूल चो आगर ले आगर कमानी करुन खूबे लाभ बले कमाऊ सकास।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामिकी बेड़ा खाड़ा चुगोट। दिन के 1:10 होने को है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आज का अंक लेकर हाजिर हूँ मैं दीपिका जोशी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिएगा फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाया है आरडी बर्मन ने और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। आप हैं ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर झिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। बिलासपुर से आप हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। जतुका किशनपुर से इस गीत को सुनना चाहे है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज। सरगुजा मैनपाट से आप हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से आप हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन, वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से आप हैं वशीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। गंगजला सहरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, बुल्की वाली, फलना। नचानगर सुपौल से आप हैं श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत, युवराज राउत। दरियापुर वामली महाराष्ट्र से आप हैं गजानन, नवदीप, शेरी वडनेर अकोला, बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। मोटक्का जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। तहसील मालेगांव से इस गीत को सुनना चाहा है दत्ता घायाल, सुनीता बाई घायाल, सानिका घायाल, गजानन घायाल ने। वंदना नगर इंदौर से आप हैं रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा, विक्की रघुवंशी। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं मानिक राम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, प्रशांत, रजनेश प्रजापति। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर जिला मध्य प्रदेश से आप हैं तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अगले गीत के फरमाइश करता है कुम्हार गली। कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। हटरी चौक भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू देवांगन, प्रियंका देवांगन, रजनी देवांगन। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। बाग बहरा भदरती से पन्ना लाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से। शीतलानगर दुर्ग से आप हैं शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। करपावन सतोसा से इस गीत को सुनना चाहे हैं गेनूराम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष बघेल और ईशान बघेल ने। देवरी भाटापारा से हमारे श्रोता हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। डोंडी लोहारा संबलपुर से आप हैं गौतम उर्वशा, डामिन उर्वशा, ऐश्वर्या, याशिका, लक्की, डोमनलाल कोठारी। अर्जुंदा बालोस से आप हैं दिनेश यादव, साधना यादव। तुवेगोंदी मंचुवा से आप हैं रिंकू रावटे, आयांश रावटे। मर्दापोटी चारामा कांके से आप हैं नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा। नेहरूवाड भाटापारा से आप हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। पुणे से आप हैं प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे, जरुण वरुण से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली से इस गीत को सुनना चाहा है बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन, पोषण सेन और भुवनेश्वर सेन ने। महादेव घाट अमलेश्वर से हमारे श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रेयांश ठाकुर। पटेल नगर मलोड पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य। नरहन स्टेट से आप हैं नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या, विनीता मिश्रा और ललन मिश्रा। लीजिए सुनिए फिल्म मिलेंगे मिलेंगे से ये गीत। समीर की शब्द रचना को सुरों में ढाला है हिमेश रेशमिया ने, आवाज दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: अगले गीत को सुनने की ख्वाहिश हम तक लिख भेजी है ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर। दतरेंगी से आप हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु। लालपुर से लुकेश यदु, समीर यदु। गिदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, मनीषा, श्रवण राव, नानू राव, आनंद राव, जया राव, सतीश रोहिणी राव। पेंशन बारा रायपुर से आप हैं रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्य प्रकाश यादव, शीला यादव, कनक गुनगुन, बेबी अदिति और तन्मय। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से आप हैं फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। लक्षनपुर से आप हैं जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। बालोस से आप हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशु, आशुतोष अंगारे। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। नसवाला चौक मलकपुर से इस गीत को सुनना चाह है संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश सराफ और जगदीश तांबट ने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनप्रीत, मनविंदर सिंह पांधा। कुंदा नगर खरगोन से आप हैं ध्रुवांश, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरेंगी से आप हैं भागवत वर्मा। लेवई से इस गीत को सुनना चाहते हैं गुलाब दास मानिकपुरी। लक्षनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू। चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। ओल्ड लिसनर ग्रुप राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से आप हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल, मेनका, माधवी और साध्वी, एमके गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। लीजिए सुनिए फिल्म नीरजा का ये गीत, प्रसून जोशी की लिखी। इस गीत को संगीत दिया है विशाल खुराना ने। आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा फिल्म मोहब्बते से, लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है जतिन ललित का और इस गीत को सुनना चाहा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। गोलाघाट बक्सर से आप हैं विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी, शंभु केशरी। नया बाजार बक्सर से आप हैं राजेश केशरी, पंकज और रोहन। तिवर्दा डमरीपारा छत्तीसगढ़ से आप हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र, जयंती, ममता, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहेंद्री बाई मानशी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से आप हैं भाई कारी रायकारी, मीना कारी, पुंजराज, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रित्ति, नीक, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी। सुभाष वार्ड भाटापारा से इस गीत को सुनना चाहते हैं अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, प्रेरणा डिम्पी यादव। पुराना तालाब डुमराव से आप हैं वल्ली उल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आप हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से आप हैं बेबी अंसारी। छठिया पोखरा डुमराव से आप हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। देवपेट वाशिम से आप हैं राजेश, प्रेमा, राश्री और राजू भावशार। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। ग्राम पंचायत बठेना से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटोदा सारा गांव से आप हैं सुजान वर्मा, सहोद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, छोटू पवार, हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से आप हैं शंकर लाल गंगराले, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी और अजय। अहमदनगर अहमदपुर खैगांव खंडवा से आप हैं कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, समर और वेदिका फुलमाली। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से आप हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश नादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परिसंजना मराठा और ललिता नारायण खर्ची। रोहासी से आप हैं डगेश्वर राम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव कुमार साहू। दतरेंगी से आप हैं मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर कुमार साहू। संबलपुर कांकेर

0: से इस गीत को सुनना चाहा है फागू राम यादव, ज्योति ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव ने। मुरसुदा से आप हैं भगवानी संतोषी, गजेंद्र चिराग, चंद्र प्रकाश और नेहा सेन। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म मोहब्बते का ये गीत।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

अगला गीत सुनिए फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। गरिमा और सिद्धार्थ सिंह की शब्द रचना को सुरों में ढाला है विक्की प्रसाद ने। इस गीत को सुनने की चाहत हम तक लिख भेजी है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और खुशी रौनक सेन। रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। बोरखेड़ा पीपामल जिला उज्जैन से आप हैं विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूरत। प्रमीलागंज आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, पायल और प्रियांश ऋषि वर्मा। पुरातात्विक ग्राम करीभदर से आप हैं पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर, शारदा देवी निर्मलकर, लोचन लल्ली, गिन्नी लाली। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीज भाटिया, पप्पी भाटिया। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामुरिया, अजय आरती, तुषार तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीले, अंजलि सारवा। मछली गोदाम कैदी मुंडा रायगढ़ से आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु और ऋषभ सिंह। बुड़गहन से आप हैं राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशि कांता। तहसील भानुप्रतापपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से आप हैं श्रवण नाग, संजीत, मयंक, जीतू, प्रियंका, निशा, नेहा। अशोकनगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं पार्वती, सखाराम ठोके, दीपाली, रोहित, सोनू, मोनू। झुमरी तलैया से आप हैं देव इंगोले, छकुली इंगोले, छोटू दादा इंगोले और टेलर आरडी इंगोले। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत।

अगले गीत की ख्वाहिशमंद है महसूल सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, शेख टोली समस्तीपुर से आप हैं मोहम्मद सहनवाज परवेज, मुजरत जहां नाज, सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, गांधी चौक रोपण पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जैतेक वीरक, मीका वीरक, महासमुंद से आप हैं अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, महाराष्ट्र से आप हैं दिनकर सालवे, गंगा सालवे। औरंगाबाद से इस गीत को सुनना चाहे है राजेश शाबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि राजेश। हथकेरा भाटापारा से आप हैं पंचू यादव, दादू यादव, बावली से आप हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी, अनिष्का और राधिका गजभिये। हटोद बाजार लाहौर से आप हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। लोहड़ीगुड़ा बस्तर से आप हैं चंदन नाग, हरीश नाग, उदय नाग, बाल सिंह नाग, कमल नाग। छिंदवाड़ा दरभा बस्तर से आप हैं रामदेव बघेल, रामधर कश्यप, सोनू बघेल, मोटी राम मौर्या, दुखू राम मौर्या और भीमारा मंडावी। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म मैंने दिल तुझको दिया। इस फिल्म का गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में, जलीश रशीद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है डब्बू मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर के 2 बजने को है। लीजिए सुनिए समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on Mental Well-being, Rural Development, Nature Conservation and Social Transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: Bharat ki janta keh rahi hai ki hame speed chahiye, hame game nahi, solutions chahiye, hame rashtra niti wali rajniti chahiye. साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ट्रैवल टू हैदराबाद लेटर टुडे वेयर ही विल ले द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेट मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन तेलंगाना The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care, not-for-profit hospital. The founder of Tamil Nadu Vetrikaragam, TVK, actor-turned-politician, C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion. During his address after taking the oath, Chief Minister Vijay appealed to the people to remain confident about his government and said that he will enable smooth and transparent governance to all. After that, Mr. Vijay went to the Chief Minister's office at Fort St. George and signed the files declaring his taking over. He signed the files enabling 200 units of free power to every family, setting up of a special unit for women's safety and a special unit to handle drug smuggling. The assembly session will be held tomorrow for the swearing-in of the MLAs. The newly sworn-in government has also to prove the majority on or before Wednesday. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest on debut, and he becomes the first chief minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs-elect in the 234-member House. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA in Assam. In the Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs including Ranjit Kumar Das, Biswajit Daimari, Ajanta Nayok, Rajdeep Roy, Ashok Singhal and Piyush Hazarika proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. The proposal was subsequently seconded by other MLAs in attendance. Thereafter, in the presence of 10 Ahamgaon Parikhar MLAs and BPF legislators, AGP leader Atul Bora and BPF leader Rihan Daimari proposed Dr. Sarma's name as the leader of the NDA. Following these proposals, BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda formally declared Dr. Sarma as the leader of the BJP and the NDA. After being elected as the NDA leader, Mr. Sarma met Governor Lakshman Prasad Acharya at Lok Bhavan and formally submitted the proposal to form the government. In Puducherry, NDA leader N. Rangasamy will take oath as the Chief Minister on the 13th of this month. Yesterday, President Draupadi Murmu appointed AINRC leader N. Rangasamy as the Chief Minister of the Union Territory. Following the notification, Lieutenant Governor K. Kailashanathan invited Mr. Rangasamy to form the government. The expansion of the Uttar Pradesh cabinet will take place at 3 p.m. this afternoon. Chief Minister Yogi Adityanath met Governor Anandi Ben Patel last evening. Sanjay Prasad, Additional Chief Secretary to the Chief Minister and the State Information Department, confirmed that the swearing-in will begin at Jan Bhavan in the state capital from 3 p.m. onwards. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. A special PMLA court in Gurugram granted 7-day remand of Punjab Industries Minister Sanjeev Arora to the Enforcement Directorate or ED in a money laundering case. The ED yesterday arrested Sanjeev Arora from Chandigarh in a case linked to alleged fraud in goods and services tax or GST transactions of over 100 crore rupees. He was produced before the court by the agency officers seeking custodial interrogation. The Punjab minister was arrested following a day-long search at his four premises, including his residence, his associated entities, and one office premises belonging to Hampton Sky Realty Limited, which is also under the agency's scanner in the case. The ED's action was part of an enforcement case information report recorded on the 5th of this month. The Ministry of Education will organize Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 in all schools across the country during the summer vacation. In a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities. Russian President Vladimir Putin has said that he believes the conflict in Ukraine was coming to its end. He also expressed hope that tensions in West Asia would also be resolved soon, warning that all sides would suffer if the conflict escalated further. Russia's 2022 invasion of Ukraine triggered the most severe breakdown in relations between Moscow and the West since the 1962 Cuban Missile Crisis. When asked whether he was open to talks with European leaders, Putin said that his preferred person for discussions was former German Chancellor Gerhard Schroeder. The cruise ship linked to Hanta virus outbreak arrived at Tenerife, which is the largest of Spain's Canary Islands. The Dutch-flagged MV Hondius arrived at Spain's port of Granadilla today, escorted by a civil guard vessel. The ship had left for Tenerife on 6th of May after WHO and European Union asked Spain to manage the evacuation of its passengers. On the 2nd of this month, WHO received a notification regarding a cluster of severe acute respiratory illness, including two deaths and one critically ill passenger aboard a Dutch-flagged cruise ship. At the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai, India's women's recurve team of Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Bahar defeated host China in a dramatic shoot-off to win the gold medal today. After the match ended, tied at 4-all following four sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first Archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And an IPL Cricket Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
2: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
2: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
2: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
4: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
2: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
5: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
6: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
2: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
1: दादा दादा दादा दादा दादा

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी, आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
5: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
6: हाँ तो दशन भाई।
7: हाँ जुन की दीदी।
6: जसन की आमी जानू से कि आम चो जुन कलाकार भाई बहन मन आसत नहीं।
7: हाँ।
6: हुन मन चो कला चो आमी जित्रो बोले आमी हुन चो तारीफ करूं कम होए।
7: हाँ।
6: असने आम चो आए कसन।
7: हाँ।
6: असने आम चो लगे सीता देवी जुन
7: कलाकार
6: नहीं। हाँ। ये जो ना तो मधुबनी चित्रकला जो ना ये मन करे सो।
7: हाँ।
6: और मधुबनी चित्रकला आगे का होते रहे कि एक नहीं जो ना भीती ने बनाते रहला। मंतर ये जो कलाकार ये के जो ने कागज ने बना मुरियाला और लोक छपुर आनला।
7: अच्छा।
6: और ये सीता देवी जो जन जन्म होली 1914 ने बिहार जो कोटक नानी महागाँव से बसा बोलून भाती।
7: हाँ।
6: हुताई में जो जन्म हो रहे।
7: हाँ।
6: और ये कोटक असन कलाकार जे मन जो ना मधुबनी कला के दुनिया छपुरे आनला।
7: हाँ।
6: और ये मन पहल हार भीती ने बना तो भीती चित्रकला के कागज ने बनाला।
7: हाँ।
6: और कागज ने बना तो काजे नुआ जो परंपरा रीति नीति की चालू करला। असने घर ले चाहिए आप लोग जो आया आसत ये मन चो और ये मन चो जो दीदी बनुबे आया चो माय भीती ने।
7: हाँ।
6: ये मन संगे रौन भाती धीरे धीरे धीरे धीरे चित्र के चित्रकला के बनाओ सीखला से।
7: हाँ।
6: अब यह हलो पाछे वाले ये जो चित्रकला है एक कला के आप लोग जो ना नहीं छाणला और नहीं जीतवा पूर्ण जिदल जाए उतार ब्याह होने बात गेला नहीं।
7: हाँ।
6: होता रह तो बेला होता भले ये मन चित्रकाली करते रहा।
7: हाँ।
6: और 1964 ने बिहार ने जिदल दाय अकाल पड़ ली भुखमरी छावली उदल दाय जो ना ये मन जो कला चपलटा ने मन के पैसा दे तो काजे भास्कर कुड़कर्णी होता बिहार ने अमन रहा।
7: हाँ।
6: और ये मन जो नाव के खूब आगे नीला।
7: अच्छा।
6: और ये कागज ने मधुबनी कला के बना तो कारण ने ये मन जो जो चित्रकला आसे।
7: हाँ।
6: उन चो इत्रो लोग एक मन कर ला कि हाथ हाथ बिकते मतलब बिकते जाए।
7: हाँ, बाचे नहीं
6: बाचे बाचते नहीं रहे। और ये भी तो चो मोल जो ना है घोटो घोटो के चित्रकला चो जो मोल आए 2 लाख इत्रो बल हो सके।
7: हाँ, हाँ।
6: और सीता देवी आप लोग संगे संगे दूसर मेहरान उनके बोले ये कला के सिखा ला जे चो कारण ने हुनी गाँव चो और 3 जन मेहरान मन केवल पद्मश्री मिरली से।
7: हाँ।
6: ये खूबे
7: अच्छा गोटा
6: है।

0: ने 12 सितंबर 2005 ने एमन जो ना बोलूँ भी एमन च मृत्यु होली, और यही चित्रकला चो कारण ने एमन चो पूरा संसार ने खूब नाम आसे। तो
1: हाँ
0: इतना बढ़िया चित्रकला
1: इतरो
0: की
1: हो
0: चो
1: इतरो
0: कलाकार
1: नाम
0: आते।
1: रोली एमन चो
0: हाँ
1: ने
0: हाँ
1: अरे एमन का जैसे हुनी संग संग दीदी एमन का गोटो सीता देवी मिथिला चित्र बनातर गोटो का एमन गोटो मुर करला
0: हाँ हाँ हाँ
1: आर हुता ले एमन के का इतरो चित्र एमन बनावत एमन चित्रकारी करोत कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड बिता मन एमन के प्रदर्शनी ने जहाँ एमन जो लगे हुता एमन के ने होत आर नीले
0: अच्छा
1: एमन जो चित्र जो बनावत एमन नी
0: हाँ
1: बाजते रहे
0: हाँ हाँ
1: ने
0: हाँ
1: माने कितरो
0: हाँ
1: अच्छा गोटा है
0: वो
1: ने
0: सच है,
1: यो
0: बोलो लोग भी मन करते
1: मन
0: रहना।
1: करते रहोत
0: तो क्या है कि कलाकार जो कला जो नहीं के भी नहीं मरे से, ये कह बोलो से कलाकार संसार ने हमेशा जीवता रसोत। तो
1: और
0: यही
1: आपने बल
0: हाँ
1: सीखला दूसरे को
0: हाँ
1: बल
0: हाँ
1: सीखा ला
0: हाँ
1: ने
0: हाँ हाँ
1: ना
0: तो इतना बढ़िया है जो कलाकारी रहे
1: हाँ
0: चित्रकला जो बांटने।
1: हाँ
0: तो असली में बोलते रहे दसू भाई आम चो लगे ये चो संगे संगे गीत बोले आसे,
1: आले तो
0: तो गोटो गोटो गीत के ढीलते जाऊं
1: आले
0: बोलते
1: गीत
0: रहे।
1: के आगे सुनू गीत
0: हाँ
1: पूरे वन पाँच हम फिर चीता हुआ
0: आ लेते भी सुन।
1: आले।

0: हाँ झुनकी दीदी काय सुंदर गीत रेली ने।
1: और गीत कुरिया भाई की थी तलिस कसा
0: और गीत कुरिया भाई रला बलवीर सिंह का हनुमंच संगवारी मन
1: तो सुन तो सुन लू तो गीत
0: ओ मंत्र मोड़ रन दखले गीत और रास्ता ने
1: आसे, हाँ।
0: तो वाल में बोलते ने गीत के बलम रहूं और गीत कुरिया उन पाछ परम चिताऊं
1: आ लेते हैं।
0: हाँ

0: हाँ तो दसु भाई,
1: हाँ जानकी दीदी,
0: ये गीत कोरी के थे तलिस्का सब
1: गेलबनी देवी अरुण मंच संगवारी
0: मन
1: काइरे से गीत रेली ने
0: हाँ।
1: मंतर घड़ी बार दखले समिया बला आस्ता
0: हाँ।
1: आराम चो मूड इन बले गीत आस्ता ने
0: हाँ।
1: तो वाले अलग गोटो गीत क्या फिर छाड़ू था
0: हाँ।
1: गीत पूरे वन पच पिची था वहाँ आमी
0: आले देवी सुनिए गीत
1: गीत
0: के
1: के

0: हाँ जुनकी दीदी,
1: हाँ दसवें भाई
0: कायरे से गीत रिलीने
1: हाँ अरे के गाँव तेरा ला लकेसर खुदराम और हुमन जो संगवारी
0: संगवारी मान तो वाले घड़ी बार दखले समयाबल हुए से ने आराम च मोड़ इन बोले सरली बल
1: हाँ हाँ
0: तो वाले जातो पूरे बीता धरूं बे
1: आले ते भी
0: हाँ जातो पूरे कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार भाई बहन मन के मैं दसमु
1: और एडो भीतर ले मैं झुनकी
0: हम दोनों करूं से जुहार।
2: पहुंच बनलो ने गदिया
3: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दाद

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुने हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण किया जाएगा 5:10 पर। गोंडी समाचार बुलेटिन सुनेगा 6:30 पर। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर होगा 7:00। शाम 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम आम चौगांव। रात 8:00 बालीफूल कार्यक्रम में दैमती नाग और साथियों के गाये हल्बी गीत प्रसारित किए जाएंगे। रात 8:30 पर होगा पीला मन का जिकोट हल्बी बोली में, इसमें सुनेगा पंचतंत्र की कहानी, प्रस्तुति उर्वशी पाणिग्राही की होगी। पुरानी फिल्मों से यह कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। रात 10:00 दौना कार्यक्रम में गोंडी लोकगीत आप सुनेंगे, गायक कलाकार होंगे बुद्धसन और साथी। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:53 पर।

सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:20 पर सुनेगा चिंतन, आलेख और स्वर जयचंद जैन का होगा। सुबह 6:25 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का गायन। हुलुली कार्यक्रम में कल 6:40 पर सुनेगा भीमा देवपाड़, वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। नमस्कार जगदलपुर, हमारा ये दैनिक कार्यक्रम होगा सुबह 7:05 पर। आकर्षण स्वतंत्र वार्ता में भारतीय नारी के बढ़ते कदम, इस विषय पर अंजना बोस की वार्ता। हास्य तरंग में चितरंजन रावल की वार्ता महिमा दिवसों की और होगी सुरेले गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर सुनेगा विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सुबह 9:00। 9:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। गुलशन कार्यक्रम में 10:00 हम आपको सुनाएंगे पुराने नखमे। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुखमुराम सलाम और साथियों के गाये गोंडी लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। प्रसारण समय होगा सुबह 10:30। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम होगा सुबह 11:00। पाटा केंजा कार्यक्रम में सुबह 11:30 पर सुनेगा पंकुराम और साथियों के गाये गोंडी गीत। लोक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम मोचो माटी का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 12:00। कल इसमें आप सुनेंगे सामनाथ नाग की लिखी ध्रुवी कहानी, हल्बी कविता, कवित्री होंगे डॉलेश्वरी पांडे, गोंडी कहानी, कहानीकार होंगे सुकु सोरी और इस कार्यक्रम के संपादक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 12:30। फरमेशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन का आनंद लीजिएगा दोपहर 1:10 पर। कला और कलाकार हल्बी बोली में यह कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:30। हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। 5:05 पर सुनेगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। हल्बी बोली में ही शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। लोकगीत में 6:30 पर रामलाल और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत आप सुनेंगे। बस्तर के स्वर यह कार्यक्रम होगा कल शाम 7:00। 7:21 पर सुनेगा ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम आम चौगांव। कल रात 8:00 नानुले कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे दिनेश और साथियों के गाये गोंडी लोकगीत। पीलामन का जे गोट हल्बी बोली में यह कार्यक्रम होगा रात 8:30। कल इसमें सुनेगा कल्पना चावला, प्रस्तुति फूल सिंह कश्यप की होगी। रात 9:15 पर जीवना चोशोर इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता। हिंगलाजीन माता स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सुशीला साहनी से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे भेंट घाट कार्यक्रम में साक्षरता की आवश्यकता विषय पर बलबीर सिंह कच्छ की वार्ता। रात 10:00 कोदोमाली कार्यक्रम में फूल धरवड्डे और साथियों के गाये गोंडी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। 5:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

समोसर में अभी आप सुन रहे थे सागर निजामी की रचना। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों का मनचाहा कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज की युववाणी का सफर आप तय करेंगे अपने कंपेयर दोस्त मैं सिद्धार्थ जोशी,
1: मेरे यानी पूनम भारती के साथ। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार पूनम।
1: हाँ,
0: एक बात पूछूं तुमसे?
1: हाँ सिद्धार्थ, पूछो ना।

0: जब से तुम आई हो कुछ खोई खोई सी लग रही हो, क्या तुम कुछ सोच रही हो?
1: सिद्धार्थ, सच कहूँ तो मैं कुछ दिनों से सोच ही रही हूँ।
0: अच्छा, अगर हमारे काम की बात है तो हमें भी कुछ बताओ।
1: हाँ सिद्धार्थ, काम की बात तो है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: बताओ, कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी सोच में डाल रखी है?
1: तुम्हें पता है, आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक युग में शिक्षा और रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।
0: हाँ पूनम, तुमने सही कहा। पहले के समय में केवल उच्च डिग्री प्राप्त करना ही सफलता की कुंजी मानी जाती थी।
1: हाँ, लेकिन आज के दौर में कौशल और स्किल डेवलपमेंट का महत्व ही उतना बढ़ गया है और ये चर्चा का विषय बन गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डिग्री अधिक महत्वपूर्ण है या कौशल।
0: हाँ पूनम, वास्तव में दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन वर्तमान समय में केवल डिग्री के आधार पर सफलता प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है।
1: हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। डिग्री के साथ साथ व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव और विशेष कौशल का भी आवश्यकता होती है।
0: हाँ पूनम, डिग्री और कौशल दोनों का महत्व अलग अलग है। डिग्री किसी व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा का प्रमाण होती है।
1: हाँ दोस्तों, और कौशल का अर्थ है किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने की क्षमता पर आधारित होती है।
0: हाँ, डिग्री किसी व्यक्ति ने किसी विषय पर व्यवस्थित अध्ययन किया है, उस क्षेत्र का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है, वो होता है।
1: हाँ, समाज में शिक्षित व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, वैज्ञानिक जैसे अनेक पेशों में डिग्री अनिवार्य होती है।
0: हाँ दोस्तों, पर कौशल व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर चलाना, मशीनों का संचालन करना, संचार कला, नेतृत्व क्षमता, लेखन, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कुकिंग या संगीत आदि सभी कौशल के अंतर्गत आते हैं।
1: आज के समय पर बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को अधिक महत्व देती है जो कार्य को प्रभावी ढंग से कर सके।
0: हाँ, केवल किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं होता बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में समस्या का समाधान करना भी आना चाहिए।
1: हाँ, और यही कारण है कि समाज स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
0: हाँ पूनम, ये तो हो गई डिग्री और कौशल के बारे में बातें, पर अगर हम अंतर की बात करें तो?
1: हाँ सिद्धार्थ, बिल्कुल। डिग्री मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है और कौशल व्यवहारिक अनुभव और कार्य करने की क्षमता विकसित करती है।
0: हाँ तुमने सही कहा, डिग्री का संबंध शिक्षा संस्थानों से होता है जबकि कौशल अनुभव अभ्यास और प्रशिक्षण से विकसित होता है।
1: हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास कंप्यूटर ज्ञान की डिग्री है लेकिन उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है तो उसे नौकरी करने में कठिनाई हो सकती है।
0: हाँ, और वहीं दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के पास औपचारिक डिग्री कम है लेकिन वो प्रोग्रामिंग में निपुण है तो उसे आसानी से अवसर मिल जाती है।
1: हाँ सिद्धार्थ, लेकिन वर्तमान समय में किसकी आवश्यकता ज्यादा है या फिर हमें किसे अपनाना चाहिए?
0: पूनम, आज का युग तकनीक और नवाचार का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, रोबोटिक और साइबर सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि विशेष कौशल की भी आवश्यकता होती है।
1: हाँ दोस्तों, नई शिक्षा में कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालय स्तर में ही विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी के पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सके।
0: दोस्तों, डिग्री और कौशल दोनों ही जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। डिग्री व्यक्ति को शिक्षा और पहचान देती है
1: और कौशल उसे कार्यकुशल और आत्मनिर्भर बनाता है।
0: हाँ दोस्तों, आज के समय पर यह आवश्यकता है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कौशल को भी विकसित करें।
1: हाँ दोस्तों, जब डिग्री और कौशल दोनों का संतुलन स्थापित होगा तभी व्यक्ति और समाज दोनों का समुचित विकास होगा।
0: दोस्तों, आपको हमारी आज की चर्चा से जानकारी मिली होगी कि डिग्री और कौशल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घट

आकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सिद्धार्थ, अब कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम उनके लिए आज क्या क्या लेकर आए हैं।
2: हाँ पूनम, बिल्कुल, हम आज अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली गैर फिल्मी प्यारे प्यारे गीत, जिसमें होगी संगीत की नरमी, गायकी की गहराई।
1: दोस्तों, साथ ही जानेंगे विज्ञान पत्रिका में विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी बातें, और साथ ही होगी सामान्य ज्ञान की बातें और मार्गदर्शन।
2: अरे क्या बात है पूनम, फिर तो हमारे दोस्तों की शाम आज और भी आनंदमय हो जाएगी।
1: हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ।
2: तो हमारे दोस्तों को और ना इंतजार कराते हुए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला गीत, जिसे लिखा है श्याम राज ने, संगीत से पिरोया और अपने मधुर स्वर दिए हैं आदेश श्रीवास्तव ने।

0: दोस्तों कार्यक्रम तरन्नुम में हम आपको और भी प्यारे प्यारे गीत सुनवाएंगे। अभी आपको ले चलते हैं कार्यक्रम मार्गदर्शन की ओर, जिसमें आप जानेंगे करियर गाइडलाइंस के बारे में। भेंटवार्ता मोनिका मंडावी से मधु ठाकुर की बातचीत।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम कैरियर गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैरियर एक्सपर्ट मोनिका मंडावी जी। आज हम बात करेंगे कि 10वीं और 12वीं के बाद सही कैरियर का चुनाव कैसे किया जाए। मोनिका जी, कैरियर चुनते समय छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं कि सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में आप हमारे छात्रों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे?
2: जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आकाशवाणी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं बच्चों को करियर गाइडेंस दे सकूँ। करियर चुनते समय छात्र को सबसे पहले खुद को पहचानना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी स्किल्स क्या क्या हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। आजकल ज़रूरी नहीं है कि इंसान इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। कई बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स की फील्ड में अव्वल हैं तो वो उसमें अपना करियर बना रहे हैं, कई हैं जो आर्ट में अव्वल हैं तो वो उसमें अपना करियर बना रहे हैं, कई हैं जो यूट्यूब चैनल्स में पॉडकास्ट करके अपना करियर बना रहे हैं। तो आज की डेट में करियर सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज अगर इंसान किसी भी चीज़ में अव्वल है वो उस चीज़ में अपना करियर बना सकता है।
1: तो मोनिका जी, 10वीं के बाद जब स्ट्रीम्स चुनने की बारी आती है तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे पहले के समय में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे कुछ गिने चुने स्ट्रीम्स होती थी जिनमें से चुनाव बच्चों को करना होता था, पर आज के डेट में तो हमारे पास ऑप्शंस की भरमार है। तो ऐसे समय में सही स्ट्रीम्स का चुनाव किस बेस पे किया जा सकता है?
2: देखिए, स्ट्रीम का चुनाव आपके भविष्य के लक्ष्य पर निर्भर करना चाहिए कि आप आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी के फैमिली में हर कोई डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बने। तो अगर आपको गणित या लॉजिक पसंद है तो आप साइंस या कॉमर्स देख सकते हैं। अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आज की डेट में आर्ट्स में भी कई करियर ऑप्शंस हैं। कई लोग हैं जो म्यूजिक में अपना करियर बना सकते हैं। तो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप वो फील्ड का चयन कर सकते हैं।
1: सही बात है, आजकल इंटरनेट की दुनिया में चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं। म्यूजिक वीडियोस भी, पहले म्यूजिक वीडियोस बनाना कितना मुश्किल होता था, आज जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, जैसे गाने का शौक है, वो अपने म्यूजिक वीडियोस बनाकर इंटरनेट पे डालता है और देखते ही देखते वायरल भी हो जाता है।
2: जी बिल्कुल,
1: पहले के समय में मोनिका जी कैरियर ऑप्शन के रूप में भी डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही लोगों का सपना हुआ करता था। तो क्या आज भी यही डेजिग्नेशन ऐसी हैं जिसके लिए बच्चों को तैयारी करनी चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं, आज का ज़माना न्यू एज करियर का दौर है। आज की डेट में डॉक्टर और इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि इंसान डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, म्यूरल आर्ट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं। अब आप अपनी हॉबी को भी एक सफल करियर बना सकते हैं। अगर मैं इसको विस्तार में बताना चाहूँ

0: तो डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने का सबसे रनिंग फील्ड माना जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया चैनल्स पे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की बहुत आवश्यकता है। जो भी इंसान कंटेंट बना रहा है या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, उनको अपने चैनल्स मैनेज करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है। उसमें उन्हें ये बताया जाता है कि कंटेंट क्या बोलें, कैसे बोलें, स्क्रिप्ट क्या बोलें। तो आजकल स्क्रिप्ट राइटर भी एक करियर है। अगर आप अच्छा लिखते हैं, अगर आप किसी को ये बता सकते हैं कि वो अपने चैनल पे किस विषय पर बात करें, कैसे बात करें, तो आप एक स्क्रिप्ट राइटर का करियर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपकी आर्टिस्टिक ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं, तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हैं, और फिर आप एक फ्रीलांसिंग जॉब या फिर आप अपना खुद का ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक कंपनी खोल सकते हैं। तो आज करियर सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही नहीं है, आप जिस चीज़ में अव्वल हैं आप उस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा बोनिका जी आपने। लेकिन जैसे हम बात करें सरकारी नौकरी की, तो बरसों से सरकारी नौकरी हमारे युवाओं का एक सपना रहा है, आजकल इसमें कंपटीशन जरूर बढ़ गया है, तो आपके हिसाब से यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसी नौकरी की तैयारियां हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए?
0: अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो वो जितना जल्दी शुरुआत कर दे करियर में वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के शुरुआती साल सबसे अच्छे होते हैं। उसमें कोई भी छात्र अपनी जनरल अवेयरनेस और बेसिक्स पर काम कर सकता है, लेकिन हमेशा एक प्लान बी तैयार रहना चाहिए, ताकि अगर कभी असफलता की स्थिति में समय बर्बाद ना हो। जैसे कि अगर कोई इंसान इंजीनियरिंग करते करते यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो वो इंजीनियरिंग करते करते ही अपना सॉफ्ट स्किल्स प्लस अपने जनरल अवेयरनेस और अपने बेसिक्स पर काम कर सकता है, और साथ ही साथ पार्ट टाइम वीकेंड्स में वो यूपीएससी की कोचिंग्स कर सकते हैं, ताकि जो भी उनका वक्त है वो उस टाइम पे यूटिलाइज हो जाए। इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते 4 साल के बाद वो पहला अटेम्प्ट दे सकते हैं फिर अपने एग्ज़ाम का, अगर उन्हें लगता है कि वो तैयार हैं। तो इससे ये होगा कि एक उनकी डिग्री हो गई इंजीनियरिंग की, और साथ ही साथ उन्होंने इंजीनियरिंग को एक बैकअप ले लिया और यूपीएससी की भी तैयारी कर ली।
1: बोनिका जी, हमारे जो श्रोता हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधनों की थोड़ी कमी का सामना हमें करना होता है, तो इन संसाधनों की कमी के बावजूद भी सफलता के लिए हमारे छात्र किस तरह से तैयार हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
0: जी जरूर। देखिए, आज का जमाना है इंटरनेट का। मुझे नहीं लगता कि किसी भी गाँव में भले बिजली हो ना हो, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है। इंटरनेट ने दूरियां ख़त्म कर दी हैं। यूट्यूब, सरकारी प्लेटफॉर्म्स जैसे स्वयं, ई लाइब्रेरी के जरिए आप मुफ्त में बेहतरीन शिक्षा पा सकते हैं। यूट्यूब में ऐसे कई चैनल्स हैं जिसमें लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को मुफ्त में, और कई बच्चे हैं जिन्होंने यूट्यूब देख देख कर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ किसी को रोक रही है कुछ अचीव करने के लिए। अगर कोई चाहता है तो वो कहीं ना कहीं से संसाधनों के साथ अपना करियर बना सकता है या कुछ नया सीख सकता है।
1: जी बिल्कुल, हर प्रयास के साथ बोनिका जी सफलता और असफलता दोनों ही जुड़ी होती हैं। कई बार हमारा प्रयास इस कारण शुरू नहीं हो पाते कि कहीं असफलता ना मिल जाए, कहीं हम असफल ना हो जाएं। तो असफलताओं से डरने वाले ऐसे छात्रों के लिए आपकी क्या सलाह है?
0: जी देखिए, मैं कहूंगी कि असफलता केवल एक संकेत है कि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, अपनी मेहनत नहीं। करियर एक दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है, आपको खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। इस पर मैं खुद का ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कोविड के टाइम पे जब कंपनियाँ बंद हो गई थी, लोग अपने घर वापस आ रहे थे, तब मैं भी अपने घर वापस आ गई थी और मैं अपनी नौकरी छोड़कर घर वापस आई थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा और लोगों की नौकरियाँ नहीं लगेंगी। उस वक्त मैंने 9 महीने तैयारी की, और उन 9 महीनों में मैंने एज अ पार्ट टाइम जॉब एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का जॉब किया, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ढूंढा, और हर महीने मतलब मुझे उसमें तनख्वाह आती थी, डेली का मुझे

0: घंटे की क्लास लेनी होती थी उसमें। तो उस वक्त मैंने ये सीखा कि कोविड ने भले कई लोगों की नौकरियां छीन ली, लेकिन कई लोगों को ये भी दिखाया कि आप कैसे दुनिया को चला सकते हैं घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से। कोविड ने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे ऑफिस जाने से ही काम नहीं होता है, आप घर बैठकर भी अपने स्किल्स से, या कई लोग ऐसे थे जो अपने घर से पापड़ बेच रहे हैं, अचार बेच रहे हैं, तो आप ये सब करके भी अपना करियर बना सकते हैं। वो 9 महीने कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, लोगों ने बहुत बुरे सिचुएशंस देखे उस वक्त, लेकिन कई लोगों का करियर बन गया उस टाइम पे, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी कि लोगों को क्या ज़रूरत है, जिन लोगों ने नए यूट्यूब चैनल्स चालू किए, चाहे वो कुकिंग सिखाने के लिए हो, चाहे वो किसी करियर गाइडेंस का चैनल हो, लेकिन उस वक्त जिन्होंने भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी वो आज की डेट में एक सफल बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है। तो मैं यही कहूंगी कि असफलता एक लेसन है आपके लिए कि आप नया क्या सीख रहे हैं उस चीज से, ताकि आप दोबारा उन गलतियों को अपनी लाइफ में दोहराएं नहीं।
1: सही कहा बोनिका जी आपने। कोविड ने जब हम सबको अपने घरों में कैद कर दिया था, उसी समय ही ये जो नए नए स्ट्रीम्स निकले हमारे सामने, घर से बैठ करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, लोग इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और आज हमारे पास वो सारी चीज़ें ऑप्शंस के रूप में मौजूद हैं। कहावत भी है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तब उस समय कई दरवाजे और खुलते भी हैं, बस ज़रूरत है हमें उन दरवाज़ों की तरफ देखने की और अपनी कोशिश करने की। बोनिका जी, जैसे हम आईटी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, आईटी फील्ड में कैरियर के विषय में बातचीत कर रहे हैं, तो इस बारे में मैं ये जानना चाहूंगी कि एक वर्ड है स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग, ये क्या है? जैसे इंजीनियरिंग में अभी तक हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस तरह के ब्रांचेस के बारे में सुना है, पर स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग ये क्या है?
0: जी, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है जिसमें कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया है रोबोटिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग, तो ये जो फील्ड्स हैं ये स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का एक कॉलेज है कोल्हापुर में, वहाँ बच्चों को ये सिखाया जाता है कि धागे के रेशे कैसे बनते हैं। मतलब वो फील्ड ही ऐसी है कि आप पूरा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ के कपड़ों के बारे में सीखोगे। अब उस फील्ड का फायदा यह है, अगर आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, आप कई बड़े बड़े कपड़ों की जो कंपनियां हैं, आप खुद की एक कंपनी खोल सकते हैं, आप उन कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। उस कॉलेज के कई स्टूडेंट्स हैं जो, जिनको मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी है एक टाइम पे, उनमें से कई स्टूडेंट्स हैं जो आज दुबई में जॉब कर रहे हैं किसी कारपेट कंपनी में। तो स्पेशलाइज्ड जो इंजीनियरिंग है वो आपको एक मौका देती है किसी स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप को अव्वल दर्जे में प्रस्तुत करने की। और जैसे मैंने कहा एआई इंजीनियरिंग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के ज़माने में आईटी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब हमने इंजीनियरिंग की थी अपने ज़माने में तो आईटी और कंप्यूटर साइंस हुआ करता था, लेकिन अब स्पेशलाइज्ड का मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो जो फील्ड्स आती हैं, जैसे डेटा मैनेजमेंट हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, तो ये सब पहले पार्ट हुआ करते थे कंप्यूटर साइंस के, लेकिन अब ये खुद एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग फील्ड है जिसमें इंसान बीटेक की डिग्री पा सकता है।
1: जैसा भी आपने बताया एआई के फील्ड के विषय में, तो बोनिका जी आजकल एआई में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों की चर्चा बहुत है, पर एक डर भी है इनके पीछे छुपा हुआ कि एआई जो है वो लोगों की नौकरियां खत्म कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है?
0: देखिए, एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि उन्हें बदल देगा। एआई ऐसी नौकरियां लाएगा जो कि एक नई पोजीशन होगी आज के ज़माने में, जिसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या डेटा साइंस। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे पहले के ज़माने में हमारी जो दादियाँ होती थीं वो सिलबट्टे का यूज़ करती थीं चटनी पीसने के लिए, उन्हें दो दो घंटे लग जाते थे चटनी पीसने को। फिर थोड़े टाइम के बाद जब हमारी मम्मियाँ आईं तब आया मिक्सर ग्राइंडर। अब मिक्सर ग्राइंडर उसी चटनी को 5 मिनट में पीस दे रहा है। अब यहाँ हम टेस्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट में तो काफ़ी डिफरेंस आता है, लेकिन काम हो जाता है। वैसे ही आईटी में एआई जब से आया है पिछले 2 साल से, लोग अपनी कंपनीज में एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एआई को अपने काम

0: ये आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आईटी में सिर्फ कोडिंग वालों की ही करियर है, जिनको कोड नहीं आता उनका करियर भी है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली डेवलपर बनना चाहते हैं या डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आज के ज़माने में जो टूल्स यूज़ होते हैं आईटी में वो लगभग लगभग सारे टूल्स इन सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। मैं एक बार दोबारा दोहरा दूंगी, पाइथन, जावा, सी शार्प, टाइप स्क्रिप्ट जैसी कई लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, जो भी ऐप्स बनते हैं आईटी इंडस्ट्री में, हर ऐप यूज़र के फैसिलिटी को देख के प्लस यूज़र के सिक्योरिटी को देख के बनाया जाता है। अगर हम एग्जांपल लें एक बैंकिंग ऐप का, तो जब भी एक बैंकिंग ऐप बनती है उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी एप्लीकेशन बन रही है वो यूज़र यूज़ करने में कितना इजी है। कोई भी अगर एक ऐसा इंसान जो 10वीं पास है और उसको हम वो ऐप दिखाएं, तो उसका डिज़ाइनिंग ही ऐसा किया जाता है कि इंसान उस ऐप को आसानी से इस्तेमाल कर सके। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि उस ऐप में सिक्योरिटी है कि नहीं, क्योंकि ये बैंकिंग का ऐप है तो बिना आपके थंब इम्प्रेशन के या बिना आपके पिन डाले वो ऐप ओपन नहीं होगा, या आप अगर 3 बार से ज़्यादा पिन गलत डाल रहे हैं तो वो ऐप लॉक हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। आज के ज़माने में आप फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो वो फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं स्टोर हो रही हैं, तो वो जहाँ स्टोर हो रही हैं उसको हम बोलते हैं क्लाउड। क्लाउड एक ऐसा टर्म है जो आज के ज़माने में बहुत कॉमन है, लेकिन लोगों को इतनी उसकी समझ नहीं है कि क्लाउड क्या है या साइबर सिक्योरिटी क्या है।
1: बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया क्लाउड के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में, आज के समय में जहां सारी सुविधाएं, सारी जानकारियां हमारे फिंगर टिप्स पर उपलब्ध हैं, वहीं समस्या आती है सिक्योरिटी की, क्योंकि हमारी सारी जानकारियां भी आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। तो साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फील्ड का आगे क्या भविष्य है?
0: जी देखिए, जैसे जैसे डेटा ऑनलाइन बढ़ रहा है उसे स्टोर करने के लिए क्लाउड का यूज किया जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो अमेज़न का एक ऐप है AWS या फिर एक और ऐप है Azure, ये दोनों ऐप्स यूज होते हैं एज अ क्लाउड स्टोरेज ऐप्स। आपका जो भी डेटा होता है उसमें सिक्योरली वो स्टोर होता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है। अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी एक करियर है जो आप चुनाव कर सकते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि कैसे आप किसी का डेटा या किसी की जानकारी को सुरक्षित रख सकते हो, ताकि कोई भी हैकर आपके सिस्टम में हैक ना कर सके, आपके मोबाइल में हैक ना कर सके या आपकी वेबसाइट को हैक ना कर सके। तो वही है कि आईटी का करियर या इंजीनियरिंग का करियर केवल सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में सीमित नहीं रह गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे भी फील्ड्स हैं जिसमें इंसान अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और साइबर सिक्योरिटी तो एक एवरग्रीन करियर फील्ड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसी जैसी बढ़ती जाएगी हमेशा इंसान को सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, और साइबर सिक्योरिटी की हमें उस डेटा को या उस एप्लीकेशन को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ही।
1: जी बिल्कुल, आईटी के फील्ड में कई सारे कैरियर ऑप्शन के बारे में आपने हमें जानकारी दी, पर वानिका जी, क्या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लोग भी इस फील्ड में कैरियर बना पाएंगे?
0: जी बिल्कुल, अगर आप एक आईटी कंपनी को देखें तो आईटी कंपनी में सिर्फ जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो काम नहीं करते हैं, और भी लोग हैं जैसे HR मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो कि MBA बैकग्राउंड से होते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग होते हैं जो कि कंपनीज को उनकी बिल्डिंग्स बनाने में या बिल्डिंग डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं, आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक हेल्प डिपार्टमेंट होता है, आईटी सपोर्ट डिपार्टमेंट बोला जाता है जिसे, जिसमें लोगों के लैपटॉप्स अगर ख़राब होते हैं या उनके सिस्टम में कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं तो उसे फिक्स करने के लिए एक टीम होती है। तो आईटी एक बहुत वास्ट करियर है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस छात्र ने गणित किया है या जिसने इंजीनियरिंग की है वो ही आईटी में जा सकते हैं। अगर आईटी में हायरिंग होती है तो हायरिंग तो MBA वाले करते हैं, HRs आपका रेज्यूमे लेते हैं और आपके रेज्यूमे को इवैल्यूएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कि सिर्फ मैथ्स

0: वाले ही इंजीनियरिंग या आईटी फील्ड में आ सकते हैं, नॉन मैथ्स वाले भी आईटी के करियर में अपना करियर बना सकते हैं।
1: मोनिका जी, जैसे इंजीनियरिंग का जो छात्र है, इंजीनियरिंग में एडमिशन के साथ ही वो अपने इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सारे स्किल्स को तो अपग्रेड कर लेता है, पर कैरियर के चुनाव के समय सॉफ्ट स्किल्स का कितना महत्व है और ये सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी देंगी?
0: जी जरूर। देखिए, जो टेक्निकल नॉलेज है उसके थ्रू इंसान अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकता है या इंटरव्यू तक पहुंच सकता है, लेकिन इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत होती है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, बॉडी पॉस्चर, ड्रेसिंग सेंस, ये सब आता है सॉफ्ट स्किल्स में। सॉफ्ट स्किल्स आपको नौकरी दिलवाती तो हैं, प्लस आपको नौकरी में प्रमोशन भी दिलवाती हैं, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अपने बॉस से कैसे बात करनी है, आपको टीम वालों के साथ कैसे रहना है, ये सब आता है सॉफ्ट स्किल्स नॉलेज के अंदर। कई ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो कि स्टूडेंट्स को उनके प्लेसमेंट्स के पहले सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दिलाया करते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स ये सीखते हैं कि कैसे इंटरव्यूअर से बात करना है, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशंस किए जाते हैं, तो ग्रुप डिस्कशंस में कैसे बोलना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, तो जब 10 लोगों का एक ग्रुप बैठता है ग्रुप डिस्कशन करने, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि एलिमिनेशन के लिए यूज़ होती है इंटरव्यू के वक्त, तो उसमें आपको अपने आप को अलग कैसे करना है, ये आता है सॉफ्ट स्किल के अंदर। तो जब आप सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि आप बोलें कैसे, आप कब बोलें, आप वो अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करें कि आप इंटरव्यू में सबसे अलग दिख सकें, तो ये सब आता है सॉफ्ट स्किल के अंदर। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ मैं तो ये कहूँगी कि टेक्निकल नॉलेज 60% है, 40% आपकी सॉफ्ट स्किल आपको हेल्प करती है आपका इंटरव्यू क्लियर करने में, क्योंकि जब भी कोई इंसान इंटरव्यू लेता है किसी छात्र का या किसी स्टूडेंट का, तो वो सिर्फ उसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं देखता है, वो ये भी देखता है कि वो छात्र कितना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आगे चल के जब कंपनी में आप अपने से बड़े लोगों से डील करोगे, आप फॉरेन क्लाइंट से डील करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है उस वक्त।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी मोनिका जी आपने। आज की चर्चा में आपने हमें जानकारी दी कि 10वीं और 12वीं के छात्र अपने कैरियर का चुनाव किस तरह से कर सकते हैं। जो भी चर्चा हमारी हुई उसके अलावा भी अगर आप कोई गाइडेंस, कोई ऐसी बात जो छूट गई हो आप हमारे छात्रों को बताना चाहती हूं तो प्लीज बताएं।
0: जी ज़रूर। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना पेशेंस बढ़ाएं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो रातों रात उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन रातों रात उन्नति तब पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज उतना हो। तो इतना पेशेंस ज़रूर रखें कि आप अपना नॉलेज उस फील्ड में बढ़ाएं जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने आसपास मौके ढूंढिए, बहुत मौके हैं, हर फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। हमेशा एक चीज़ पर, एक वक्त पर फोकस करें, 10 चीज़ों को अपने दिमाग में ना डालें, उससे आप भटकेंगे। अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर कभी शक ना करें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और अपने आप को वक्त दें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर कोई फेलियर आता है आपकी लाइफ में, कहीं आप भटक जाते हैं या कहीं आप फेल हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ से आप हताश ना हो, उस चीज़ को आप एक लेसन लेके चलिए कि आपने उससे क्या सीखा, ताकि आप आगे अपनी लाइफ में वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। हमेशा खुद पर विश्वास रखिए और खुद को नई चीज़ें सीखने का और नई चीज़ें ढूंढने का ज़िंदगी में ज़रूर मौका दें। धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मार्गदर्शन में करियर गाइडलाइंस के बारे में भेंटवार्ता मोनिका मंडावी से मधु ठाकुर की बातचीत। दोस्तों, सामान्य ज्ञान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और सामान्य ज्ञान से हमें ऐसे तथ्यों की जानकारी मिलती है जो हमारे दैनिक जीवन और भविष्य के लिए उपयोगी साबित होती है।
0: हाँ सिद्धार्थ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो हमारे दोस्तों को भी सामान्य ज्ञान की रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं कार्यक्रम सामान्य ज्ञान के जरिए।
2: दोस्तों, शून्य और दशमलव का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जो हमारे भारत के लिए गर्व की बात है।
0: बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था।
2: दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था।
0: दोस्तों, रेडियो का आविष्कार गुगली एलो मार्कोनी ने किया था।
2: दोस्तों, साइकिल का आविष्कार किर्क पैट्रिक मैकमिलियन ने किया था।
0: दोस्तों, ये थी सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी।
2: दोस्तों, आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है अभिजीत सावंत ने, संगीत से सजाया है हरदीप सिद्धू ने और अपने मधुर स्वर दिए हैं अभिजीत सावंत ने। लीजिए सुनिए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम में हम आपको और भी प्यारे प्यारे गीत सुनवाएंगे। अभी आपको हम ले चलते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका की ओर और बताते हैं विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारी के बारे में।
1: दोस्तों, पहली विज्ञान पत्रिका है ताड़ीपत्र में 16वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख मिला। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्र कस्बे में 16वीं शताब्दी का एक तेलुगु शिलालेख मिला।
0: इस प्रकार के शिलालेख प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय इतिहास, भाषा, धर्म, प्रशासन और मंदिर संरक्षण के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोत हैं।
1: अगली विज्ञान पत्रिका है आईआईटी मद्रास के कैलिफोर्निया में डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए एक केंद्र शुरू किया।
0: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने 6 मई 2026 को कैलिफोर्निया के मैनिलो पार्क में अपना पहला संयुक्त राज्य केंद्र स्थापित किया।
1: यह केंद्र 2026 को चालू की गई है और स्टार्टअप, इनक्यूबेशन, प्रौद्योगिकरण, व्यवसायीकरण और गहन तकनीकी अनुसंधान के लिए सिलिकॉन वैली के निकट स्थित है।
0: अगली विज्ञान पत्रिका है वैज्ञानिकों ने एडीज पर्वतमाला में विशाल वृक्षों की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला एंडीज में एक दुर्लभ विशाल वृक्ष प्रजाति की खोज की है
1: जो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना सहित 7 देशों से होकर गुजरती है।
0: इस प्रकार की खोज से एंडीज क्षेत्र की ज्ञान पादप विविधता की वृद्धि हुई है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका जिसमें आपको विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारी मिली होगी।
0: दोस्तों, आपको फिर हम ले चलते हैं कार्यक्रम तरन्नुम की और सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे लिखा है फैर अनवर ने, संगीत से सजाया है सैली फिने ने और मीठी सी आवाज है बाबुल सुप्रियो की। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, आज की कार्यक्रम की ये थी हमारी अंतिम प्रस्तुति। आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे
1: एक नए विषय, एक नई ऊर्जा और कुछ नए लफ्जों, धुनों और एहसासों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।
0: हम हैं आपके रेडियो साथी, मैं सिद्धार्थ जोशी
1: और मैं पूनम भारती। नमस्कार।

0: युवावाणी अभी आप युवा मित्रों का ये पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलनाडु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम मीडियम वेव और एफएम बैंड आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

जनगणना 2027 के तहत बालोद जिले में 1 मई से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान प्रगणक लोगों के घर घर जाकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जिला कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने मकान सूचीकरण का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करने वाले 50 प्रगणकों को संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये भविष्य की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण का आधार है। श्रोताओं, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में भी 1 मई से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 7 मई को गुरूर विकासखंड के पलारी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 256 में से 73 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को ध्वनि श्रवण यंत्र और छड़ी का वितरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को निक्षय पोषण आहार और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं अर्जुनी गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में अर्जुनी क्लस्टर में शामिल 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने ग्रामीणों को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने बीते 2 मई को बालोद जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं ग्राम सिवनी में संयुक्त जिला कार्यालय के पास निर्माणाधीन जिला और सत्र न्यायालय के भवन में अधिवक्ता कक्ष के दायरे को बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। श्रोताओं, जिले के डोंडी, भरीटोला और कुआगोदी लघु वनोपज सहकारी समिति में 4 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। जोनल अधिकारी और रेंजर जीवनलाल भूंडेकर ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 प्रति मानक बोरा मजदूरी निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने संग्राहकों से कहा है कि वे 50-50 पत्तों के बंडल बनाकर तेंदुपत्ता फड़ों में जमा करें। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बालोद जिले के छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 10वीं में करीब 66% और 12वीं में 77% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अर्जुंदा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र जीत गजेंद्र ने 95%

0: अंक हासिल कर जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उमरादहा स्थित ब्लेज एकेडमी की छात्रा वंशिका शर्मा 10वीं की परीक्षा में 97.17% अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रही हैं। जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिला स्तरीय टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं के अलावा उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। श्रोताओं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद जिले की हिमांशी साहू ने राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। हिमांशी कन्नेवाड़ा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। जिला कलेक्टर ने इस उपलब्धि पर जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हिमांशी को सम्मानित किया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे बालोद जिले की चिट्ठी। आलेख था जयप्रकाश सिन्हा का। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। केंद्रीय गृह मंत्री ह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करिन और केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करिन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडीह ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। मंदिर में 9 मई ले ही 3 दिनी होतात्मक महारुद्र यज्ञ के आयोजन करे जावत है, जेमा लगभग 1.25 लाख आहुति चढ़ाए जावत है। ये महायज्ञ अभी के वैश्विक परिस्थिति में शांति और मानुष कल्याण बर करे जावत है। अमृत पर्व के मुख्य आकर्षण काली 11 मई के होही, जब मंदिर के शिखर में प्रधानमंत्री डहर ले 11 पवित्र तीरथ ले लाए गए जल ले कुंभाभिषेक करे जाही। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरा देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाए जावत है। एकरे अंतर्गत काली 11 मई के बालोद जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा बताएं कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में होवैया ये कार्यक्रम है श्रद्धा संस्कृति और हमर देश के विरासत के सुघर संगम देखे बर मिली। उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बलरामपुर जिला के ऐतिहासिक स्थल डीपाडी सामंत सरना में घलो काली स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। ये कार्यक्रम नवा पीढ़ी में सांस्कृतिक जन जागरूकता और स्वाभिमान के भावना ला मजबूत करही। प्रदेश में होइया नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई बर नामांकन के कारज काली 11 मई ले शुरू होही, जेन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र मन के जांच 19 मई के करे जाही। उम्मीदवार मन 21 मई तक अपन नाम वापस ले सकी। वोटिंग ह एके चरण में 1 जून के होही, जेकर परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। सुरैया मल्ला बता दन की नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 पद समेत कुल 82 पद पर चुनाव होही। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1126 समेत पूरा 1228 पद पर चुनाई होही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे के देश के तैयारी के समीक्षा बैठका करीन है। नई दिल्ली में आज एक बैठका में श्री शाह सरकारी एजेंसी मन के तैयारी के आकलन करीन, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, संसाधन के तैनाती और एजेंसी मन के बीच तालमेल के समीक्षा करीन। गृहमंत्री अवैया समय पर करे जावत बाढ़ निवारण उपाय के प्रगति के घलो समीक्षा करिन, जेमा जरूरी ढांचागत परियोजना के बचाव, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठका में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान ल रोके बर निर्माण, जरूरी राहत सामान और इलाज के तैयारी पर पर्याप्त भंडारण ला पक्का करे ऊपर गोट बात करेगी। प्रदेश में अभी आयोजित होवत सुशासन तिहार के तहत जगह जगह समाधान शिविर लगा के लोगन के समस्या ला मौका में ही निराकृत करे जावत है। यही कड़ी में काली 11 मई सोमवार के रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाही। एमा बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1 बजे तक आवेदन झोंके जाही। छत्तीसगढ़ में आने आने न्यायालय में काली लोक अदालत के आयोजन करेगी। एदारी के लोक अदालत में 7,92,000 ले ज्यादा मामला के आपसी समझौता ले निराकरण करेगी। उन्हें 52,14,00,000 रुपया ले ज्यादा के राशि के अवार्ड पारित हुए। लोक अदालत के शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ह मुंगेली जिला न्यायालय ले करिन। ए मौका में प्रदेश के सब्बो जिला वर्चुअल माध्यम ले जुड़े रहीस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ह गर्मी के छुट्टी में देश के सब्बो स्कूल मन में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर के आयोजन करी। एक हफ्ता के एक शिविर भारतीय भाषा मन में गोट बात के तरीका सीखे, शब्द ल जाने, अपन परिचय देना, असल जिंदगी के बातचीत और संस्कृति के बड़े ऊपर केंद्रित होही। एक उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण ला बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
3: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
2: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेता मन के घोषणा कर दे है। देश भर ले चुने गए 42 ठन पंचायत ल ए इनाम दे जाही। पंचायती राज मंत्रालय ह बताई से कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 3 जून के नई दिल्ली में रखे जाही। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के बगीचा तहसील के सरडी ग्राम पंचायत ल स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में तीसरैया स्थान मिले है। मंत्रालय ह बताइस कि विजेता पंचायत मन ल श्रेणी और स्तर के आधार में 50,00,000 रुपया ले लेके 5,00,00,000 रुपया तक के वित्तीय प्रोत्साहन मिली। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दे जावत है। धमतरी जिला के भटगांव ह जल्दी च राज्य के पहली अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनाया है। कलेक्टर के पहल में यहां रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करे जाही। ए केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और तुरते रोग निदान के सुविधा मिली। खास खास नस्ल के छेरी ल बचाए और बढ़ाए बर घलो काम करे जाही। किसनहा और युवा मन बर प्रशिक्षण के व्यवस्था होही। पहली चरण में 10 से 12 स्थानीय युवा मन ल रोजगार मिली और पशु सखी मन ल तकनीकी प्रशिक्षण दे के उमन ल आत्मनिर्भर बनाए ऊपर विशेष जोर दे जाही। बिलासपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ह शक्ति जिला के चंद्रपुर थाना में पदस्थ ASI SN मिश्रा ल 20,000 रुपया के घूस लेवत रंगे हाथ पकड़े है। आरोप है कि ASI ह बालपुर के रहिया एक झन मनखे ल कड़ा कार्रवाई ले बचाए बर 40,000 रुपया के रिश्वत के मांग करे रहीस। आज मदर्स डे में रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ह महिला बंदी मन बर वीडियो कॉलिंग के सुविधा शुरू करे है। ये सुविधा ले अब महिला बंदी मन अपन परिवार और वकील ले सीधा वीडियो कॉलिंग ले गोट बात कर सकी। वीडियो कॉलिंग सुविधा बर जेल विभाग और BSNL के बीच अनुबंध हो है। उन्हें आज जेल परिसर में हुए निश्चय कार्यक्रम में कौशल विकास के प्रशिक्षण पूरा करैया 38 महिला बंदी मन ला प्रमाण पत्र दे गई। संगे संग जेल में अपन महतारी संग रहत 14 झन लड़का ला विभाग कोती ले खास उपहार घलो दे गई। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ह प्रदेश के जम्मो महतारी मन ला मातृ दिवस के शुभकामना दिन है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेले जाही। ये मैच संझा 7:30 बजे ले शुरू हुई। उन्हें 13 मई बुधवार के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगी।

0: दोनों आईपीएल मैच पर प्रशासन ह सुरक्षा के कड़ा तैयारी करे हे। अब जानथन मौसम के हाल। मौसम विभाग ह काली 11 मई के प्रदेश के एक दू जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना जताए हे। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गर्रा चले और गाज गिरे के चेतावनी दे हे। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा के एक चक्रीय चक्रवाती घेरा ह मन्नार के खाड़ी और ओखर ले लगे श्रीलंका के ऊपर फैले हे। एकर अलावा एक ठन निम्न दाब के क्षेत्र ह दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी के ऊपर अवैया 48 घंटा में बने के संभावना है। एकरे असर ले काली प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का वर्षा हो सकत है। आखिरी में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। केंद्रीय गृह मंत्री ह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करिन और केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करिन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडी ग्राम पंचायत ल स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है।
1: ललित मोहना तिवारी। आदो मुख्य वार्ताः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपादलस्य 6 नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। तमिलनाडु राज्ये टीवीके दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सहैव नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंता विश्वास शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अपि च शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासां परियोजनानां उद्देश्यः संपर्क सुदृढीकरणं कार्यक्षमतायाः उन्नयनं सुरक्षावर्धनं तथा जनानां कृते उत्तमयात्रानुभवस्य प्रदानेन सह सम्बद्धः अस्ति। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रे आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे तेलंगाना राज्यस्य राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तथा अन्य वरिष्ठ नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण गृहीतानां उपायानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्षजनितं ऊर्जा संकटं प्रभावीरीत्या नियन्त्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां उपयोगः केवलं आवश्यकतानुसारमेव करणीयः, येन विदेशी मुद्रायाः संरक्षणं भविष्यति तथा वर्तमान संघर्षस्य प्रतिकूल प्रभावानां न्यूनीकरणे सहायता भविष्यति। नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गः असमः पुद्दुचेरी चेत्येतेषु त्रिषु राज्येषु भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विजयः केन्द्रप्रशासनस्य राष्ट्रियनीतिं प्रति जनसमर्थनस्य प्रमाणम् अस्ति। तेन उक्तं यत् निर्वाचनपरिणामैः देशस्य भावना ज्ञायते। अद्य बेंगलुरुनगरे भाजपा कार्यकर्तृभ्यः संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् अद्य तादृश्याः प्रशासनस्य आवश्यकता अस्ति यः शीघ्रं कार्यं कर्तुं शक्नुयात्, सुशासनं दातुं समर्था भवेत्, समस्यायाः समाधानं कृत्वा देशः प्रगतिपथे नेतुं च समर्था भवेत्। तेन एतदपि उक्तं यत् भाजपादलस्य शासनम् अधुना 21 राज्येषु वर्तते, यत्र लोककल्याणाय देशस्य समृद्धे च कार्यं क्रियते। प्रधानमंत्री कांग्रेसदलोपरि स्त्रीणां प्रति अविश्वासस्य आरोपं प्रख्यापितवान्। सः अवदत् यत् कांग्रेसदलेन संसदि नारीवन्दनसंशोधनविधेयकस्य विरोधे मतदानं कृतं, यस्मिन् संसदि महिलानां कृते 33% आरक्षणस्य व्यवस्था कृता आसीत्। प्रधानमंत्री राष्ट्रविकासाय कार्यं कर्तुं तथा च अमेरिका ईरान युद्धजनितानां समावानानां सम्मुखीकर्तुं जनेभ्यः एकताया आह्वानम् अपि अकरोत्। उत्तर प्रदेश राज्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपा दलस्य षड् नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। राज्यपालया आनंदीबेन पटेल वर्यया लखनऊ नगरे जनभवने आयोजिते कार्यक्रमे एतेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्ता। भाजपा दलस्य पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तथा भाजपा नेता मनोज पाण्डेयः मंत्रिमंडले मंत्रिणो नियुक्तौ। राज्यमंत्री अजित पाल सिंह तथा सोमेन्द्र तोमर च स्वतंत्र प्रभार युक्त मंत्रिणो अभवताम। अस्मिन्नेव काले कृष्णा पासवान, सुरेन्द्र दिलेरः, हंसराज विश्वकर्मा तथा कैलाश राजपूत च राज्यमंत्रिरूपेण मंत्रिमंडले समावेशिताः। अनेन विस्तारेण उत्तर प्रदेश विधानसभायाः 3,400 सदस्येषु मंत्रिपरिषदि संख्या षष्टी जाता, या स्वीकृतमंत्रिणाम् अधिका संख्या अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर्यावरण प्रति उत्तरदायित्वभावेन युवा सशक्तिकरणेन तथा आन्तरिक शुचिताया भावनया सह विकसित भारत निर्माणाय एकतां स्थापयितुम् आह्वानम् अकरोत्। अद्य बेंगलुरु नगरे आयोजिते आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः 45 वर्ष पूर्ति समारोहे श्रीमोदी सहभागितां कृतवान्। तेन संस्थायाः नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य उद्घाटनमपि कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् सेवा, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक परिवर्तन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः भूमिका अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषी तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये टीवी के दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजयः अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। राज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरस्य अध्यक्षे नेहरू इंडोर स्टेडियम इत्यत्र आयोजिते शपथग्रहण समारोहे श्री विजयः पदगोपनीयतायाश्च शपथं गृहीतवान्। तेन सह नवमंत्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे राहुल गांधी तथा तमिल चलचित्र उद्योगस्य अनेकाः प्रसिद्धा जनाः उपस्थिताः आसन्। श्रीविजयेन ऐतिह्यं निर्मितं यत् तस्य दलं स्वस्य प्रथमैव निर्वाचने महद्विजयम् अलभत्। कांग्रेस दलं सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल चेत्यादीनां दलानां साहाय्येन श्रीविजयः 20+ निर्वाचित विधायकानां समर्थनम् अलभत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य श्री सी जोसेफ विजयाय पदग्रहणस्य उपलक्ष्ये तस्मै शुभकामनां प्रेषितवान्। श्रीमोदी सामाजिक माध्यमे उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनं तमिलनाडु प्रशासनेन सह मिलित्वा जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनार्थं निरन्तरं कार्यं करिष्यति। तेन श्री विजयस्य आगामी कार्यकालाय अपि शुभकामनाः प्रदत्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंता विश्व शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातःकाले गुवाहाटी नगरे सम्पन्नायां सभायां रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दैमारी, अजंता नियोगः, राजदीप राय, अशोक सिंगलः, पीयूष हजारिका समेत्य अष्ट भाजपा दलस्य विधायकाः डॉ हिमंत बिस्वा शर्मणः नाम प्रस्तावितवन्तः। शिक्षा मन्त्रालयः ग्रीष्मावकाशकाले देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु भारतीयभाषायाः कृते ग्रीष्मकालीन शिविरस्य आयोजनं करिष्यति। एषः एकसप्ताहात्मकः शिविरः भारतीयभाषासु मौलिकसंवादकौशल अधिगमाय, शब्दपरिचयाय, आत्मपरिचय प्रदर्शनाय, वास्तविकजीवनसंवादाय तथा च संस्कृतेः प्रशंसाय च केन्द्रितः भविष्यति। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारादिसानायके अद्य टीवीके दलस्य प्रमुख सी जोसेफ विजयः इत्यस्मै तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमंत्री पदस्य शपथग्रहणानन्तरं त्वरितमेव शुभकामनाः प्रदत्ताः। सामाजिक माध्यमे एकस्मिन् सन्देशे दिसानायके उक्तं यत् श्रीलंका तमिलनाडु उभयोः मध्ये ऐतिहासिकाः, सांस्कृतिकाः, उद्योगाः चेत्यादयः सुदृढाः सम्बन्धाः विद्यन्ते। सः उक्तवान् यत् उभयोर्देशयोः मध्ये भविष्ये अपरिमिताः आर्थिक सम्भावनाः, अवसराश्च सन्ति, यतः तौ निरन्तरं परस्परं घनिष्ठसम्बन्धान् सुदृढं कुरुतः। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन उक्तं यत् युक्रेन देशेन सह प्रचल्यमानः युद्धविवादः अधुना समाप्तिं प्रति गच्छति। तेन पश्चिमेशिया देशेषु वर्तमानस्य संघर्षस्य अपि शीघ्रसमाधानस्य आशा प्रकटिता। तेन उक्तं यत् यदि विवादः अधिकं वर्तते तर्हि महदहानी भविष्यति। यूरोपीय नेतृभिः सह वार्तालापविषये पृष्टे सति राष्ट्रपति पुतिनः अवदत् यत् तादृश्यः चर्चायाः कृते जर्मनी देशस्य पूर्व चान्सलर गेरहार्ड श्रोडर तस्य प्रिया नेता अस्ति। पुतिनः एतदपि उक्तवान् यत् स्थायि शान्तिप्रस्तावस्य अन्तिमरूपस्य निर्णयानन्तरमेव सः युक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लोदिमिर जेलेन्स्की इत्यनेन सह मिलिष्यति। शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्वचषकस्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्वदलेन चीनदेशं पराजित्य स्वर्णपदकं प्राप्तम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरोति। प्रप्रथमं क्रीडयता लखनऊ सुपर जायंट्स दलं अष्टक्रीडकानां हानिपुरस्सरं 3,200 धावनांकाः विनिर्मिताः। सम्प्रति उभयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। मुख्यवार्ता पुनरेकवारम्। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR में भी सुन रहे हैं। इस समय संध्या के 6:23 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।
3: सेवा जोहार ईद आकाशवाणी जगदलपुर आंध गोंडी ते समाचार बुलेटिन तसंग नना माखनलाल सूरी नेंड ता हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रगीत वंदे मातरम तून राष्ट्रगान ता लहका वैधानिक संरक्षण हियना ता संशोधन प्रस्ताव तून हिता मंजूरी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तलप्पा प्रदेश मेटे आयले ओंडाले मर्म जलसाते रण हजारी मून सौकले आगेर जोड़ाता आता मर्मी। वन मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS परो इरले सूचना और समाज तंत्र ता कीतूर मदोनमूर। सुशासन तिहार तलप्पा ईद दिया प्रदेश मेटे आंता जन समस्या निवारण शिविर। इदेक समाचार ओंडाले। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रगीत वंदे मातरम तून राष्ट्रगान ता लहका संवैधानिक संरक्षण प्रदान काजे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ता संशोधन प्रस्ताव तून मंजूरी हितता। इदे नलप्पा संविधान राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान औ राष्ट्रगीत ता अपमान कीतेक मूंद वर्षा ता सजा जुर्माना आतेक रंडो ता प्रावधान गला मंतता। छत्तीसगढ़ तोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ईद निर्णय तून पड़गा की शोक इदेन देशुम ता सांस्कृतिक चेतना स्वतंत्रता लड़ाई ता गौरवशाली विरासत औ राष्ट्रभक्ति ता भावना तून मानगुन कियाना नेल्ला हर वहतोर। मुख्यमंत्री प्रदेश तोर मनवलोरकले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम औ राष्ट्रीय प्रतीक इतेक चीना ना मानगुन की शोक मानता कियाना काजे आह्वान गला की तोर। केंद्रीय श्रम औ रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हत्ता 7 मई दिया पुना श्रम संहिता तलप्पा 40 वर्षा और आगेर उमेर तोर कमाई केवल और नकाजे राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच बूतो ता मदोलमूर की तूर। नई दिल्ली ते मनले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ता मदोलमूर की शोक डॉक्टर मांडविया इतोर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तलपति ते हत्ता 12 वर्षा ते देशुम ता बूतो केवल और लयर्क न मान बढ़े मात्ता। ईद बूतो ता उद्देश्य गैर संचारी बीमारी ता बेराते चीना आउ कमियालोरा स्वास्थ्य ता बारे जागरूकता विढ़ाना मंतता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तलप्पा 8 मई ते प्रदेश ता सपाय जिला ते ओंडाले मर्म मंडा जलसा कीले आता। ईद प्रदेश मेर ते आयले आयोजन ते रण हजारी मूंड सौक ले आगेर जोड़ी ना मर्मिंग ने कीतूर। सपाय जोड़ी ना अपना अपना धर्म और रीति नीति ता अनुसार ते मर्मिंग आतू। युते हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध और विशेष परेक आयलेर जनजाति कुंदातुर जोड़ा शामिल मत्तोर। योजना तलप्पा उन्द उन्द जोड़ी कुन 35,000 रुपया ता सहायता गला ही आता। जगदलपुरा ते मंडले शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ते हैंग और हालुंग मई ते इनोवेशन महाकुंभ ता मुन्ने ता संस्करण ता आयोजन आता। ईद कार्यक्रम ता मदोलमूर राज्यपाल रमेन डेकाल की तूर अगाय मारेंगा जलसा ते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलीलेर। ईद बेरा मुख्यमंत्री इनोवेशन महाकुंभ ते आत्मसमर्पित माओवादी लोरा पिलांग ना भाग एतन परो हरिकासी इत्तोर की बस्तर क्षेत्र ते प्रतिभा और मौका ता बाताय कमी हिले जरूरत मनता ते केवल नल्ला मंच हरी और मौका ही अनता मनता और केतोर की ईद आयोजन त माध्यम ले लयरकुन नवाचार और उद्यमिता ता उन्द मजबूत प्लेटफार्म पुटालता। इनोवेशन महाकुंभ ते बेस्ट आइडिया आउ बेस्ट स्टार्टअप कंपटीशन तोर जीतिया लोरकुन इनाम गला तूस्तूर। इदे नडुम इनोवेशन महाकुंभ ते मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा जिला ता बचेली मनवाल लयोर विशाल हालदार ना नवाचार काजे सम्मानित कित्तूर। ओन हिंदी काया ते हर्बल कापी पंडन काजे फर्स्ट इनाम हित्तूर। अगाय न्यू इनोवेशन अवार्ड तलपा लयोर हर्षवर्धन वाजपेयी तुन तृतीय इनाम पुटता। हर्षवर्धन बस्तर इंडिजिनस नेक्टर एग्रीकल्चर माध्यम ले बस्तर ता सल्फी इतेक गोरगतुन पुना वैज्ञानिक लोरा हिसाब ते नेकाय बेरा तक उंडाना लहका ईरा नकाजे बूतो कियाल तोर। वन मंत्री केदार कश्यप 8 मई ते नवा रायपुर ते छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS परो मंदले सूचना और संवाद तंत्रता मदुल मुर कित्तूर। ईद पुना बुतोले राज्य तोर 13 लाख ले आगेर वनोपज संग्राहक कुटुम्ब ना जीवनते नेल्ला बदली तराल। संग्राहक लोर कुन जानकारी येतन काजे टोल फ्री नंबर 9 8 8 नंबर परो मिस्ड कॉल की लागार। मिस्ड कॉल त परेक 9 ले मूर आयन नम्मेर ले फोन वायाल। फोन तेहा न परेक आपुना यायाना पल्लो हल्बी गोंडी ते महत्वपूर्ण जानकारी केंजी परी आयाल। जानकारी केंजा न परेक आपुना सल्ला अनुभव औ पल्लो कुन रिकॉर्ड कीस परी आयाल। हाटुम ता कीमत औ सरकारी कीमत ता सही जानकारी गला ईगा पुटाल। इदले कोचिया लोरकले कम कीमत ते ममा नगला बंद आयाल औ संग्राहक लोरा आमदनी बढ़े मायाल। राज्यपाल रमेन डेका हत्ता हालुंग मई दिया कोंडानारते जिला औ विकासखंड स्तरीय अधिकारी लोरा बैठका पैतूर। बैठका ते और एर और पुरुड पिसाना परो ज्यादा जोर हितूर। संगे अधिकारी लोरकुन आम जनता ता समस्या कुन लापी कियाना ता निर्देश गला हितूर। बैठका ते राज्यपाल प्रधानमंत्री आवास योजना तलप बने मायना लोन कते रेन हार्वेस्टिंग पंडन जरूरी आंद इत्तूर। और केत्तोर की जिला ते विशेष पिछड़ी जनजाति तक प्रधानमंत्री जनमन योजना ता माध्यम ले शासनता योजना ना फायदा आगे हियाना जरूरी कीमत। आपुना कोंडानार प्रवास ता बेरा राज्यपाल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तलप्पा हालुंग परवोर कुन फूड बास्केट तूस्तूर। ईद बेरा और ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी किबई बालेंगा और मालाकोट तुन टीबी मुक्त घोषित कीतेक यू ग्राम पंचायत तुर सरपंच लोर कुन प्रमाण पत्र गल तूस्तूर। प्रदेश ता सपाय ग्राम पंचायत ते 7 मई दिया नुका महोत्सव रोजगार दिवस औ आवास दिवस ता आयोजन आतू। रोजगार दिवस पर ग्राम पंचायत मनरेगा बूतो न समीक्षा कीसोक रोजगार ता पुना बूतो न कार्य योजना गला बना कितूर। अगाय प्रधानमंत्री आवास योजना तलप्पा पिछले मामला कुन प्राथमिकता ले पूरा किया ना इत्तूर। इदेन अलावा एर पिसना तकाजे नावा नार नावा एर नावा मुंडांग अभियान तलप्पा पुना मुंडा फायदा ता जरिया आंदू थीम परो विशेष चर्चा आतू। राज्य सरकार आस्क न परोयते आयना नेली रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क ते 50% ता छूट हियाना ता निर्णय पैता। इदेना अधिसूचना राजपत्र ते प्रकाशित किसीता इत प्रावधान तत्काल लागू आता। इदेना अलावा राज्य सरकार सेवा ते मनलेर सैनिक भूतपूर्व सैनिक और ओना चूड़ी रहले आस्क न कल्याण तुन हुड़सोक 25 लाख रूपया तक संपत्ति त रजिस्ट्री परो स्टाम्प शुल्क ते 25% तक छूट हियाना ता निर्णय पैता। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ताड़मेटला माओवादी हमला ते राज्य सरकार ता अपील तुन खारिज की।

संबंधित मामलातून विशेष लोक अदालत ते सामील किए न काजे जानकारी सर्वोच्च न्यायालय ता वेबसाइट परो 31 मई तक गूगल फार्म ते ही आना आंद। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हत्ता 6 मई दिया बीजापुर जिला ता तर्रेम नार ते बैंक ऑफ बड़ौदा ता पुना शाखा ता वर्चुअल उद्घाटन की तूर। इत बेरा वित्त मंत्री इतोर की बैंक ता शाखा कुले मातेक अगडोर मानेकून इदेक अपना क्षेत्र ते सपाए बैंक सेवा पुटाल। त्रुमाल चौधरी इतोर की बस्तर ईद एक बदलाव त हरीते जोर से मुन्ने ताकालता ईगा मुने बैंकिंग सेवा हिलवेक मत्ता अगा नेंड नाहक नाहक तक बैंकिंग सेवा पुटालता। आम जनता ना समस्या कुन तुरते समाधान किया नकाजे बस्तर त संगे प्रदेश मेटे इवदिया सुशासन तिहार ता आयोजन किया तोर। इदे कड़ीते वित्त मंत्री ओपी चौधरी हत्ता 6 मई दिया कैंकेर जिला ता माकड़ी कुना नारते आयले शिविर ते कलीलेर। इद बेरा नाटेनोर न संग वर्कशॉप ओना समस्या कुन केंच तूर संगे हितग्राही मूलक योजना ता जाह कुन गलत तूस तूर। सुशासन तिहार तलप्पा वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर जिला ता कुतुल नारते अवतूर। इद बेरा नाटेनोर मोबाइल नेटवर्क उंडाना एयर औ करसना काजे मैदान ता आवश्यकता परो अपुना पलो वेहतूर। त्रुमाल कश्यप नाटेनोर कुन इवेहना जल्दी निराकरण किया ना भरोसा हिशोक अधिकारी लोर कुन निर्देश हितूर की समस्या ते पुटले उंद आवेदन गला पिसना आयो। अगाय कोणानार जिला तोर प्रभारी सचिव भीम सिंह हत्ता 6 मई ते धनोरा नाते मनले पीएम श्री स्कूल ते सुशासन तिहार तुन पैसी सपाए जिला अधिकारी लोरा बैठका पैतूर। इद बेरा प्रभारी सचिव इतूर की सुशासन तिहार तलप्पा पुटले सपाए आवेदन कुन विभाग गंभीरता ले पैर और इवेहना समुचित निराकरण केवीर। हिके बीजापुर जिला ता ग्राम पंचायत ईटपाल ते सुशासन तिहार तलप्पा जन समस्या निवारण शिविर ता आयोजन आता। शिविर ते ईटपाल हेड़े ता नाह तोर नाटेनोर शामिल आतूर। शिविर ते पुटले 1920 ले आगेर आवेदन न तुरते निराकरण कीले आता। सुशासन तिहार तलप्पा सुकमा कलेक्टर अमित कुमार औ पुलिस अधीक्षक किरण चौहान फटफटी ते गोंडेरास औ नीलावाया नार अवतूर। ईद बेरा नाटेनोर सोलर प्लेट्स खराब आया न त शिकायत की तूर। ईद परो कलेक्टर क्रेडा विभाग तुन सपाए लोन ते मरम्मत किया न निर्देश गला ही तूर। ईद बेरा गोंडेरास नार ते आंगनबाड़ी औ पंचायत भवन लहका त बुनियादी बूतो त काजे 70 लाख रुपया त स्वीकृति कलेक्टर साहब ही तूर। अगाय नीलावाया नार ते पुलिया पाड़ा न काजे कलेक्टर स्वीकृति हितूर। वन मंत्री केदार कश्यप हत्ता दिया नारायणपुर जिला ते 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा ते उत्कृष्ट नंबर तत्ले 11 मेधावी पढ़े मायनोर कुन सम्मानित की तूर। इदबेर त्रुमाल कश्यप पढ़े मायनोर कुन पुस्तकी भेंट कीसी ओना वायना दिया नेल्ला आई ता कामना की तूर। संगे वन मंत्री नारायणपुर ते प्रतियोगी परीक्षा ता तैयारी किया न काजे कोचिंग सेंटर खोले किया न घोषणा की तूर। कैंकेर जिला ते हाल दिया ते स्कूल शिक्षा विभाग तिकेड़ा कैंकेर ता गौरव कार्यक्रम ता आयोजन की तूर। जिला पंचायत सभा कक्ष ते आयले इत कार्यक्रम ते वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्राचार्य और पढ़े मायनोर कुन सम्मानित की तूर। इत बेरा त्रुमाल चौधरी इतूर की नेणता बेरा ते इनोवेशन और मोटिवेशन नेकाय जरूरी आंद। कोंडानार जिला ता मूरनार और माकड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुन राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र पुटता। केंद्र सरकार तिकेडा नियुक्त राष्ट्रीय मूल्यांकन करता ना टीम इव रंडो स्वास्थ्य केंद्र ना निरीक्षण की लेर। ईद बेरा स्वास्थ्य सेवा पुटाना मरीज कुन पुटाना सुविधा स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था और निर्धारित प्रोटोकॉल ता पालन की न तुन हुडसी जांच की सी ईद प्रमाण पत्र ही तोर। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान तलपा कोणानार जिला ते चले मायना डोर टू डोर स्वास्थ्य जाँच अभियान तुन प्रभारी सचिव भीम सिंह बदवर नारते औसी निरीक्षण की तूर। ईद बेरा और नाटेनोर्क न स्वास्थ्य जांच बूतो तून हुड़तूर। प्रभारी सचिव जिला ते नतुर कमी इतेक एनीमिया ता जांच किसी मत खियाना ता निर्देश ही तूर। ईद अभियान तलप्पा ईदेक दिया ता जिला ता कुल जनसंख्या ता 45% ले आगेर माने एक न स्क्रीनिंग की ले आता। अगाय गंभीर बीमार मंदिर 1200 ले आगेर परवोर कुन नल्ला उपचार किया न काजे उच्च स्वास्थ्य केंद्र ते रेफर की ले आता। छत्तीसगढ़ ते किसान लोर काजे अनुदान ते कृषि यंत्र औ सिंचाई उपकरण ता काजे ऑनलाइन आवेदन किया न 7 महीले मूर आता। छत्तीसगढ़ राज्य बीज औ कृषि विकास निगम ता अनुसार ते जेम्स पोर्टल ता माध्यम ले किसान आवेदन कीस परनूर। अगाय साकम्भरी योजना तलप्पा सिंचाई पंप तक आजे 11 मई और
ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर तसंगे

0: और कृषि यंत्र तक काजे आवेदन पत्र 15 मई तक ये तनूर आवेदन किया न काजे आधार कार्ड बैंक पासबुक और नेलीता दस्तावेज जरूरी लागार। जगदलपुर ते मनले क्रांतिकारी डेबरीधुर उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र तोर वैज्ञानिक लोरा 9 वर्षा मेहनत ईदेक रंग वात्ता और बस्तर ते लीची मड़ा ते पहली बेरा पंडी काया वात्ता उद्यानिकी महाविद्यालय परिक्षेत्र ते इंदिरा लीची 2 अंबिका लीची 1 चाइना शाही और रोजे सेंटेड लहकाता हालों की सोमकता रणकोणी पदोला उर्सलेर उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय तोर कुलपति प्रोफेसर रवि रतन सक्सेना वैज्ञानिक लोरकुन सहराह की सो की तुर की बस्तर ते लीची पढ़ना केवल शोध सफलता आयो बल्कि बस्तर ते खेती ता हिसाब ते ऊंद मील ता पथरा लहका आयाल। कैकेर जिला ता ग्राम पंचायत मुल्ला ता पिच्चे कट्टा मुंडा तुन पुन्ना वाटर एडवेंचर ता रूप ते बना कियाल तोर सांसद भोजराज नाग मावली हिल्स परोयते पंडेर ईद पुना वाटर एडवेंचर ता मदुल मूर की तूर ईद बेरा और केतोर की मुन्ने बस्तेर ता चीना गोला बारूद ले अशोक मत्ता ईद एक ईगा पर्यटन केंद्र ता रूप ते पुनाल तोर। मारले बेरा ते प्रमुख समाचार ऊंद बेरा फेरे केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रगीत वंदे मातरम तुन राष्ट्रगान तलेह का वैधानिक संरक्षण हिया न काजे संशोधन प्रस्ताव तुन हिता मंजूरी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तलप प्रदेश मेटे आयले ओंडाले मर्ग मंडा जलसाते रण हजारी मुंड सौकले आगेर जोड़ाता आता मरमीन वन मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS परो मंदे सूचना और समाज तंत्रता की तूर मदोल मोर सुशासन तिहार तलपा ईद दिया प्रदेश मेटे आंता जन समस्या निवारण शिविर इदेना संगे गोंडी समाचार बुलेटिन ता ईद अंक इगाय मडल ता मी सोबेकुन सेवा जोहार।
1: अभी गोंडी समाचार बुलेटिन आपकी सेवा में प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। 6:45 हो चुके हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत।
3: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: पर दीप
7: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
7: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: तीनों कॉलेज में
9: डोंट वरी
8: फीस तो देखो।
10: क्या हाल है, क्या हुआ?
9: फीस की टेंशन।
10: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
11: आरबीआई कहता है
12: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
14: अरे भाई साहब आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
15: क्यों भाई सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
14: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
15: आकाशवाणी से।
16: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
14: भाई साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
15: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
14: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
16: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। ये महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण कल 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल डीपाडीह सामंत सरना में भी कल स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश में तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल हैं। बैठक में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान को रोकने के लिए निर्माण कार्यक्रमों और आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियों के पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से अब महिला बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से सीधे वीडियो कॉल के जरिए संवाद कर सकेंगी। वीडियो कॉलिंग सुविधा के लिए जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच अनुबंध हुआ है। वहीं आज जेल परिसर में हुए निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा करने वाली 38 महिला बंदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे 14 बच्चों को विभाग की ओर से विशेष उपहार वितरित किए गए। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की समस्त माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिया

0: जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रूपये से लेकर 5 करोड़ रूपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले के चंद्रपुर थाना में पदस्थ ASI SN मिश्रा को 20,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ASI ने बालपुर निवासी एक व्यक्ति से कड़ी कार्रवाई से बचाने के लिए 40,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी। वहीं कोरबा जिले में SSCL कुसमुंडा के CMPF विभाग में पदस्थ लिपिक मनोहर लाल कौशिक को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के दल ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लिपिक ने एक खदान कर्मी से उसके PF के 5 लाख रूपये निकालने के बदले 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी। धमतरी जिले का भटगांव जल्द ही राज्य का पहला अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनने जा रहा है। कलेक्टर की पहल पर यहां रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और त्वरित रोग निदान की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्नत नस्लों के संरक्षण और प्रजनन पर भी काम किया जाएगा। किसानों और युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। प्रथम चरण में 10 से 12 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पशु सखियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल 11 मई को प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का एक चक्री चक्रवाती घेरा मन्नार की खाड़ी और उससे लगे श्रीलंका के ऊपर विस्तारित है। इसके अलावा एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 48 घंटे में बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य युवक झुलस गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने रायपुर मंडल के बिलासपुर रायपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल संरक्षा, परिचालन, कार्यप्रणाली, स्टेशन रीडेवलपमेंट, अमृत भारत स्टेशन परियोजना और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। रायपुर पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14.5 लाख रूपये की ठगी के आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसी जिले के पचधारी पिकनिक स्पॉट में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के

0: कक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गए सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके?
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
6: यात्रियों
7: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
8: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: आरबीआई कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
11: बेटा
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
11: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
11: चलो
10: कहाँ?
11: एडमिशन कराने।
7: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
12: ब्रो ये फटा है। सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
10: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
12: वाओ नया नोट मिलेगा?
13: हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा।
10: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
14: कूल रहो।
15: मीडियम वेव 396.8 2 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। संध्या के 7:22 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम जुन की दीदी, राम राम।
1: राम राम दसमु भाई, राम राम
0: अमरलिस ने
1: अमरले
0: इबल घड़ी पक्का समय अधक तेरे से
1: मानता है ऐसा वल्लन दा समय अधक देखो ना मैं समय ने अमरु से तेरे तो समय ने हम तो दाद दीदी में संग
0: भेड़गाट हो से ने
1: आई कैसन
0: आले आले मैं तो भेड़गाट होलू ने आले संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव का ऋषि सजन दादा दीदी और संग जोरिया भाई बहन मन के मैं दसमो
1: और मैं झुनकी
0: हम दोनों करो से
1: राम राम, राम, राम, राम। नानी पीला मन के हम दोनों से बात ले
0: खूबे खूबे माया
1: माया दसमो भाई हाँ। देख आम तो जो बस्तर आए नहीं एता जुगे करून आमचो जो ने आदिवासी भाई बहन मन आसत ने और वो दूसरे लोग मन बोला आसत मानतर जुगे करून जो ने आमचो आदिवासी भाई बहन मन आसत और ये मन चो रंग रंग चो पहनावा ओढ़ावा ने संगे संगे

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोय लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोय 18% टैक्स किसी तोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 1% जीएसटी मोला तेने दोर किता अदेन के अवसर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
5: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचए संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी 2 चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
6: हाँ दीदी ये तो नगद गोट मन ने मन तरह हम जो मोटिन गोटो का से कानून ची बात तो ये मन गोटो वकील साहब अधिवक्ता भाई यात रमेश पानी ग्रही आने मन संग भेट करता चंद्र सिंह ठाकुर तो वाले मन चो गोट के सुनवा। हाँ

0: कानून की बात सुन रहे आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम फिर हाजिर हैं कानून की बात का एक नया अंक लेके। आज हमारा जो विषय है वो है राजस्व संबंधी प्रकरण, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री रमेश पाणिग्राही जी को। आप जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम आपसे राजस्व संबंधित प्रकरण के विषय में बातचीत करेंगे। राजस्व संबंधी प्रकरण की जब हम बात करते हैं तो राजस्व में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम राजस्व के अंतर्गत शामिल करते हैं?
1: छत्तीसगढ़ शासन में जो भू राजस्व संहिता का जो एक कानून बना हुआ है, पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता था, अब वो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता हो गया है। और उसमें जो राजस्व मतलब कृषि से जो आय होता है और कृषि का जो संबंधित विवाद होता है, उस संबंध में जो प्रकरण होते हैं वो राजस्व प्रकरण कहलाते हैं। और उसको सुनवाई के लिए तहसील स्तर पर तहसीलदार, उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी, उसके बाद कलेक्टर साहब, उसके बाद कमिश्नर साहब, और सबसे हायर कोर्ट है राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल। छत्तीसगढ़ में तीन जगहों पर है, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर, और मुख्यालय बिलासपुर में, अध्यक्ष वहां बैठते हैं, सर्किट कोर्ट रायपुर और जगदलपुर में लगता है
0: जी। तो मुख्यतः हम यहाँ पे आज भू राजस्व के बारे में बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खासकर जो बस्तर में रहने वाले आदिवासी हैं वो वनों से भी कृषि करते हैं, वनों से जो उत्पाद मिलते हैं उनको संग्रहण भी करते हैं, क्या उसका भी राजस्व इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
1: नहीं, राजस्व भूमि और वन भूमि दोनों अलग अलग है, और आजकल वन भूमि पर भी पट्टा दिया जाता है, लेकिन वन भूमि का क्षेत्राधिकार वन विभाग को है, राजस्व भूमि का क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग, दोनों अलग अलग है। वन भूमि पर भी कृषि किए जाते हैं, उसका लगान नहीं लिया जाता, उसका लगान उसके संबंध में, राजस्व के संबंध में उसका विवाद राजस्व न्यायालयों में नहीं होगा।
0: तो जैसे किसी दो व्यक्तियों के बीच में लैंड डिस्प्यूट हो गया है, किसी भूमि को लेकर अगर विवाद खड़ा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकते हैं?
1: उसके लिए प्रारंभिक तौर पर तो तहसीलदार के न्यायालय में आना है, उसके बाद उसके यदि जो भी

0: नहीं होते हैं उसके अपील अपीलेट कोर्ट, प्रथम अपील एसडीओ साहब को है, द्वितीय अपील कलेक्टर साहब को है, रिवीजन पुनरीक्षण सुनने का क्षेत्राधिकार कमिश्नर और राजस्व मंडल को है, और जैसे एसडीओ साहब के आर्डर है उसका प्रथम अपील कलेक्टर साहब को होगा, द्वितीय अपील कमिश्नर साहब को होगा, फिर पुनरीक्षण राजस्व मंडल को होगा।
1: जी जी, आमतौर पर जैसे हमारे ग्रामीण लोग हैं वो जब भी कोई ऐसा भूमि विवाद होता है तो सीमांकन की उन लोग बात करते हैं, सीमांकन कराया जाता है, तो सीमांकन की क्या प्रक्रिया होती है और क्या सीमांकन सही है?
0: सीमांकन सही होता है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 129 में इसके प्रावधान है, उसमें सीमांकन के बारे में विस्तृत दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के कृषि क्षेत्र की भूमि पर सीमा के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो वह अपना सीमांकन करा सकता है। उसमें अनुसूचित जाति जनजातियों को सीमांकन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के एक खसरा का 50 रुपया चालान के द्वारा स्टेट बैंक में जमा किया जाता है अलग अलग विभिन्न हेड में। उसके बाद उसको आवेदन के साथ तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, तहसीलदार आदेश पारित करने के बाद वो सीमांकन के लिए जाएंगे संबंधित पटवारी और आरआई, और उस जिस व्यक्ति के मध्य सीमा का विवाद है वो सबको सूचना देंगे, ग्राम के प्रमुखों को सूचना देंगे और कोटवार और सब उपस्थित के समय उपस्थित रहेंगे, उस समय वहाँ सीमांकन किया जाएगा सबकी उपस्थिति में, और सीमांकन के पश्चात उसका पंचनामा तैयार किया जाएगा, सीमांकन कैसे किया गया, सही किया गया, पंचनामा में सभी जो उपस्थित हैं उनके हस्ताक्षर होंगे और दोनों पक्ष जो विवाद आपस में विवाद करें उनके भी हस्ताक्षर होंगे।
1: जैसा कि आपने बताया कि अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कोई शुल्क नहीं है सीमांकन करवाने के लिए, लेकिन अगर कोई संबंधित अधिकारी है वो अगर पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है?
0: उसकी शिकायत लोकायुक्त को किया जा सकता है क्योंकि ये शासकीय कर्मचारी है, इसके लिए अलग से कोई शुल्क दे नहीं है, शुल्क केवल स्टेट बैंक में जमा किया जाता है चालान के मार्फत, अलग से कोई शुल्क दे नहीं है, और ये शासन का काम है, छत्तीसगढ़ शासन का काम है, इसलिए जो है यदि कोई पैसे की मांग करता है तो लोकायुक्त को किया जा सकता है।
1: जी जी
0: जी हाँ।
1: तो नामांतरण की जब प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरह से नामांतरण किया जाता है, और साथ ही अगर नाम में त्रुटि हो तो उसे किस प्रक्रिया से सुधारा जा सकता है?
0: अच्छा, नामांतरण के लिए दो प्रक्रिया है, पहला तो नामांतरण उस व्यक्ति का होगा यदि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि क्रय कर लिया गया है, किसी प्रकार का हस्तांतरण से प्राप्त हुआ है तो उसका नामांतरण होगा। उसके लिए यदि अविवादित नामांतरण है तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके नामांतरण किया जा रहा है, इसके लिए तहसीलदार या किसी राजस्व न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है किसी को। और यदि विवादित है, जैसे कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो उसके लिए तहसीलदार के न्यायालय में वो नामांतरण प्रकरण भेजा जाएगा, उस पर दोनों पक्ष को सुनवाई नोटिस जारी करके सुनवाई किया जाएगा और साक्ष्य लेने के पश्चात गुण दोष के आधार पर उसका निराकरण करके पृथक से एक नामांतरण का आदेश पारित किया जाएगा। उस आदेश के अनुसार फिर नामांतरण कार्रवाई पटवारी और आरआई करेंगे राजस्व अभिलेख में।
1: जी जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई जमीन है उस पर जो पट्टा या फिर खसरा उसमें गलत एंट्री हुई है, हमारे जो ग्रामीण भाई बहन है वो ये छोटी छोटी त्रुटि के लिए तहसील ऑफिस के चक्कर लगाते हैं या फिर कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते हैं और उनका समाधान कहीं हो नहीं पाता, और ये छोटे छोटे मामलों के लिए उन्हें 4 साल 5 साल 7 साल ऐसे भी घूमना पड़ता है। तो क्या ये जो छोटे छोटे मामले हैं कि किसी चीज की गलत एंट्री हो गई है, पट्टा पर्चा उनको गलत मिल गया है, तो उसकी सुनवाई क्या लोक अदालत के माध्यम से होती है?
0: लोक अदालत में तभी होगा जब आप राजस्व न्यायालय में मामला संस्थित किए हैं, पेश किए, खसरे में या यदि पट्टा पर्चा में गलत एंट्री हुई है तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 115 से 119 तक उसमें प्रावधान है किस किस रीति से उसका समाधान किया जाएगा। जैसा खसरा में है तो 115-116 के तहत आवेदन देंगे तहसीलदार करेगा। उसके बाद यदि नक्शा में है तो भी उसको तहसीलदार को आपको 117-118 में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका समाधान होगा। तहसीलदार साहब के यहाँ यदि पेंडिंग है केस तो उसकी कमिश्नर आयुक्त और राजस्व न्यायालय में जा सकते हैं।
1: जी, तो आप क्योंकि बस्तर क्षेत्र में कार्यरत हैं तो हम आपसे ये जानना चाहें

0: कि बस्तर क्षेत्र में जो मुख्य लैंड डिस्प्यूट्स के या फिर भूमि विवाद के मामले आते हैं वो किस तरह के मामले ज्यादातर आते हैं?
1: यहाँ आज आज की तारीख में सबसे बड़े त्रुटि सुधार के मामले ज्यादा आ रहे हैं। बंदोबस्त में बहुत सारे, कई गांव में तो गांव के गांव त्रुटि किया गया है बंदोबस्त। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें, जैसे उस समय बंदोबस्तकर्ताओं ने क्या किए, जैसे अलॉटमेंट किसी को हुआ है जमीन रोड से 1 किलोमीटर दूर, अब उन्होंने क्या किए, उस भूमि को रोड में लिया है नक्शा में और दूसरे की भूमि को अंदर में कर दिए हैं। तो उससे क्या होता है, क्या हुआ है कि जो मुख्य मार्ग पर है उस भूमि का जो है कीमत बढ़ चुका है, और ऐसे ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं।
0: और वो किसी और की जमीन?
1: हाँ,
0: है,
1: किसी और की जमीन है। और कई जमीन, कई गांव में तो शासकीय जमीन को भी निजी भूमि करा दिया गया है।
0: तो ये सब जो त्रुटियां हो रही हैं वो किसके द्वारा की जा रही हैं? कौन जिम्मेदार है इन सब
1: इसके लिए? तो बंदोबस्तकर्ताओं ने जिम्मेदार थे, बंदोबस्त करता तो अपने करके चले गए। अब उसके लिए अभी किसान परेशान है और ग्रामवासी परेशान है, और सबके सब आवेदन दे रहे हैं, जिनको जिनको जानकारी हो रहा है आ रहे हैं, दे रहे हैं, त्रुटि सुधार के लिए जो है चल रहा है।
0: जी जी जी तो आपने तो राजस्व संबंधी प्रकरणों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो और आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहते हो तो कहें।
1: यही है कि यदि किसी प्रकार का विवाद हो तो तुरंत से, मतलब उपचार के लिए तहसीलदार, SDO, कलेक्टर और कमिश्नर के पास जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो आज विधिक सेवा प्राधिकरण जो है अपना जगदलपुर में न्यायालय परिसर में ही है, वहाँ आ सकते हैं, वहाँ मुफ्त कानूनी सहायता उनको उपलब्ध कराई जाती है। उनके लिए जो पैनल में वकील हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, और न्यायालय शुल्क का भी भुगतान किया जाता है। ये सभी जो है
0: मुफ्त में विधिक सेवाएं
1: मुफ्त
0: पूरी
1: कानूनी
0: दी
1: सहायता
0: जाती है।
1: मिलती है,
0: जी जी जी
1: उनके लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें। अभी आगामी 9 मई को नेशनल लोक अदालत हर अदालत में लगेगी, तहसील स्तर पर, सिविल न्यायालय में, जिला न्यायालय में, सभी जगहों पर लगेगी। और उसमें अपना जो प्रकरण यदि प्रस्तुत किए और उसमें राजीनामा योग्य है तो उसमें जो है अपना निराकरण करा सकते हैं। और लोक अदालत का फैसला अपील योग्य भी नहीं है और उसमें कोई हारता जीतता नहीं है, राजीनामा के आधार पर, समझौता, आपसी समझौता के आधार पर उसका निराकरण किया जाता है।
0: जी जी तो रमेश पानीग्राही जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है राजस्व संबंधी प्रकरण के बारे में, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के बारे में भी बहुत सारी बातें आपने बताई, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हाँ, तो ये रली कानून की बात। रमेश पानीग्राही वकील संघ एक भेंटघाट करते रहला चंद्र ऋषि ठाकुर। तो हमसे जातो समय बल होए से तो दसों भाई विदा धरु
3: आले।
2: बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सपाई गांव कर दादी दीदी बन के मैं झुनकी
3: मैं दसमो
2: हम दोनों करो से
3: राम राम।

बस्तर के स्वर, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम आम चौगाओं।

0: हाँ, जुहार झुनकी दीदी, जुहार।
1: जुहार दसू भाई, जुहार। और इसी संगे संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सपाय गांव करे दादी दी सियांग सजन और संग जमरिया संगवारिन मन के मैं झुनकी
0: अरे मैं दसमो
1: आमी दोनों करूं से
0: जुहार।
1: और नानी नानी पीला मन के आमी दोनों चे बाटले खूबे खूबे
0: मया लाड़ बलने।

आम के मीरे से, रान रालो ने लेहरा पानी आम के मीरे से, रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से, रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से, पीला बे

नांगर जुवाड़ी डोरी दावा रान ले मीरे से, नांगर जुवाड़ी डोरी दावा रान ले मीरे से, गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से, गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से, भाजी बास्ता बोड़ा फुटू रान ले मीरे से, भाजी बास्ता बोड़ा फुटू रान ले मीरे से, डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मीरे से, डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मीरे से, रान ने आईग बारुआ नाई आईग बुतावा, रान ने आईग बारुआ नाई।

टोरा पाक फर रान ले मेरे से, महू टोरा पाक फर रान ले मेरे से, दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मेरे से, दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मेरे से, आईग बार तो काजे दारू रान ले मेरे से, आईग बार तो काजे दारू रान ले मेरे से, पिन तो कपड़ा लाता भले रुक ले मेरे से, पिंत तो कपड़ा लाता बले रुक ले मेरे से, जन्म मरण रुक संगे आए रुक के बचावा, जन्म मरण रुक संगे आए।

0: कदा मन बूटा लगावा, दीदी मन बूटा लगावा।
1: दूसर कविता है, एक बले सुना।
0: मुझ भाग फूटली आया, मधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मधा मिरलो मोके, मधा मिरलो मोके, गोटो को ठगरा मिरलो मोके, मधा मिरलो मोके, गोटो को ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मधा मिरलो मोके। पूरे नगत सीधा रलो एबे होलो टेड़गा, पूरे नगत सीधा रलो एबे होलो टेड़गा, दुई चिपड़ी भीतर गेले बागबानू आए लड़गा, दुई चिपड़ी भीतर गेले बागबानू आए लड़गा। लाटा फांदा काय झंझट काली के पेटलो मके, लाटा फांदा काय झंझट काली के पेटलो मके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके। गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला, गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला, घरे मुठेक चाउर नियाय सगा बले इला, घरे मुठेक चाउर नियाय सगा बले इला। बाबा दिलो गोटोक भंडुआ हुनके बले बिकलो, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मधा मिरलो मोके। बैला गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो, बैला गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो, रन भन घर के करलो मोंद खाऊक सीखलो, रन भन घर के करलो मोंद खाऊक सीखलो। इज्जत जमाए भाटी ने गेली लाज नी आए तुके, इज्जत जमाए भाटी ने गेली लाज नी आए तुके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके। घरे रांदा नियाय मंतर दुआरे भैंसा बांधा, घरे रांदा नियाय मंतर दुआरे भैंसा बांधा, ताड़ी सल्फी नी छांडे नी छांडू आए लांदा, ताड़ी सल्फी नी छांडे नी छांडू आए लांदा। मंद बले से ये मनुक मौके छांड मौके, मंद बले से ये मनुक मौके छांड मौके, नहले मढ़ा भाटा ने उन भाती माई छांडे दे तुके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके, गोटोक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फूटली आया, मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फूटली बाबा, मंधा मिरलो मोके।
1: ये और एक कविता के सुना, मनमोहनी बनोले के लिख ले से।
0: मनमोहनी रूपे तू चोखोपने मोंगरा फूल, मनमोहनी रूपे तू चोखोपने मोंगरा फूल, तू चो माया ने बया होले से घर के गेले भूल, तू चो माया ने बया होले से घर के गेले भूल। कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी, पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी, हुन डोरा चो बण लागली करे जाहुली चानी, हुन डोरा चो बण लागली करे जाहुली चानी, तू चो हिंड ना मंजूर सन कनिया झूले झूल, तू चो हिंड ना मंजूर सन कनिया झूले झूल। कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली, नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली, माला पिंदली काय सुंदर टिकली कारी कारी, माला पिंदली काय सुंदर टिकली कारी कारी, नाखने नथनी हाय फो बेकाने करन फूल, नाखने नथनी हाय फो बेकाने करन फूल। कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई,

0: रूपे तू चोख पने मोंगरा फूल, मनमोहनी रूपे तू चोख पने मोंगरा फूल, तुचो माया ने बया होले से घर के गेले भूल, तुचो माया ने बया होले से घर के गेले भूल, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई।
1: जसन की मैं बोले समाज के सुधरा तो वाटने कवि मन चो भाव के सांगे से असनी समाज ने मंद सुर के लाफी करतो वाट के आप लोग कविता ने सांगते रहला दादा जो कार आले यदाएं सुनू घनश्याम नागचो कविता पाठ।
2: गोटोक परदेसिया बाबू इलो हमचो गांव ने सिलेदार संगे खादलो सल्पी फेर गेलो घोटूल नाचलो लेका लेकी संग अरु बल्लो मया ने। गोटोक परदेसिया बाबू इलो हमचो गांव ने सिलेदार संगे खादलो सल्पी फेर गेलो घोटूल ने नाचलो लेका लेकी संग अरु बल्लो मया ने। तुमी कितरो निको आहास ये तुमचो माटी ये तुमचो भूई ये तुमचो जंगल अरु बल्लो मया ने। तुमी कितरो निको आहास ये तुमचो माटी ये तुमचो भूई ये तुमचो जंगल तुमी यथाचो राजा तुमी यथाचो प्रजा तुमचो देहचो पसीना पसना ले निकरे से माहू अरु सर्गीचो फूल असन ईमानदारी चो खुशबू महाके से गुलाय खमना। ये तुमचो माटी ये तुमचो भूई ये तुमचो जंगल तुमी यथाचो राजा तुमी यथाचो प्रजा तुमचो देहचो पसना ले निकरे से महू अरु सर्गीचो फूल असन ईमानदारी चो खुशबू महाके से गुलाय खमना। मुझ दूसर कविता है मुरीद घरतो के। बाढ़ती चो गोड सुनून हरिक ले निकरली बोली, बाढ़ती चो गोड सुनून हरिक ने निकरली बोली, सहरे जाऊन घर बनाएं दे महल असन ओली खोली। बाढ़ती चो गोड सुनून हरिक ने निकरली बोली, सहरे जाऊन घर बनाएं दे महल असन ओली खोली। समय चो लेहरा इली हवा महल उड़ीन गेली, काय मंजा चो नंगत वाट जतर खतर जहला होली। समय चो लेहरा इली हवा महल उड़ून गेली, काय मंजा चो नंगत वाट जतर खतर जहला होली। गाँव ने घर बनाऊ पाछे फिर वाट कर ले, गाँव ने घर बनाऊ पाछे फिर वाट कर ले, मुरिया ले पाया खनू ईटा बनाऊ जोड़ा कर ले। गाँव ने घर बनाओ पाछे फिर वाट कर ले, मुरिया ले पाया खनू ईटा बनाऊ जोड़ा कर ले। सिरमिट काजे पारत कर ले आखिर ने मुंड के धर ले, सिरमिट काजे पारत कर ले आखिर ने मुंड के धर ले, छड़ गिट्टी अमरुक नहीं हो कर्जा चो फांदा ने पड़ ले। सिरमिट काजे पारत कर ले आखिर ने मुंड के धर ले, छड़ गिट्टी अमरुक नहीं हो कर्जा चो फांदा ने पड़ ले। भूई के सवकार झिकलो ऊपरे मके दिलो गारी, तिरुन नीलो कछेरी विपत ने पड़ने भारी। भूई के सवकार झिकलो ऊपरे मके दिलो गारी, तिरुन नीलो कछेरी विपत ने पड़ने भारी। बांस निहाय बांसा निहाय पेशी ने पैसा सरली, बाढ़ती चो गोट सुनून देह गुलाय थर थरली। बांस निहाय बांसा निहाय पेशी ने पैसा सरली, बाढ़ती चो गोट सुनून देह गुलाय थर थरली। बिकुन सारले खेती बाड़ी बिकले करधन खाड़ू, बिकुन सारले खेती बाड़ी बिकले करधन खाड़ू, छुटून गेली हाथ ले मन चो विकास लड़ू। बिकुन सारले खेती बाड़ी बिकले करधन खाड़ू, छुटून गेली हाथ ले मन चो बाढ़ती लड़ू। रोंडा बूटा चो घर बना ले एबे निहाय ओली खोली, रोंडा बूटा चो घर बना ले एबे निहाय ओली खोली, काय करेंगे महाप्रभु मुरीद घरतो के बेंद्रा होली। रोंडा बूटा चो घर बना ले एबे निहाय ओली खोली, काय करें दे महाप्रभु मुरीद घरतो के बेंद्रा होली।
1: आम चो बस्तर कितरो सुंदर जगर मगर परे से, काय सुंदर चितरकोट तीरथगढ़ झरे से, कुटुम्ब सब चो बड़े करपन महिमा ए चो सांगे से, मया चो संगे एथा चो माने बाढ़ती बाट के धरे से। काय सुंदर कविता पाठ भी करते रला घनश्याम नाग। आले अदाएं सुनू कविता पाठ श्री हरिहर वैष्णवले।
3: मैं तुके नहीं जाने, मुझे कविता जो ये शीर्षक है मैं तुके नहीं जाने। तुई कौन आस, तुई कौन आस मैं नहीं जाने तुके, तुई कौन आस मैं नहीं जाने तुके, नीचीता है तुके मैं माए की मैं नीची ने तुके। तुई कौन आस

0: मैं नहीं जाने तुके, नीची ताने तुके मैं माया की, मैं नीची ने तुके। काय बोलिस काय बोलिस, तू भागास भाग काचो भाग, काय बोलिस तू भागास भाग काचो भाग, तुझो संगे गोठिया तो पलटा मैं सो रहे दे ओगाय हो बसू रहे दे। मांतर में नी गोठिया है तुझो संगे, मांतर में नी गोठिया है तुझो संगे, होले हो से तुई भाग, होले हो से तुई भाग, तुझो ऊपर निहा मके भरोस, होले हो से तुई भाग, तुझो ऊपर निहा मके भरोस, तुई पानी का वास, तुई पानी का वास, नहाले काय तुई मुचो घर निरतीस, तू वही पानी का वास, नहाले काय तुई मुचो घर निरतीस, काय काजे जाते तीसवी हूँ, काय काजे जाते तीसवी हूँ, छन भाती मके, मैं करे से मसागत, मैं करे से मसागत, मांतर मरे से भूख और प्यास काजे, मैं करे से मसागत, मांतर मरे से भूख और प्यास काजे, दोना एक पेज और डोबला एक भात बले तो नी मेरे अस्थिर ने, मैं करे से मसागत, मांतर मरे से भूख और प्यास काजे, दोना एक पेज बले और डोबला एक भात बले तो नी मेरे अस्थिर ने, काय काजे काय काजे काय नसारे से मैं तुझो है, काय काजे काय नसारे से मैं तुझो, कौन जन्म छो बहरिया है मैं, कौन जन्म छो बहरिया है मैं, ती सांग काय काजे काय नसारे से मैं तुझो, कौन जन्म छो बहरिया है मैं, सांग मांतर तु काय के सांग से, मांतर तु काय के सांग से, तुझो पेट तो केवे नहीं रहे ना, तुझो पेट तो केवे नहीं रहे ना, पहाड़ एक बोले भूखे रतीस, पहाड़ एक बोले भूखे रतीस, ते भी जानतीस काय है भूख और काय के बोल से प्यास, पहाड़ एक बोले भूखे रतीस, ते भी जानतीस काय है भूख और काय के बोल से प्यास, हुदल दाए चेत चेकती तुके, हुदल दाए चेत चेकती तुके, भाग बोल सत काके, हुदल दाए मैं पूछते तुके, हुदल दाए चेत चेकती तुके, भाग बोल सत काके, हुदल दाए मैं पूछते तुके, हुदल दाए मैं पूछते तुके, आखिरी आए सरासरी बेरा, ते भाई तो मैं भले से, ते भाई तो मैं भले से, मैं नहीं जाने तुके, ते भाई तो मैं भले से, मैं नहीं जाने तुके, नहीं चिताए तुके मैं ते भाई तो मैं भले से, मैं नहीं जाने तुके, मैं नहीं चिताए तुके मैं, माय की मैं नहीं चिन्ह तुके, माय की मैं नहीं चिन्ह तुके, माय की मैं नहीं चिन्ह तुके। और इधर ये मुझे दूसरी कविता है, ये जो नाव है काचो होली बाढ़ती, काचो होली बाढ़ती, लोग मन बलसत हमन मन चो बाढ़ती काजे, देखा कितरो उवाट होए से, लोग मन बलसत हमन मन चो बाढ़ती काजे, देखा कितरो उवाट होए से, गुलाय मंजन गुलाय राती नाना किसम उवाट होए से, लोग मन बलसत हमन मन चो बाढ़ती काजे, देखा कितरो उवाट होए से, गुलाय मंजन गुलाय राती नाना किसम उवाट होए से, लोग मन बलसत लोग मन बलसत, हालो हाल हो से भूखे रहूं से, हाँ हालो हाल हो से भूखे रहूं से, नींद बसूं नहीं पेट भर खाऊं नहीं, लोग मन बलसत हालो हाल हो से भूखे रहूं से, नींद बसूं नहीं पेट भर खाऊं नहीं, दखा कितरो धोखा धर ली हम चौका जे फिकर पड़ ली, दखा कितरो धोखा धर ली हम चौका जे फिकर पड़ ली, मैं आए आदिवासी मैं आए आदिवासी बले से सत्य नी करे हंसी, मैं आए आदिवासी बले से सत्य नी करे हंसी, ते भय तो बले से, ते भय तो बले से आए आए सत्य आए, ते भय तो बले से आए आए सत्य आए, सोरा आना सत्य आए, ते भय तो दखा, ते भय तो दखा तुम्हें कितरो बड़े होलास, ते भय तो दखा तुम्हें कितरो बड़े होलास, बादर के हाथे ओलमलास, बादर के हाथे ओलमलास, बेर के फांदून दिलास गाड़ी ने, बेर के फांदून दिलास गाड़ी ने, जोन के बोहालास पानी कावड़, बेर के फांदून दिलास गाड़ी ने, जोन के बोहालास पानी कावड़, राती बले उजर होली, राती बले उजर होली छक छका मंजन महा, राती बले उजर होली छक छका मंजन महा, भार जेठ ने डहाल बेरा, भार जेठ ने डहाल बेरा, दड़दड़ा चमास के धरो नीलास, बाहर जेठ डहल बेरा दड़दड़ा चमास के धरो निलास बैंजर भूई न दखा धान पान जानते गेली बैंजर भूई न दखा धान पान जानते गेली सबय दखू से तुम्हें कितरो बाढ़ती करलास राता रात तरई खोड़लास सबय दखू से तुम्हें कितरो बाढ़ती करलास राता रात तरई खोड़लास मोटर गाड़ी सबय घेलास जनत बानी जोंगून दिलास कागद कलम रलो काजी दखा कितरो बाढ़ती करलास कागद कलम रलो काजी दखा कितरो बाढ़ती करलास कागद कलम रलो काजी दखा कितरो बाढ़ती करलास सरासर यार गोटो कौर नानी महा नानी असन कविता और आसे जो नाव है काय होली पुरखती बेरा ले पेटते रलू मांधर फूकते रलू तोड़ी नाचते रलू गिड़ी अरू कोकरेंगा नाच पुरखती बेरा ले पेटते रलू मांधर फूकते रलू तोड़ी नाचते रलू गेड़ी और कोकरेंगा नाच घोटुल न जाते रलू खोर खोर बोलते रलू हाँसी भुकली करुण हामी माया करुण जीवते रलू घोटुल न जाते रलू खोर खोर बोलते रलू हाँसी भुकली करुण हामी माया करुण जीवते रलू कितरो सुंदर गांव रहे पीकर दुख चो छाँव रहे कितरो सुंदर गांव रहे पीकर दुख चो छाँव रहे आरू दखा आजी कसन कलऊ मातली गांव गांव आरू दखा आजी कसन कलऊ मातली गांव गांव भार मंजन झाँव झाँव आरू दखा आजी कसन कलऊ मातली गांव गांव भार मंजन झाँव झाँव कोनी काके दखुन भारी फुटलो आखी भावत नहीं कोनी काके दखुन भारी फुटलो आखी भावत नहीं आगे असन काचोए घरे कोनी यदाय जावत नहीं आगे असन काचोए घरे कोनी यदाय जावत नहीं काय होली कोनी सांगा भाईग मानी दादा भाई काय होली कोनी सांगा भाईग मानी दादा भाई काय काजे नसली राज काय काजे नसली राज सांग आजा सांग आई काय काजे नसली राज सांग आजा सांग आई सांग आजा सांग आई
1: ये भी सुनते रहूं कविता पाठ श्री हरिहर वैष्णवले भाई बहन मन ये सप्पाए कविता तुम चो मन के भेदली होती नगत लागली होती मन के भेदुन भाती मन के सूतुर गोट के सांगुआए हो नाय कविता आजीचो कवि गोष्ठी ने आजीचो कवि रला श्री घनश्याम नाग श्री दादा जोकाल और श्री हरिहर वैष्णव अदाएं आजीचो कवि गोष्ठी ले दिया विदा जुहार।
2: हाँ जुनकी दीदी काय सुंदर कवि गोष्ठी सुन लू बने
3: हाँ।
2: तो दादा दीदी मैंने सुन ला होती है मन भले तो
3: और एथाने जोन भाग धरलो भाई मनात हुन मनात हरिहर वैष्णव दादा जोकाल घनश्याम नाग और संचालक जोन रहला हुनात भरत कुमार गंगादित्य
2: ये तो रली कवि गोष्ठी ने तो हम जो मोटी इन बलगोटो गीत आस्ता हर घड़ी पर तकले समय आवला आस्ता तो मैं बल तेरा गीत किया गया हम रहूं गीत कुरे वन पाचम फिर चिताऊं
3: आले तेवे सुनो ये गीत
2: आले

0: आज उनकी दीदी काय सुंदर गीत रेली ने
1: हाओ
0: गीत करे दीदी रेला बसंती अरुण मंचो संगवारी मान तो वाल घड़ी बार दखले समिया बल आस्ता आराम च मोटिन गोटो गीत आसेता
1: हाओ
0: अल एक गीत को बल अमरों गीत कुरे वन पाच पेरा में चिता हुआ
1: आले

0: हाँ तो दसवों भाई,
1: आज उनकी
0: ये तो
1: दीदी
0: होली मेघनाथ पटनायक और हनुमंचो संगवारी मंचो गालो गीत
1: गीत
0: और
1: हो
0: आम जो जा तो समय वाले हो ऐसे।
1: घड़ी बर्दा समय हो ऐसे
0: हाँ
1: काय हम बस
0: हाँ
1: पैसा गुरु रेडियो बल ने समय
0: हाँ
1: आने तो
0: हाँ
1: रहे समय अनजा तो रहे
0: सत्य
1: बोलते
0: वल्लीस
1: हो
0: तो विदा धरू
1: आले
0: आम चो गाँव कार्यक्रम सुन तो सपाए गाँव करे दादी दीदी सियान सज्जन और संग जमरिया संगवारी मन के रेडियो भीतर ले में झुनकी
1: समय दस मो
0: हमें दोनों कर से
1: जू

0: आमचों गांव। अभी आप ग्रामीण भाइयों का अपना ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाली फूल। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार हैं तहमती नाग और साथी।

उलट पुलट होते जा तोर तुझ दरबारे माय नौरा दी जो व्रत करलो नौ कन्या के माय।

0: बलिफुल कार्यक्रम में आप सुन रहे थे दैमतीनाग और साथियों के गए हल्बी लोकगीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चक्तलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन का जिकोट। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी। प्रस्तुति उर्वशी पानीग्राही की है।

पीलामन का जे गोट कार्यक्रम सुन तो सफाए पीलामन के मोचो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़। पीलामन तुम्ही दखा तुमचो काजे आमी रोजे दिना ज्ञान ध्यान चो गोट धरून येऊ। आजी मैं असने ची तुमचो काजे कहनी मन धरून इली से ए कहनी के तुम्ही सुना और नगद गोट मन के बले सीखा। आजी चो पहल कहनी आए बाघ और कोलिया। खुबे पहिल चो गोट आए एक ठन झार ने एक जन बाघ रहते रहे। हुन रोजे दिना एक ना एक जन जनावर मन के मारुन खाते रहे। हुन झार चो सफाय जनावर मन परेशान होन गेला। काय काजे बल्ले रोजे दिना कोनी ना कोनी चो जीव के हुन बाघ धरुन खाते रहे। सफाय मिलुन मिसुन एक ठन विचार करला और बाघ लगे गला। सफाय जनावर मन हाथ जोड़ून बल्ला बाघ महाराज ए जंगल चो राजा तुम्ही रोजे दिना एक जन जनावर के हाक देऊन खासे तो बाकी जनावर मन चो जीव तुमचो काजे बाचे दे। ए गोट के सुनून हुन बाघ मान लो और रोजे एक जन जनावर के आप लगे आनून खादुक मुराला। असने ची खूबे दिन होली। एक दिन कोलिया चो पारी इली। हुन बाघ लगे जानून बुझुन बेरले अमरली। बाघ रिसे रिस बल्ला तू इतरो बेरले कहाँ रलिस। कोलिया बल्ला महाराज मैं तो येते रहे बाटे मोके और गोटो बाघ मिलला। हुन आपन के जार चो राजा आए बलते रहे। हुन बाघ और रिस होली मके उन बाघ लगे तू ये बेची ने असने उन बाघ बल्ला। कोलिया उनके चुआ लगे नेला और बल्ला महाराज हुन बाघ ये चुआ भितरे आसे। हुन बाघ खाले निहारून दखला उनके आपलो महा दखा देला। बाघ बल्ला पक्की एताय और दूसर बाघ आसे रिसे रिस उन चुआन भितरे डोगाउन दिला। रिसे रिस चुआ भितरे डोगाउन दिला। तो पीलामन ये कहानी के सुनू नाम के ये सीख मेरे से कि कोनी बले काम भूता के जोन आए तुम्हें सोचून समझून और चला खोन कर ले सफाई भूता तुमचो नगत होए दे। तो असने चे आमचो लगे आसे और एक ठन कहानी हुनाए तुमचो पक्की संगवारी चो गोट। तो खूबे आगर चो गोट है दुई जन पक्की संगवारी।

मन रला हुन मन एक ठन झार बाटले हुन दूसर गांव बाटे जाते रला। हुन बाट फेर खूबे लापी रहे मातर दोनों संगवारी का मजार हसुन बुकलुन जाते रला। हुन मन एक गोर चो बाद मारला कि आमी दोनों संगवारी संगे रवा कितरो डंड होले बले आमी संग के निछांडू। मातर जसने ची हुनमन झार ने मजीगता आमरला लाटा बुटा भीतर ले एक जन करिया भालू निकरला। डर काजे एक जन मीत संगवारी तो जीव बचातो काजे तुरते रुख ऊपरे चगुंदिला। उनके आप लोग जीव चो चिंता रली और दूसर संगवारी के छांडून पराला। हुन दूसर संगवारी रुख ऊपरे चेगुक नहीं सकत रहे मातर हुन समझदार रला। हुन सुनु रहे कि भालू मरला माने के नीचिए। हुन भूई ने तुरते सोन दिला और ओघाय होला असन लागली जसन हुन मरलो से। भालू उनचो लगे गला उनके सुंगला महा करला और कान रेटे काई तो बल्ला और हुन भालू गला। भालू चो लापी जातो के हुन संगवारी जोन रुख ऊपरे चेगु रहे हुन उतरुन हरिक होते दूसर संगवारी के पूछला हुन भालू तुचो काने काय बल्ला ना। दूसर संगवारी सांगला कि भालू बल्ला जोन पक्की संगवारी रहुआत हुनमन अन्नाप चो समय ने आपलो संगवारी के छाड़ू नी पराओत। तो पिलामन दखा ए कहनी ले आम के ये सीख मेरे से पक्की संगवारी के अन्नाप चो समय ने तुमके छाड़तोर नुआए उनके सहायता करतोर आए। और असने ची आमचो लगे और एक ठन कहानी आसे। ये कहानी आए परमा और पारदी चो। एक ठन झार भीतरे खुबे परमा मन रला। गोटोक दिना हुन परमा मन आपलो चारा खोजुक निकरला। हुन मन उड़ते उड़ते उड़ते बेड़ा भीतरे उतरला। उथाई भूई ने दखला खुबे चाउर के कोनी पकाउन रला। हुन परमा मन चाउर के बेचुक मुराला। मातर ये तो पारदी चो चाल रला उताय आगत ले जाल के पकाउन रहे और हुंचो उपरे चारा पकाउन रहे। जसने ची परमा मन चारा बेचुक मुराला सफाई जाल ने अर्जुन गला। सफाई डरला मातर परमा मन चो मुखिया बल्ला तुम्ही नी डरा आमी सफाई संगे मिसुन प्रयास कर ले बाचुक सकू। जसने मुखिया बल्ला सफाई संगे मिसुन ऊपरे उड़ला और सफाई जाल संगे उड़ला और उड़ते उड़ते अपन संगवारी मूसा लगे अमरला। मूसा तुरते जाल के काटला और सफाई परमा मन नगद बाचला और आपलो उड़ला। तो पीला मन दखा ए कहानी ले आमके ए सिखुक मेरे से कि सफाई मिलून मिसून रले कोनी बले दुख डंड के आमी पार करू सकूं। तो पीला मन दखा असने चे और गोटो कहानी आसे। बेंदरा और मगर एक ठन बड़े रुख रहे। हुन रुख ने बेंदरा पीला रहते रहे। हुन रोजे रुख चो सुआद सुआद पाक मन के खाए और आधो खादलो पाक के और आधो खादलो पाक के पानी रेटेर मगर के बले हुन दे। हुन मंगर संगे पाक खाऊन खाऊन उनचो पक्की संगवारी होली। उनमन पक्की संगवारी बनला। गोटोक दिन मंगर चो बायले बीती बनला ए हो भेंदरा चो पाक इतरो सुवाद आसे ए चो कारजा की इतरो सुवाद होए दे। मके चो कारजा के आनंदी आस नहीं। उनचो बायले बनला उन मगर फिर चिंता ने पड़ला। मातर बायले बलू रहे हुनी काजे बेंद्रा के आप लोग पिटकुती बसाउन पानी भीतर ले नेते रहे। फिर बाटे मगर बल्ला मके माफी देउन देसना संगवारी मैं तुम के मारुक ने से मचो बायले तुम चो कर्जा के मांगे से ना मचो बायले तुम चो कर्जा के मांगे से ना। बेंद्रा तो रला खूबे चलाक। हुन तुरते बल्ला ओ हो ना तुम्ही पहिल कसन नी सांगलास मैं तो मचो कारजा के रुखे संगावनी ली से। फेर मगर उनके बहड़ाला बेंद्रा झटाक ने रुख ने चेगला और बल्ला

तो गीत बले तो सुन लू, तो जातो समय बले होली, तो जातो पूरे पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुनतो सफाए नानी नानी पिलामन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और खूबे खूबे लाड़।

0: पिलामन काचेकोट। अभी आप हल्बी बोली में यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे पंचतंत्र की कहानी, प्रस्तुति उर्वशी पानिग्राही की थी। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
5: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
4: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड आल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that Centre will continue to work with greater speed to realize your dreams.
5: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
4: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion, and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
5: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
4: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
6: Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parva 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister Vijay's tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism and military strength. The Indian Air Force conducted an air show rehearsal in which pilots won the heart of people with their daring aerial performances. Rehearsals for cultural program also showcased a special Bengali presentation along with glimpse of Gujarat folk culture. On the occasion of Amrit Parva, the temple premises have been specially decorated with flowers. In addition, the statue of Hamirji Gohil on main road has been also adorned with floral decoration. At the same time, an atmosphere of enthusiasm is being seen among devotees and tourists as well. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
4: Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment, and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Union Home Minister Amit Shah has said that the Constitution and the judiciary have played a significant role in strengthening the foundations of Indian democracy. Mr. Shah was speaking in New Delhi this evening after releasing two books authored by Solicitor General Tushar Mehta. The Home Minister said the faith of the common man, the functioning of society and the character of the nation are reflected in a strong justice system. He added that India as a society has successfully maintained public trust in its institutions.
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को
7: वी हैव सर्टनली स्ट्रेंथन आवर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम 1947 अंटिल टुडे ऑल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दिस कंट्री थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन एक्सेप्टेड विदाउट शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दीज चेंजेस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द रूट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी रन वेरी डीप एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड our judiciary have made a very significant contribution to this.
3: Hamare samvidhan aur hamari nyayapalika ka bahut bada yogdan hai.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. We have more from our correspondent.
2: In the much-awaited second cabinet expansion in the state today, former state president of the BJP, Chaudhary Bhupendra Singh and Manoj Pandey, who rebelled against the Samajwadi Party and joined the BJP, have been included as cabinet ministers. While Krishna Paswan, representing the Khaga Assembly constituency of Fatehpur district, BJP MLA Kailash Singh Rajput from Tirwa seat of Kannauj, MLA Surendra Dilair from Khair Assembly seat of Aligarh, and Legislative Council member Hansraj Vishwakarma have been made ministers of state. Meanwhile, the status of ministers of state Ajit Singh Pal and Somen Tomar has been elevated in the government. Both ministers have been given independent charge. In the 403-member state assembly, the Council of Ministers is now 60, which is the maximum number. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
4: India and Trinidad and Tobago have signed 8 agreements in sectors including tourism, healthcare, infrastructure and Ayurveda during External Affairs Minister S. Jayashankar's two-day visit to the Caribbean nation. Ministry of External Affairs in a statement said MOUs were signed between the two sides for solarization of Trinidad and Tobago's Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, vector control, infrastructure upgrade of Nelson Island, where the Indian immigrants were stayed initially, and for setting up of an Indian chair on Ayurveda at the University of West Indies. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several others injured in a suicide attack at a police post in restive Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosive-laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. After the explosion, a large group of gunmen launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire. Iran has formally submitted its response to the latest U.S. proposal aimed at ending the war in West Asia. Iranian state media confirmed that the response has been handed over, stating that negotiations at this stage will focus on ending the conflict in the region. The development comes as U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Secretary of State Marco Rubio met Qatar's Prime Minister to discuss the ongoing war, highlighting intensified diplomatic efforts as the conflict enters its third month. Meanwhile, Lebanese health authorities said 22 people were killed in Israeli strikes in Lebanon. Our West Asia correspondent has filed this report.
7: The Strait of Hormuz has become the sharpest flashpoint in the standoff between Iran and the United States. An Iranian military official warned on Sunday that countries complying with the U.S. sanctions against Iran will face difficulties when their ships use the waterway. Iranian's Revolutionary Guard Corps further went warning that any attack on Iranian commercial vessels would trigger strikes on U.S. targets across the region with missiles already locked onto their marks. The threats came as a bulk carrier was struck roughly 23 nautical miles northeast of Doha, causing a small fire that was subsequently contained. Kuwait said hostile drones had entered its airspace and were dealt with by its military. Hours later, UAE reported intercepting two drones originating from Iran. Meanwhile, Britain announced it is deploying the Royal Navy destroyer HMS Dragon to the region to join international mission aimed at keeping the strait open. Vinod Kumar for Akashwani News, Dubai.
4: In Singapore, performers at a cultural festival this weekend received an unusual reward boxes of mangoes. As India stepped up efforts to promote mango exports through community events, mangoes from different states were presented as reward for songs, dances and musical performances during the Threads of Indian Tradition Festival held at the Nee Soon Public Housing Estate in the northeast Singapore. This was the second mango promotion event organized this month by the High Commission of India in Singapore. Vice Admiral Sanjay Vatsyayan has been appointed as the next Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command headquartered in Mumbai. He will take charge of one of the Indian Navy's most strategically important commands responsible for safeguarding India's Western Maritime Front and key sea lanes in the Arabian Sea. He is currently serving as the Vice Chief of the Naval Staff. In IPL cricket, Mumbai Indians were 159 for 6 in 18.3 overs against Royal Challengers Bengaluru in Raipur when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to bowl. Earlier, in another fixture, Chennai Super Kings defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets. Chasing a target of 204 runs, Chennai Super Kings overhauled the score in 19.2 overs. Urvil Patel scored a fiery half-century, making 65 of 23 balls earlier put into bat. Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in their allotted 20 overs. And in shooting, Indian pair of Neeru Dhanda and Vivan Kapoor secured a bronze medal in the trap mixed team event as India concluded its campaign on a positive note at the ISSF World Cup Shotgun in Almaty, Kazakhstan today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. For details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And that's all in the news at 9. Good night.
8: मीडियम वेव 396.8 2 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है. आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे हैं. इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं.
9: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
10: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ. चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
8: लीजिए सुनिए कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से. कार्यक्रम का आगाज मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों के गए फिल्म दादी माँ के इस गीत के साथ कर रहे हैं. गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत को संगीत से सजाया है रोशन ने.

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, एस डी बर्मन का संगीत, स्वरलता मंगेशकर का है, फिल्म का नाम है आराधना।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया है नगमा। फिल्म है दिल एक मंदिर, बोल शैलेंद्र के हैं, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: entertainment to drive away the blues. Here is Yusuf Pai, a taxi driver from Hyderabad. Vivid Bharati is the background score of his long days and nights on the road.
1: गाड़ी में है मेरे रेडियो. पहले के जितने भी चैनल थे साहब और शानदार चैनल थे. अरे वो बिना का गीत माला वो टॉप था साहब. जब अमीन सियानी और तुम्हारे ये बेहतरीन आवाज साहब. कहीं को बोलते हवा महल भी आता था वो बिना का गीत माला जाने के बाद में. बहुत अच्छे गाने आते साहब. सुने तो क्या है उसमें दिल उदास हो जाने के बाद में दिल जब खुश होने की तरकीब में रहता है तो वो बहुत सुकून का रहता है.
0: Here are some memories in March, a very challenging March, of the COVID lockdown in 2020. When the going gets tough, the tough get going.

0: शास्त्रीय संगीत का खेल भारतीय कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम दौना। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार हैं बुधसन और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के चक्तलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दौना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बुधसन और साथियों के गए गोंडी लोकगीत।

0: दौना कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे थे बुधसन और साथियों के गए गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम वन पर ये आकाशवाणी का चक्रपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।